नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 13 अक्टूबर 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही न्यूज ऑन EIR ऐप के माध्यम से भी आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। समाचार कुछ ही पलों में अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि

0: ये बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1,500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। कल नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु का महिला सिंगल्स में सामना ओलंपिक चैंपियन और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

वंदन वार में सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है कि बुद्धिमान काम करने के पहले सोचता है और मूर्ख काम करने के बाद। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

जीवन की लालसा, इच्छाएं और अतृप्ति का भाव मन को हर ओर से घेरे तो केवल प्रभु चरणों का दरस ही मन को सही दिशा देता है।

प्रभु चरणों का प्रेम एक भंवरे सा मन को गुंजायमान रखता है, संसार का कोलाहल पार्श्व में खोता जाता है।

बजकर 35 मिनट से श्री रामचरितमानस सुनेगा। आज सुनिए 340वां भाग। 6:45 से संगीत सरिता में श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं 13वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं गायक एवं संगीतकार पद्मश्री शेखर सेन। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत, हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम का समय 7:30 और 8 बजे से सुनिए समाचार प्रभात। त्रिवेणी 8:15 से सुन सकते हैं। सुबह 8:30 से चित्रलोक, 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है फिल्मकार किशोर कुमार पर। सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेहत नामा कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुनिए। इस कार्यक्रम में सुनिए इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की बातचीत।

सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेहत नामा कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुनिए। इस कार्यक्रम में सुनिए इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की बातचीत। ग्यारह बजे से रंग तरंग हिंदी में समाचार, 12 बजे से और 12:05 से यादों की महफिल। सुरीला सफर कार्यक्रम का समय है 12:01 का। दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी का पुनः प्रसारण, 12:15 से दोपहर समाचार। सदाबहार नकमे कार्यक्रम 2:30 से सुन सकते हैं और 3 बजे से सखी सहेली।

शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेल्युलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आज सुनिए अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत की दूसरी कड़ी। शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण। शाम 5:30 से सुनिए तराने नए पुराने। 6 बजे का समय है हिंदी में समाचार का और 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम 6:35 से संध्या रंजन।

शाम 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं 13वां भाग। आमंत्रित कलाकार हैं पद्मश्री, गायक एवं संगीतकार शेखर सेन। शाम 7 बजे फौजी साथियों की सेवा में कार्यक्रम जय माला। इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस सुनिए शाम 7:45 से। रिश्ते प्यार के ये नाटिका सुन सकते हैं रात 8 बजे से हवा महल में, लेखन विष्णु भाटिया का, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। रात 8:15 से चित्रलोक, 8:45 से समाचार संध्या, आपके लिए ये कार्यक्रम 9 बजे से। रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता अशोक कुमार पर। 10 बजे से छाया गीत, 10:30 से ढलती जाए रात। और 11 बजे से सुनिए रंग तरंग का पुनः प्रसारण। झरोखा के अंतर्गत आप सुन रहे थे आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस आज 340वां भाग।

क्रोध के साथ गदा प्रहार से रावण को पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके दसों मुखों से रक्त प्रवाहित होने लगा। दोनों भाई फिर मल्ल युद्ध में भिड़ गए। विभीषण को थकते देखकर हनुमान बीच में आ कूदे। उन्होंने रावण के रथ, घोड़ों तथा सारथी सबका संहार कर दिया। लेकिन मायावी रावण ने तब अन्य युक्ति अपनाई। दोनों वीर पृथ्वी से आकाश तक एक दूसरे से गुंथ गए।

श्री राम की सेना के चुने हुए योद्धा बारी बारी से रावण से युद्ध कर रहे हैं। प्रस्तुत प्रसंग में रावण के साथ विभीषण और हनुमान के युद्ध का वर्णन है। रावण को विभीषण पर शक्तिवान छोड़ते हुए देख श्री राम ने उन्हें पीछे हटाकर उसे अपनी छाती पर ले लिया। क्षण भर को उन्हें मूर्छित होता देख विभीषण ने दुगनी

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आज सुनते हैं श्रृंखला की 13वीं और अंतिम कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं इस श्रृंखला की

0: अगली कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज की इस कड़ी में हम चाहते हैं शेखर दादा आप अपनी रचना संसार के कुछ मोती हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। अपनी कुछ रचना का जिक्र कीजिए और कोई रचना आप हमारे श्रोताओं को सुनाइए।
1: मेरा ये बड़ा सौभाग्य रहा है कि मुझे HMV ने साइन तो किया था गजल गाने के लिए, पर मेरी एक भी गजल रिकॉर्ड नहीं हुई और मेरे करीब 280 एल्बम्स भजन और इस तरह के रामायण और भगवत गीता इस तरह के 280 एल्बम्स हो चुके हैं। और अमूमन अधिकांश गायक गायिकाओं ने मेरे लिए भजन गाए हैं, पर सबसे अधिक जो काम हुआ है वो मेरा अनुराधा पौडवाल जी के साथ, 100 से भी अधिक सीडीज उनके साथ मैंने किए हैं। नितिन मुकेश जी के साथ 5 सीडीज का काम किया है। उदित नारायण जी, सोनू निगम जी, अलका याग्निक जी, ऐसे बहुत सारे गायक गायिकाओं के साथ मैंने किया है। और मैं दरअसल ये चाहता था कि जो मेरे मन का हो और जो मैं अपनी मर्जी से कर सकूं वही काम मैं करूं
0: जी।
1: तो उसमें मुझे लगा कि अगर मैं प्राइवेट एल्बम करूंगा वहीं पर वो संभावना बन सकती है कि मैं अपने मन की रचनाएं रिकॉर्ड करूं, कंपोज करूं। क्योंकि जब आप फिल्मों के लिए काम करते हैं तो आपको दूसरे के ऑर्डर पे काम करना पड़ता है
0: जी,
1: भी कहानी ये है, डायरेक्टर को पसंद नहीं आया, प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आया, ये सब। तो फिल्म का भूत तो मेरा पहले एक साल में ही उतर गया। मैंने कहा ये मेरे मतलब की लाइन नहीं है, बहुत अच्छी लाइन है, पर मुझे लगा कि मैं प्राइवेट एल्बम्स का काम करूं। तो वो मेरे जीवन का एक बड़ा अद्भुत अनुभव रहा। और मैं आपको आज सुनाना चाह रहा हूं मीराबाई का एक भजन
0: जी,
1: जो मीरा नाम के एल्बम से हमने रिलीज भी किया था, और वो गाया था अनुराधा पौडवाल जी ने।
0: जी,
1: और उसमें जो स्वर रचना थी वो कलावती और जनसन मोहिनी के आसपास मैंने रखी थी। दरअसल ये एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब आप रचना बनाते हैं ना तब राग ध्यान में नहीं रहता, क्योंकि राग जो होता है स्वर प्रधान होता है, भजन या गजल या गीत वो शब्द प्रधान होता है। तो जहां शब्द प्रधान होगा वहां पर स्वर थोड़े पीछे आ जाते हैं। ये अनुराधा जी की आवाज में भी आप सुनाइएगा, पर मैं पहले गाता हूँ क्योंकि मेरी बहुत प्रिय रचना है।
0: जी जी जरूर सुनाएं।

0: इस रचना के बाद शेखर दादा बताइए हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या सुनवा रहे हैं।
1: हमारे यहाँ माँ के भजन जो है वो थोड़े जयकारा
0: कीर्तन के
1: शेरा वालिदा और उस तरह के कि माँ तू आजा तेरे लिए हलवा बनाया है या माँ ने टेलीफोन किया है, इस तरह के गाने होते हैं। पर इसके बिल्कुल विपरीत बंगाल में जो श्यामा संगीत की परंपरा है उसमें माँ के लिए आप वैसे ही गाने गाते हैं जैसे आप अपनी माँ को गाकर सुना रहे हैं।
0: क्या बात है।
1: और ये भी एक बड़ी विलक्षण बात है कि केवल केवल और केवल भारतीय संस्कृति में ही देवी का रूप पूजा जाता है और माना जाता है। इसके अलावा पूरे संसार की किसी भी संस्कृति या किसी भी धर्म या किसी भी सभ्यता में माँ को वो स्थान नहीं मिला है जो हमारे यहाँ है। तो एक बार मुझे कहा गया कि भाई आप बनाइए। मैंने कहा भाई देखिए आपके यहाँ जिस तरह के भजन बनते हैं इस समय उस तरह के भजन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर अगर आप कहें कि जैसे बंगला में बनते हैं उस ऐसा कुछ बनाइए तो मैंने कहा उसका मैं प्रयास कर सकता हूँ। तो उस समय सारे जो भजन बने वो बहुत ही अद्भुत बने माँ के लिए। तो मैं आपको उसमें से एक सुनाता हूँ और ये मुझे केवल एक दिन में मैंने 10 भजन लिखे, स्वरबद्ध किए और अगले दिन उसको रिकॉर्ड कर दिया।
0: क्या बात है।
1: और ये शक्ति नाम से या माँ काली के भजन के नाम से रिलीज हुआ। इसमें मेरा भाव था कि मैं माँ की अगर अर्चना करता हूँ मैं माँ के आंखों में कितना स्थान रखता हूँ, बहुत थोड़ी सी जगह मेरी होगी कि सभी तो माँ के भक्त हैं, सभी माँ के संतान हैं। तो मैंने उसमें लिखा कि जैसे नैनों में ज्योति, आंखों में जो ज्योति होती बहुत छोटे से हिस्से में होती, सीप में मोती, बहुत बड़ा सीप होता है मोती छोटे से स्थान पर, वैसे माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती।
0: क्या बात,
1: ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे मालूम है कि और भी संतानें हैं उनको भी आप स्थान दीजिए पर थोड़ी सी जगह मुझे दीजिए, ये भाव है उसमें।
0: जी सुनाए।

0: वाह, बहुत अद्भुत। शताब्दी की भक्ति रचनाएं, इसके आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं और आज की ये अंतिम कड़ी है। शेखर दादा, हम आपसे एक वादा चाहते हैं कि आप वादा कीजिए कि अगली बार जब आएंगे विविध भारती के स्टूडियो में तो अपनी रचनाओं के बारे में बातें करेंगे, अपने रचना संसार को आप यहाँ पर समाहित करेंगे।
1: सबसे पहले तो मेरा बहुत सौभाग्य कि विविध भारती के संगीत सरिता कार्यक्रम के लिए, जो मैं और मेरी पत्नी नित्य सुनते हैं, तो हमारे लिए बड़ा ही हमारा प्रिय कार्यक्रम है। और सुबह उठ करके मेरी पत्नी विविध भारती हर दिन लगा देती हैं।
0: क्या बात है।
1: और सबसे अच्छी बात यह है कि हर बार कुछ न कुछ मिलता है
0: जी,
1: जो दूसरे किसी कार्यक्रम में नहीं हो पाता। वो संगीत सरिता में मुझे हमेशा लगता है कि हमें कुछ मिल रहा है। तो अपने श्रोताओं को भी मैं कहूंगा कि आप और अधिक गंभीरता से संगीत सरिता सुने, क्योंकि इतने सारे लोगों को लेकर विविध भारती आता है और ये बहुत बड़ा योगदान है। हम अपने संस्कृति को जाने, अपनी सभ्यता को जाने, अपने महान कलाकारों को जाने, तो ये एक बहुत बड़ा हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है। तो आप सभी श्रोताओं को हृदय से प्रणाम कर रहा हूं और विविध भारती ने ये अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत आभार। विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और तबले पर साथ दिया आशीष बिस्वास जी ने, आपने बहुत ही कुशलता से संगत की और हम सबको बहुत अच्छा लगा आप दोनों यहां पर आए। और हारमोनियम पर संगत स्वयं शेखर सेन दादा ने किया। और अब हम सभी श्रोताओं से ले रहे हैं अनुमति। आप सभी को नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, आज हमने सुनी इस श्रृंखला की 13वीं और अंतिम कड़ी। आमंत्रित कलाकार, गायक, संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन, तबला संगत आशीष बिस्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। संगीत सरिता की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा हमारे फेसबुक पेज के जरिए www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर अपने कमेंट से हमें अपने विचार साझा कीजिएगा। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं आज है अभिनेता अशोक कुमार की जन्म जयंती और फिल्मकार गायक अभिनेता किशोर कुमार की पुण्यतिथि, तो इन्हीं से संबंधित गीत आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनाएंगे।
1: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे। आओ चली, भागो चली, जागो चली, आ ये कैसे चले, लाओ पैसे चले, आहा खड़े हो जाओ, तीन तीन की लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, सब खड़े, ला ला ला ला ला, लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में, तुम भी खड़ी हो जाओ लाइन में, हाँ तुम भी आओ ना।
2: मेरे पास पैसा नहीं है।
1: पैसे नहीं है तो ये लो, लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ। जा पहले वो तीन फिर दूसरे तीन, तुम भी आओ, पहले लाइन में चले आओ। अब शुरू करते हैं, एक दो।
3: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे। सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए।
4: क्या डाले गए?
3: एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक सलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक दीन, एक घोड़े की नाल, एक धीवर का जाल, एक लहसुन, एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक दी, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया। चुपके से पीछे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान खींच लिया, एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन, एक आलू, एक धीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक दीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक सलवार, एक बंदूक, एक बंदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी।
4: मगर नानी क्या कर रही थी?
3: नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी, नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी, नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी।
4: कितनी गहरी?
3: नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16.5, 15 दूना, 30 45 चौके सा, 75 छक्के, 90 साथी, 55 आठी, 30 नंबर, 25 गले में रस्सा।
0: अशोक कुमार और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे आशीर्वाद फिल्म से ये गीत। गुलजार ने इसे लिखा, वसंत देसाई का संगीत।
5: आज मौसम

0: झूला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अशोक कुमार, रहमत बानो और अरुण कुमार की आवाजों में। कवि प्रदीप ने इसे लिखा, सरस्वती देवी का संगीत।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और आज इस कार्यक्रम में अभिनेता अशोक कुमार और फिल्मकार किशोर कुमार के गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: T-A-T, कैट। कैट माने बिल्ली।
2: R-A-T, रैट। रैट माने चूहा।
1: C-A-T, कैट। कैट माने चूहा।

दिल्ली का ठग फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रवि का संगीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज फिल्मकार गायक अभिनेता किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर उनकी आवाज और उनके फिल्म से सजे गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: चाचा जिंदाबाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
3: कसूर आपका हुजूर।

बाहर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मुनीम जी फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज, साहिल उद्यानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में अभिनेता

0: किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में अपनापन फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के साथ साथियों की आवाजें। खट्टा मीठा फिल्म के इस गीत में आपने सुनी गुलजार के बोल, राजेश रोशन का संगीत।
1: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं,
3: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है
4: ना, बोलो, बोलो।
3: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा,
3: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
0: विविध भारती पर कार्यक्रम हम है राही प्यार के आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के, और आज है गायक अभिनेता फिल्मकार किशोर कुमार की याद का दिन।

0: किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में वर्मा मलिक के बोल आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज जानी दुश्मन फिल्म के इस गीत में आपने सुनी।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के, और इस कार्यक्रम में याद कर रहे हैं किशोर कुमार को।

जमीन आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, अनजान के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं जख्मी फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें, गौहर कानपुरी के बोल, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में जख्मी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। गौहर कानपुरी ने इसे लिखा, बप्पी लाहिरी ने संगीत से सजाया। और इसके साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक के राज्यपाल होंगे। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृहमंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की

0: हिल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया।
2: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी।
1: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी BLO पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन
4: तो शुरू करें।

0: बेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेवी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना में सुधार की दिशा में अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए देश के 100 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, कृषि गतिविधियों के लिए जल उपलब्धता में सुधार करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में जिले के प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।
4: राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा की कहानी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा

0: विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर के उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। नालंदा की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीनता नहीं बल्कि ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की परंपरा रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी विरासत को याद किया।
1: नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।
0: नालंदा की ये नई यात्रा भी सीमाओं से परे है। आज यहाँ 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए ये विद्यार्थी उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसे भारत वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में देखता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बताते हैं कि हम विकास भी और विरासत भी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: ये जब हम नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह की कोर्सेज शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के चिंताएं जताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है उसके माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं।
0: पुरानी नालंदा की विरासत आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से विकास और आधुनिक शिक्षा की नई ताकत बन रही है, जहां अतीत की सीख भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेशश्री की रिपोर्ट।
3: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4 करोड़ 77 लाख से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106 करोड़ 64 लाख वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष का प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू भश्रू और न्यायाधीश केएस हेमालेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% की कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओरियंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर 1 दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नादुसुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान में भी कल तक ऐसे ही मौसम की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चल रहे

0: नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने का समाचार सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं। गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, कई आंदोलनों के गवाह जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं। 3 नए स्थान तय, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, सीबीडी मैदान। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को परास्त करेगा मंगरोल। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ 3रा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट के बंद होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, सऊदी से उड़ानें बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका। 51% लोग शॉपिंग करने में ले रहे एआई की मदद, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कर रहे शॉपिंग। नवभारत टाइम्स की खबर है, पोर्टलैंड के पास ओरेगन के जंगलों में गुस्सा निकालने का अनूठा शिविर, जंगल में जुटता है महिलाओं का समूह, भड़ास निकालने के साथ खुद को करती हैं शांत, 7 दिन का पैकेज 4 लाख रुपए, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार, त्रिवेणी लेकर हाजिर हूँ मैं नेहा आगरकर देसाई। मुस्कान चेहरे पर सजी वो खूबसूरती है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। किसी की एक प्यारी सी मुस्कान हमारा पूरा दिन बेहतर बना सकती है, खासकर जब ये मुस्कान किसी ऐसे शख्स की हो जो हमारे लिए बहुत खास हो। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर मन में एक अलग ही खुशी महसूस होती है। शायद इसीलिए किसी की मुस्कुराहट को देखकर हम भी मुस्कुरा देते हैं। रिश्तों में भी मुस्कान की अपनी एक खास जगह है, क्योंकि कई बार शब्दों से ज्यादा असर एक सच्ची मुस्कान कर जाती है।

किसी खास इंसान की मुस्कान की बात ही कुछ और होती है। हम चाहें कितने भी परेशान क्यों ना हो, उसकी एक मुस्कान चेहरे पर खुशी ले आती है। कभी कभी तो उस मुस्कान में इतना अपनापन भरा होता है कि बिना कुछ कहे भी दिल को सुकून मिल जाता है। प्यार में शायद इसी एहसास की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। सामने वाला हमारे साथ हो या दूर, उसकी मुस्कान की याद भी चेहरे पर मुस्कान ले आती है। और जब कोई पूछता है कि आखिर इतनी खुशी की क्या वजह है, तो दिल बस उसी शख्स का नाम लेता है।

मुस्कुराने की कोई एक वजह नहीं होती। जिंदगी में खुशियों के बड़े मौकों के साथ साथ छोटी छोटी खुशियां भी होती हैं, जिन्हें महसूस करना जरूरी है। सुबह की पहली किरण, किसी अपने की आवाज, पसंदीदा गीत, दोस्तों के साथ बिताया हुआ वक्त या अचानक मिली कोई अच्छी खबर, ये सब हमें मुस्कुराने का मौका देते हैं। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उनके बीच भी खुशियों के छोटे छोटे पल तलाशना हमारे हाथ में है। इसलिए जब भी मौका मिले, दिल खोल कर मुस्कुराइए और अपने आसपास के लोगों के साथ भी ये खुशियां बांटिए। आखिर जिंदगी है तो इसे गुनगुनाइए और मुस्कुराइए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

खेले हम जी जान से। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सिने सिंगर्स एसोसिएशन कोरस ग्रुप की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, सोहेल सेन का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: किशोर कुमार, सुमित कुमार और विशाल ददलानी की आवाजों में बचना ए हसीनो फिल्म का ये गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसका मूल गीत लिखा और रैप वाला जो लिरिक्स है वो लिखा है विशाल ददलानी ने, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

सोना मोहापात्रा की आवाज में आप सुन रहे थे फुकरे फिल्म से ये गीत, जो कि एक लोकगीत है जिसे अडेप्ट किया मुन्ना धीमन ने, राम संपत का संगीत। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के ठीक बाद 9:30 बजे यानी 9:30 मिनट से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है फिल्मकार किशोर कुमार पर, और 10 बजे से आप सुन सकते हैं सेहत नामा का पुनः प्रसारण, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की बातचीत इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं। और अभी वक्त है चित्रलोक कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का।

विशाल दल्लानी, नक्स अजीज और प्रीतम की आवाजों में बजरंगी भाईजान फिल्म का गीत आपने सुना। मयूर पुरी ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत। और क्या आप भी सेल्फी लेते हैं? अगर हाँ तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कहा जाता है कि सेल्फी लेने के कारण आप खुद को ज्यादा देखते हैं और खुद को ज्यादा स्वीकार भी करने लगते हैं। लेकिन अगर सेल्फी लेने के बाद आप उस सेल्फी को देखकर खुद में मीन मेक निकालते हैं तो असली परेशानी यहाँ शुरू होती है। कैसी परेशानी भी बताएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है परेशानी जानने की। अभी तो आप सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: अरमान मलिक और अमाल मलिक की आवाजों में कपूर एंड सन्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अभिरुचि चंद का लिखा ये गीत अमाल मलिक ने संगीत से सजाया।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और हमने बात की थी एक परेशानी की। वो परेशानी ये नहीं थी कि सेल्फी ली जाती है बार बार, बल्कि वो परेशानी ये थी कि सेल्फी लेने के बाद खुद को देखकर हम इतना मीन मेक निकालते हैं खुद में। कई बार ऐसा कहा जाता है कि सेल्फी जो लेते हैं वो बड़े आत्ममुग्ध होते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, लेकिन ये उतनी बड़ी परेशानी नहीं है। क्योंकि परेशानी तो असली ये है कि हम अपनी हर बात में जब आलोचना करते हैं, क्योंकि कोई दूसरा हमारे बारे में क्या कहता है इस पर हमारा दिमाग उतना ध्यान नहीं देता जितना कि हम अपने बारे में क्या कहते हैं उसका असर हम पर होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को देखकर ही खुद की कमियों को बार बार बार बार कहते रहते हैं। तो कहीं आपके अंदर भी तो ये आदत नहीं कि आप अपनी कमी लगातार निकालते रहते हैं, लगातार अपने बारे में ऐसी बातें करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं खुद की? अगर है तो कोई बात नहीं, ये आदत भी सुधारी जा सकती है।

pregunta?

0: तनिष्का सांघवी और साथियों की आवाज में हिंदी मीडियम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, कुमार के बोल, सचिन जिगर का संगीत।
1: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और हम बात कर रहे हैं खुद की कमी खामी और निकालने की जो बुरी आदत होती है, खुद की बुराई करने की आदत होती है, ये क्यों होती है एक इंसान में? उसे लगता है कि अपने अंदर हम सुधार कर रहे हैं, लेकिन लगातार अगर हम अपने साथ ऐसा करते हैं, लगातार खुद की बुराई करते रहते हैं, खुद में मीन मेक निकालते रहते हैं, तो हम अपनी कोई मदद नहीं कर रहे होते, हम अपने अंदर सुधार नहीं कर रहे होते, बल्कि खुद को हम कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दे रहे होते हैं और खुद को हम दबा रहे होते हैं, तो इससे हमारा व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो अगर जब भी हमारे मन में, क्योंकि एक आदत है तो इतनी जल्दी तो ये आदत जा नहीं सकती, अगर हम कहें कि आज के बाद से हम अपनी बुराई नहीं करेंगे तो ये आदत भी जा नहीं सकती तुरंत। तो जब भी अपने मन में कोई ऐसी बात आए कि भाई देखो ये मैं तो अच्छे नहीं दिख रहा हूँ, या देखो मेरी तो यही आदत है,

या तो मैं हमेशा गलती कर देता हूँ, मैं हमेशा देर से आता हूँ, इस तरह की जो बुरी बातें हम अपने बारे में बोलते रहते हैं, कमी निकालते रहते हैं, तो ऐसा कोई भी विचार जब हमारे मन में आए तो उसे बस नहीं बोलेंगे, मत सोचिए, क्योंकि आपने सोच तो लिया है तो असर तो आप पर होने ही वाला है। तो उन कमियों को दूर करने का कोई तरीका तो होगा आपकी नज़र में, कि अगर देर से जाता हूँ तो आप सोचेंगे कि नहीं आज मुझे जल्दी जाना है, तो इस तरह का कोई जो एक तरीका हो, कोई जिससे उन कमियों को दूर कर सकते हैं, वो आप खुद को बताएं। तो अगर आप ये खुद के बारे में बोलने लगेंगे तो इससे आप खुद को नेगेटिविटी नहीं देंगे बल्कि सकारात्मक विचार देंगे, और बदलाव भी इसी तरह से सकारात्मक होगा। और एक काम आप कर सकते हैं कि रोजाना आईने के सामने खड़े होकर के कम से कम अपने बारे में 3 अच्छी बातें तो बोलिए ही, यानी कि अपनी तारीफ कीजिए। भाई अपनी तारीफ में कैसी शर्म,

अमिताभ भट्टाचार्य के बोल आप सुन रहे थे। प्रीतम के संगीत के साथ रफ्तार और साथियों की आवाजें दंगल फिल्म के इस गीत में। और अगर आपके मन में भी दंगल मचा हुआ है कि आप अपनी क्या तारीफ करेंगे और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपनी तारीफ में आप क्या कहेंगे, तो कोई बात नहीं, ये गाना आपके लिए।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे ओके जानू फिल्म का ये गीत, गुलजार के बोल, ए आर रहमान का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और आप अपनी तारीफ कीजिए, तब तक हम आते हैं एक अंतराल लेकर।

0: विशाल ददलानी की आवाज में शेफ फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। अंकुर तिवारी ने इसे लिखा, रघु दीक्षित का संगीत।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

हृदय गट्टानी और की आवाज में आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत बैंजो फिल्म के इस गीत में। और जैसे कि हमने बात की कि हम अपनी खुद की बुराइयां ना करें, अपनी तारीफ करें और जो कमियां हमें खुद में दिखती हैं उन्हें स्वीकार कीजिए, देखिए, लेकिन जहां वाकई कमी हो उसे ही मानिए और स्वीकार कीजिए। और सिर्फ मानने और स्वीकार करने से कुछ नहीं होगा बल्कि उसे बदलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि खुद को अगर हम बदल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ कमियां निकाल रहे हैं, तो इसका तो कोई फायदा नहीं है। तो रोज खुद को एक एक कदम आगे बढ़ाइए, सकारात्मकता की सीढ़ी पर चढ़ाइए और खुद को प्रेरित कीजिए आगे बढ़ने के लिए, और ये करते हुए आपका मन भी खुशी से झूम उठेगा।

खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए दिन भर जहां भी रहिए। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। आज के इस कार्यक्रम से दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत।

0: ये है विविध भारती।
1: आज की फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार

नमस्कार श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।

सन 1929 के अगस्त महीने की चौथी तारीख को जन्मे किशोरदा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो ये है कि किशोरदा अपने आप में अभिनय और गायन की एक संपूर्ण संस्था।

मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पारी की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

सन 1951 में किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। यह फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने एक गीत गाया जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलील दा ने फिल्म नौकरी का वो गाना किशोर दा से गवाया।

0: बंसुरी बजा।
1: किशोर दा की अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, 9 2 11 और पेइंग गेस्ट।

किशोरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया करते थे।

0: बतारे एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए उन्हीं पर फिल्माया गया ये।

किशोरदा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोरदा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में राजेश खन्ना।

फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया। इनमें से कुछ के नाम हैं, दूर गगन की छाव में, दूर कराही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

0: एक कलाकार के रूप में किशोरदा बेमिसाल थे, हरफन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग्य का एक चितेरा, एक दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए ओए तेरी तिरछी नजरिया
2: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
0: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोरदा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।
3: जिंदगी का सफर।

किशोरदा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोरदा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोरदा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

0: कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: कोई लौटा नहीं।
1: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के महान कलाकार किशोर कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

0: दोस्तों आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में
2: मुझे आमंत्रित करने के लिए। और बड़ा अच्छा लग रहा है, ये डॉक्टर्स के लिए नया एक्सपीरियंस रहता है ना।
1: अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अपनी पढ़ाई कहां से की है और आप कहां के रहने वाले हैं संदीप जी?
2: मैं रहने वाला प्रयागराज इलाहाबाद, और पढ़ाई मैंने की है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से।
1: अच्छा अच्छा, क्या बात है।
2: और उसके बाद फिर मैं दिल्ली मूव कर गया था, वहां पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में था, सफदरजंग हॉस्पिटल में था। उसके बाद फिर मुंबई की तरफ रुख किया।
1: जी जी,
2: यहाँ पे मुंबई में बॉम्बे हॉस्पिटल है, बहुत प्राचीन हॉस्पिटल है, बहुत मशहूर और बहुत अच्छा काम होता है इंटेंसिव केयर का। तो वो फिर मैंने वहां इंटेंसिव केयर की ट्रेनिंग की।
1: आपने इंटेंसिव केयर को क्यों चुना अपने स्पेशलाइजेशन के लिए?
2: हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जब मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमको लगता है डॉक्टर ऐसा होना चाहिए कि लाइफ सेवर हो जो।
1: हाँ,
2: और वो केसेस जितने भी हैं वो इमरजेंसी में ही आते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो ऐसा लगता था, मतलब डॉक्टर सबका रोल है, ऐसा नहीं है कि जो बाकी दूसरे डिपार्टमेंट है उनका सब एक टीम वर्क होता है, लेकिन वो डायरेक्ट जुड़ जाता है। अब इंटेंसिव केयर का डॉक्टर जो रहता है, वो जब यंग होते हैं आप, जब तैयारी कर रहे होते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो, तो लगता है नहीं यार जान बचानी है कम से। तो वो एक था इंटरेस्टिंग मेरी तरफ से, ऐसा कि भाई चैलेंजेस रहते हैं, हर दिन आप एक नया चैलेंज देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी भी मेडिकल साइंस बहुत तरक्की किया है लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है अभी भी।
1: बिल्कुल।
2: तो वो है
1: एक चीज जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी कोई मरीज आईसीयू में जाता है तो परिवार में एक तरह से पैनिक हो जाता है कि आईसीयू में जाने का मतलब अमूमन ये माना जाता है कि जान बचने वाली नहीं है। एक इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट के तौर पर आप इन बातों को थोड़ा क्लियर कीजिए कि आईसीयू में जाने का मतलब बहुत नहीं, पैनिक नहीं है, वहां से लोग लौट कर भी आते हैं।
2: नहीं नहीं नहीं सर, अभी तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं
1: जी,
2: और जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है। 100 में से 99 तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ 90 से ऊपर लोग वापस आते हैं। ये ऑब्वियसली कि आप किसी भी पेशेंट को, उसके सगे संबंधी को बोलेंगे कि भाई इंटेंसिव केयर यूनिट की जरूरत है, तो थोड़ा तो लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उतने डरने की बात नहीं है। और इस भ्रम की वजह से भी कि इंटेंसिव केयर यूनिट पे नहीं जाना चाहिए, हमको घर पे ही रख दो या हम वार्ड में ट्रीटमेंट लेंगे, ये कभी कभी समय बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप सही समय

0: पे सही जगह पहुंच जाते हैं, ये हर फील्ड में है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सही समय पे सही जगह पहुंच गए तो आपके बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और अब वो भी नहीं है कि पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था कि लास्ट स्टेज में आईसीयू, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम सिर्फ मॉनिटरिंग की, भाई इनके वाइटल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर पल्स ऊपर नीचे हो रहा है, ऑक्सीजनेशन ऊपर नीचे हो रहा है, तो सिर्फ एक क्लोज मॉनिटरिंग के लिए भी शिफ्ट करते हैं।
1: एक बहुत नॉर्मल परिस्थिति में, यानी बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति ना हो, सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए
0: हाँ,
1: भी किया
0: आप उस तरफ ना जा पाए। नॉर्मल सिचुएशन को इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करने से एक बीच का एक रास्ता बना भैया है कि ब्रेक कर दिया हमने।
1: हाँ,
0: एक पेशेंट थोड़ा सा बैड हुआ, उसको हमने इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया और उसको स्टेबलाइज कर दिया, और 80-90% केसेस स्टेबलाइज हो जाते हैं सर।
1: आपसे बात करते हुए जाने क्यों मुझे कोरोना का समय याद आ गया, क्योंकि आईसीयू की इतनी बातें हुई उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उन्हें तो याद करते हुए भी जरा डर लगता
0: बहुत,
1: है।
0: बहुत बहुत बहुत
1: वो
0: भयानक
1: कितना
0: स्थिति
1: चैलेंजिंग वक्त था आप लोगों के लिए, जो खासतौर पर आईसीयू स्पेशलिस्ट
0: मेरे ख्याल
1: डॉक्टर्स
0: से
1: हैं।
0: जो भी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा है ना सर, उसके लिए तो मतलब शुरुआत के दौर में था कि कुछ पता ही नहीं था ना इस बीमारी के बारे में। ये था कि भाई कोरोना हुआ और वो नहीं बचेगा, और शुरू में मेडिकल साइंस को भी नहीं पता था। ट्रायल एरर हिट एंड ट्रायल चल रहा था, भाई ये दे दो ये दे दो। तो हमें याद है कि जो हमारा फर्स्ट टाइम जब हमने एक अलग से इसको बनाया, भाई कोरोना केयर यूनिट रहेगा, यहां पे अलग से पेशेंट रहेंगे, तो वो बहुत स्केरी था, क्योंकि हमको खुद भी नहीं पता था कि हमारा क्या होगा। हमारा मरीज है बट दुनिया को कुछ पता नहीं था कि किस तरफ हम जा रहे हैं।
1: हम एक अननोन राक्षस से लड़ रहे
0: हाँ
1: हैं।
0: हाँ और बहुत अच्छे से हम लोगों ने उसको किया, ऐसा नहीं, हम लोगों ने बहुत जान बचाई, बहुत सी नहीं बचे वो तो उस पर क्या कमेंट किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे से किया उसको, हम लोग उस समय को निकाल पाए।
1: आपके लिए इमोशनली ये कितना मुश्किल होता है कि आप एक ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़े हैं मेडिकल के, जहां जाने बच भी जाती हैं और चली भी जाती हैं,
0: हाँ
1: तो किसी पेशेंट को खो देना इमोशनली कितना बड़ा झटका होता है आपके लिए, और
0: ये
1: रोजमर्रा की जिंदगी में कितना भारी पड़ता है।
0: जो हम लोग है तो इंसान ही ना,
1: जी
0: वो पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी। और उससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, किसी को सगा संबंधी आप स्थिति में आ जाए तो उससे बड़ा नुकसान तो कुछ भी नहीं होता ना। तो बहुत 1-2 साल हमको वही लग जाता है सीखने में कि बात कैसे करनी है, बैड न्यूज कैसे आपको सामने वाले को बताना है, वो टच बनाए रखे हुए। मतलब आप मशीन से तो बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया अब नहीं हो सकता। उसके लिए भी एक हमारे जो सीनियर्स डॉक्टर से, वो आपको कभी रूड नहीं होना है, भाई आप सामान नहीं बेच रहे ना यार, इंसान की जिंदगी का सवाल है, तो बात भी हमारी हो जाए, उनको हम अंधेरे में भी नहीं रखे, वो भी बताना एक जरूरी होता है कि भाई कुछ कुछ बीमारियां हैं जिनका कुछ इलाज नहीं है। वो न्यूज देना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, रोज का चैलेंज है सर वो,
1: जी,
0: कि कैसे आप उस चीज को रखें कि अभी है तो है, कुछ चीजें आप नहीं बदल सकते, वो बताना तो होता ही है।
1: बिल्कुल मैं समझ सकता हूं। अब बदलते वक्त के साथ भारत में जो आईसीयू फैसिलिटीज हैं उनमें किस तरह का बदलाव आया है? जब आप पढ़कर निकले थे तब से अब तक भी बहुत
0: बहुत
1: वक्त बीत
0: बहुत
1: गया, तो
0: आसमान जमीन का फर्क हो गया सर, और इसलिए मैं डॉक्टर में सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी इग्नोर ना करें। सही बीमारी सही समय पे पकड़ आ गई तो मेडिकल साइंस हमारा इतना तरक्की कर गया है कि आप हर बीमारी में कम से कम एक लाइफ स्टाइल तो आपको अच्छी हम दे ही सकते हैं, भले वो कैंसर का ही मरीज क्यों ना हो। जो जानलेवा बीमारियां हैं, और आजकल खासकर आप देख रहे हैं हार्ट अटैक अचानक डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी कभी ये रहता है कि भाई जांच क्यों कर रहे हैं आप। दोनों चीजें हैं, मैं मानता हूं कि भाई ओवर इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं, बट आप अगर हमारी तरफ बैठ के देखेंगे ना, तो हमारे दिमाग में रहता है यार ये मेरे पास होके जा रहा है, कुछ बच ना जाए यार, यंग है फिट है, एज अ डॉक्टर कुछ
1: कोई कमी ना रह जाए।
0: हाँ कल को बाद में आप सोचते हैं यार इसका ईसीजी कर लेते भाई, छोटी सी जांच। अक्सर आप देखते होंगे चेस्ट पेन 90% एसिडिटी है, हमारे हिंदुस्तान में तो हर चीज एसिडिटी रहती है।
1: जी
0: हाँ वो सर वड़ा पाव खा लिया था,
1: जी
0: मैं भी मानता हूं, लेकिन यार वो थोड़ा बेसिक तो चाहिए हमको कि ये चेस्ट पेन है वो एसिडिटी का है या कार्डियक है, ये जो हाथ पांव में कमजोरी है ये स्ट्रोक है या आपके नहीं सोने की वजह से है या ना खाने की वजह से, ये पहचानने के लिए जांच तो जरूरी है, बेसिक ये अवेयरनेस थोड़ा हमको आम पब्लिक तक भी फैलानी है। तो आपकी पहुंच गांव गांव कोने कोने में है, तो
1: ये पूरी दुनिया में।
0: हाँ हाँ।

0: तो बहुत अच्छा माध्यम है ये कि बेसिक करवा लो यार, बेसिक जांच। और आजकल तो स्वास्थ्य केंद्र में भी हमारे भारत सरकार की तरफ से तो हर चीजें हैं कि आप बेसिक स्क्रीनिंग हो जाती है। कभी भी कमजोरी लग रही है 4-5 दिन ठीक है, उसके बाद लग रही है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, छोटी सी जांच कर लीजिए। हम भी यही चाहते हैं कि वो जांच नॉर्मल हो, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन बिना उसके ये थोड़ा है अभी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, अवेयरनेस आ रही है बट अभी भी बहुत जरूरत है इसमें, खासकर जो इस तरह की जो हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, ये बहुत अर्ली स्टेज में आ गया तो हम लगभग लगभग पूरा ही कंट्रोल कर सकते हैं।
1: आपने एक बहुत बड़ा और जरूरी मुद्दा उठाया कि हमको शरीर के संकेतों को पहचानना और पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। गंभीर बीमारियों में वो कौन से संकेत हैं जो शुरुआती संकेत हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफस्टाइल से जोड़ के इग्नोर करते हैं, इस बारे में थोड़ा तफसील से
0: बताइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। देखिए नेचर ना आपको साइन सिम्टम सब देता है, नेचर किसी के साथ ऐसा बेईमानी नहीं करता है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं वो अलग बात है। कोई भी अगर 6-7 दिन मान लीजिए आप थकान लग रही है तो 6-7 दिन, 7 का फिगर रखिए, 7 डेज का एक याद रखना बड़ा मुश्किल हो रहा हो। तो इस तरह जितनी क्रॉनिक बीमारियां हैं कि भाई कमजोरी लग रही है, कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, वजन कम लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, शहर में तो ठीक है दिल्ली मुंबई में है तो आप हॉस्पिटल्स में आप तुरंत, लेकिन छोटे जगह पे भी है ना, तो आसपास आजकल स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाके डॉक्टर को बताइए जरूर। ये तो नॉर्मल जो सिम्टम है भाई, नींद नहीं आ रही है यार, भूख नहीं लग रही है, हो सकता है नॉर्मल ही होगा, लेकिन कभी कभी वो बहुत बड़ी बीमारी का संकेत भी रहता है। और कुछ चीजें जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, जितनी जल्दी हो उतने जल्दी डॉक्टर को संपर्क करना है, वो भी मैं, जैसे आपको चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सिर्फ चेस्ट डिस्कम्फर्ट नहीं, आपके जॉज में पेन हो रहा है, आपके ईयर में पेन हो रहा है और आपको लग रहा है हेडेक हो रहा है और आपको लग रहा है थोड़ा सा ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। और आजकल खासकर स्ट्रोक में थोड़ा भी कहीं भी आपको कमजोरी, देखिए एक जनरल कमजोरी होना एक अलग बात है, लेकिन आपको किसी अगर विटामिन की कमी है तो सिर्फ दाएं हाथ में कमजोरी नहीं होगी, सिर्फ आपका बाएं उंगली में ऐसा कोई सेंसेशन जा रहा है तो विटामिन की कमी है, सिर्फ वहां नहीं होगा, ये स्ट्रोक का अर्ली साइन हो सकता है,
1: यानी एबनॉर्मेलिटीज पर ध्यान देना।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, इग्नोर नहीं करना किसी भी चीज को ना, हर चीज हम सिर्फ शरीर को ही इग्नोर करते हैं। बाकी दीवार से कहीं पानी टपक रहा है तो अरे पानी क्यों गिर रहा है, गाड़ी में हवा कम है, हवा का कम है, मोबाइल का ये स्क्रीन क्यों, लेकिन जिस शरीर के सहारे हम सारी जिंदगी निकालते हैं ना, थोड़ा दिखाई ठीक है वो आंखों में लगता है चश्मा, वो इग्नोर करते हैं हम,
1: जो जरूरी बात है उनको
0: वो इग्नोर करते हैं। दांत में दर्द ठीक है यार, कभी कभी वो दांत दर्द हार्ट या कार्डियक का भी तरफ आप लेके जा सकता है, बट हम लोग थोड़े इंडियन लोग हैं ना, वो खाने पे डाल देते हैं, ये गलत नहीं है, होता है, 60-70% वैसे ही रहता है, बट हाँ ये साइन है जो कि आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि यार ये पूछने में क्या जाता है। आजकल तो इतने सुविधाएं हैं, व्हाट्सएप है, हर आदमी कहीं ना कहीं से जुड़ा है, तो आप जो भी मेडिकल से जुड़े लोग हैं उनसे आप डिस्कस तो कर सकते हैं, वो आपको गाइड तो कर देंगे।
1: डॉक्टर साहब, ये बहुत जरूरी मुद्दे पर बातें हुई और सेहतनामा कार्यक्रम का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है गाने, तो यहाँ एक गाने का ब्रेक लिया जाए और आपकी पसंद का पहला गाना सुनवाया जाए।
0: हाँ ये जरूरी है, ये डॉक्टर लोग के लिए भी जरूरी है और मरीजों के लिए भी जरूरी है।
1: जी
0: तो किशोर दा का एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है,
1: जी
0: ये जीवन है इस जीवन का बहुत।
1: देखिए मुझे तो ये पता है कि आप गुनगुनाते हैं तो ऐसे तो नहीं बच के जाइएगा,
0: थोड़ा सा गुनगुना देते हैं
1: जी।

उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है ये जीवन है।

0: डॉक्टर संदीप, बातें हो रही हैं इंटेंसिव केयर की। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक आईसीयू स्पेशलिस्ट की दिनचर्या क्या होती है, आप किस तरह से क्या काम करते हैं?
1: इसमें थोड़ा हमारा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन ठीक है, आप डॉक्टर बने हैं
0: जी,
1: आप आर्मी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पुलिस वाले हैं, तो थोड़ा तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। रात की नींद जरूरी है, लेकिन एक कॉल अगर किसी मरीज का आ रहा है तो आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं।
0: तो किसी भी वक्त मुस्तैदी से जाना पड़ सकता है।
1: हाँ, कुछ प्रोफेशन है ऐसे, डॉक्टर हुआ, आर्मी वन हुए, पुलिस वाले हमारे हुए, ये इनका समय का क्या ही करेंगे सर।
0: जी जी बिल्कुल,
1: बाकी लोग चैन से सोए तो कोई तो जगेगा।
0: बिल्कुल।
1: बट हाँ, फिर भी हम डॉक्टर हैं, हम लोग तो, हमें पता होता है कि उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो नींद कहाँ कैसे पूरी कर सकते हैं। और जैसे हर आदमी को चाहिए अपने दिनचर्या में थोड़ा योगा, थोड़ा एक्सरसाइज, खान पान का ध्यान रखना, सही वक्त पे सोना, सही वक्त पे उठना। और आजकल सबसे बड़ा ना फैक्टर हो गया है स्ट्रेस सर।
0: जी जी
1: ये आप जब मेडिकल की किताबें पढ़ेंगे ना, तो हर बीमारी के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में कहीं ना कहीं स्ट्रेस लिखा रहता है।
0: जी,
1: दिल की बीमारी हो, वो दिमाग की बीमारी हो,
0: थायराइड हो,
1: इवन कैंसर, कोई भी स्ट्रेस में है उसको, कोई भी बीमारी होने की संभावना ज्यादा है, ये आप मान के रखिए। और हर को ऊपर वाला कुछ ना कुछ देता है, कोई म्यूजिक है, कोई पेंटिंग करता है, कोई गार्डनिंग, कुछ ना कुछ एक शौक रखिए और अपने दिनचर्या में से 15 मिनट 20 मिनट निकालिए उस चीज के लिए, कम से कम डिस्कनेक्ट होइए ये स्ट्रेस से।
0: जी,
1: वो बहुत जरूरी है सर मेरे ख्याल से। इंटेंसिव केयर यूनिट तक बात ही ना आए यार, बाहरी केयर कर लेते हैं।
0: जी, मतलब जीवन में एक शांत मन और एक स्वस्थ तन के लिए बहुत जरूरी है कि हम टेंशन से दूर रहें, हम दबावों से दूर रहें।
1: वो जो WHO की डेफिनेशन आती है ना हेल्थ की, उसमें शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है।
0: जी जी,
1: आप स्ट्रेस में हैं तो आप कुछ भी एंजॉय थोड़ी ना कर पाइएगा।
0: बिल्कुल,
1: आपका हेडेक हो रहा है तो आप कितनी भी अच्छी पिक्चर हो, कितने भी अच्छे गाने, आप एंजॉय तो नहीं कर सकते ना। किसी भी चीज को एंजॉय करने के लिए आपका स्वस्थ होना, किसी भी चीज को एंजॉय, पैसा भी है तो किस काम का जो आप हमको ही देने के लिए रखे है, मतलब नहीं है ना।
0: बिल्कुल।
1: एज अ

0: डॉक्टर तो सबको ये एडवाइस है कि अपने लाइफ स्टाइल पे, अपने दिनचर्या पे बहुत ध्यान रखें, और बहुत मुश्किल काम नहीं है सर।
1: जी जी,
0: बहुत सिंपल ही, ऐसा कुछ आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है। समय पे सोना है, समय पे खाना है, मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करना। दूर तो नहीं रह सकते, कोशिश कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है, सबके लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, बहुत सारी बातें अलग अलग मुद्दों पर हो रही हैं। और डॉक्टर संदीप, मैं ये, चूंकि बारिश और बारिश के बाद के मौसम के ये दिन, जहां पूरे देश में अलग अलग तरह के बुखार फैले हुए हैं जो धीरे धीरे कई परिस्थितियों में गंभीर रूप ले लेते हैं और आईसीयू तक मामला चला जाता है, इस मामले को जरा हमें समझाएं और इससे जुड़ी हुई सावधानियां बताएं।
0: हाँ, ये बहुत अच्छा, इस समय को देखते हुए बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा मलेरिया, डेंगू, जब भी बारिश होती है हमारे यहाँ, तो बारिश का एक मौसम का एक अलग मजा है, लेकिन मजा तभी तक है जब आप स्वस्थ रहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो उसमें भी जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि किसी भी चीज को, किसी भी साइन सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है, और खासकर इसमें बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, थकावट, बारिश के सीजन में इन सब को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सिर्फ काउंटर से दवा लेके नहीं खानी है सर। बुखार अगर 24-48 घंटे है तो एक बार जरूर संपर्क करें डॉक्टर से। इसमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा है कि आप हाइड्रेशन मेंटेन करें,
1: जिस पर आजकल ध्यान नहीं होता, क्योंकि लोग पंखे की हवा में होते हैं,
0: नहीं नहीं सर,
1: एसी में होते हैं। पानी जो है वो मोस्ट इग्नोर्ड चीज है।
0: डेंगू का ही मरीज है तो उसका हम क्या करते हैं, उसको आराम कराते हैं, उसका हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, और सिम्टम जो है उसकी बुखार वगैरह की दवा दे देते हैं।
1: जी जी,
0: आप देखें ज्यादातर बीमारी को कुदरत ही ठीक करता, आप सहारा दीजिए। डॉक्टर का काम यही होता है कि हम सपोर्ट कर दें, बॉडी को सपोर्ट कर दें, और नेचर अपने आप आपको क्योर करता है।
1: जी, एक समस्या जो बहुत बड़ी है कि बुखार आया या जुकाम हुआ तो ओवर द काउंटर मेडिसिन लोग ले लेते हैं, घर पर पड़ी हुई है।
0: हाँ,
1: तो
0: हाँ, बराबर,
1: पैरासीटामोल उठा के ले लिया,
0: सही बात
1: है ना। तो ये जो चीजें हैं, इनसे सावधान कैसे करें लोगों को? इतने सालों से ये बात चली आ रही है पर ओवर द काउंटर दवाओं का इस्तेमाल रुकता नहीं है।
0: ये बहुत बड़ी समस्या है सर, खासकर एंटीबायोटिक्स जो हम लोग मिसयूज गए और उठा के लिया है। यहाँ तो बड़े शहरों में तो ठीक है, जल्दी मिलता नहीं है, बाकी जगह तो आप जाइए और लेके आ जाइए। एक बुखार आया तो एक टैबलेट मान लिया, ठीक है, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में है, दूर है, एक क्रोसिन ले लिया। लेकिन अगर बुखार 24 घंटे से ज्यादा का है तो एक छोटा सा ब्लड रिपोर्ट तो करना ही चाहिए आज के सिनेरियो में। कोई भी एक्सपर्ट इसीलिए बनाए भी जाते हैं, डॉक्टर्स इसीलिए हैं। और अभी तो बहुत सुविधाएं हैं सर, अभी तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत समय लगेगा, बहुत अभी तो हर जगह स्वास्थ्य केंद्र है, थोड़ा भी है तो आपको एक सही दिशा तो मिल ही जाती है। मैं तो बिल्कुल बोलूंगा ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें, उसका बहुत नुकसान होता है, और उसके ही परिणाम कि आजकल आप देख रहे हैं किडनी की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, लीवर की बीमारियां, ये सब ये जो दुरुपयोग है ना, किसी भी चीज का आप मिसयूज करेंगे तो ये उसका ही परिणाम है कि आजकल बहुत इस तरह की बीमारियां आपको देखने को मिल रही हैं।
1: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और बाकी एक्सपर्ट्स ने भी बीते दिनों एक बड़ी मुहिम चलाई थी कि अगर एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं किया जाता तो एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है जो व्यक्ति को आगे के लिए दिक्कत दे सकता है।
0: मैं आपको बताऊं कि जब हम मेडिकल में पढ़ते थे 2006 तक की बात बताऊं तो उस वक्त था कि 10-20-25 रुपए के एंटीबायोटिक में आदमी ठीक हो जाया करता था। आज की तारीख में सर जो रेजिस्टेंस जो हो रहा है, लोग बोलते हॉस्पिटल का बिल आ रहा है, अरे एक दिन का एंटीबायोटिक की दवा की कीमत ही हो जाती है 10,000। हायर एंटीबायोटिक्स इतने, क्योंकि ये वही अब हमने यूज कर करके, मिस यूज करके, यूज नहीं करके, हमने मिस यूज करके उसका इतना रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है
1: कि दवाएं असर ही नहीं कर,
0: असर ही नहीं कर रही है। आपको हायर एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ रहा है, वो महंगी है, और प्लस जान के लिए कितना खतरा है एंटीबायोटिक। हमको भी लिखने से पहले दो बार सोचना पड़ता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है, जान बचाने के लिए लिखना पड़ता है। लेकिन ये बहुत गलत है और आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही डिजास्ट्रस हो सकता है अगर हम अभी नहीं सुधरे। ये अभी भी वक्त है, सुधर जाएं, नहीं तो सिर्फ 1929 में पेनिसिलिन, उसी वक्त पेनिसिलिन आई थी जिसने सारी सृष्टि को बचा लिया था। वो स्थिति फिर आने वाली है ऐसा लगता है, जिस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो ही स्थिति, अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं होते तो अभी तक सृष्टि खत्म हो चुकी होती। तो वो स्थिति हम फिर इंसान लोग पैदा ना करें।
1: ये रेजिस्टेंस क्यों होता है, एक आम आदमी को एक आम भाषा में जरा समझाइए।
0: देखिए रेजिस्टेंस का आपको वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और वही एंटीबायोटिक चल रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसका इन्फेक्शन नहीं है, किसी और का इन्फेक्शन है, दवा कुछ और ले रहे हैं, तो धीरे धीरे बैक्टीरिया अपने आप को इस तरह

0: से मजबूत कर लेता है कि सिर्फ नॉर्मल एंटीबायोटिक फिर उस पर काम ही नहीं करती है, उसको आप वक्त दे देते हैं। ये नॉर्मल भाषा में समझाने के लिए कि आपने जैसे अधमरा सांप ना छोड़ते नहीं है, बाद में आपको वो डसने वाला है, वो बैक्टीरिया का वही हाल है। आपने उसको हाफ ट्रीटमेंट पार्शियल ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया, वो फिर बाद में जब रिबाउंड करता है ना, तो वो एक नॉर्मल, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं लोगों को कि बाबा खुद से एंटीबायोटिक थेरेपी तो बिल्कुल मत कीजिए आप,
1: जी
0: स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ के निरीक्षण नहीं कीजिए उसको।
1: तो इस बीच में जो बातें हुई उसका सार ये है कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर केमिस्ट पर जाकर एक तो ओवर द काउंटर दवाएं अपनी तरफ से इलाज न करें, और दूसरा ये है कि बिना बात के एंटीबायोटिक आधी अधूरे कोर्स कर लेने से जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो हम सब इंसानों के लिए बहुत खतरनाक बनता चला,
0: बहुत बड़ा इंसानियत के लिए वॉर से ज्यादा खतरनाक ये बैक्टीरिया होने वाले हैं, जिस तरह से ये हमारे सामने आ रहे हैं चीजें।
1: जी
0: इंटेंसिव केयर यूनिट पे हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया है तो सब पैन रेजिस्टेंस, कि कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही, एक काम कर रही है सिर्फ। सपोज आने वाले समय वो भी नहीं काम किया
1: तो कुछ भी काम नहीं
0: तो क्या करेंगे हम। ये एक बड़ी भयानक स्थिति होने वाली है अगर हम सही समय पे हम नहीं सुधरे तो।
1: जी डॉक्टर साहब, अब यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ हाँ, बहुत
1: तो आपकी पसंद का अगला गाना कौन सा होगा?
0: एक कर्ज फिल्म का ओम शांति ओम।

0: डॉक्टर संदीप वर्मा से बातचीत हो रही है। ये जो आईसीयू के विशेषज्ञ हैं और अलग अलग मुद्दों पर बातें चल रही हैं। डॉक्टर साहब, वापस एक खतरनाक जो जगह आईसीयू, उसकी तरफ चलते हैं। जब कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज आता है, मान लीजिए उसको स्ट्रोक है, अटैक है या कोई और बीमारी है, तो एक आईसीयू में तैनात डॉक्टर क्या प्रोसेस करता है, वो क्या प्रोटोकॉल होता है उसका?
1: सबसे पहला प्रोटोकॉल हमारा होता है कि उसको स्टेबलाइज करना।
0: जी,
1: एक नॉर्मल कि भाई पल्स, बीपी, ऑक्सीजन, पेशाब ठीक से बन रहा है, इतनी चीजें बेसिक हैं। तो फर्स्ट हमारा ये रहता है कि इसको स्टेबलाइज करें। इसको
0: आप लोग बहुत टेंशन के दौरान काम करते हैं, क्योंकि आईसीयू का मतलब है कि बहुत पैनिक में।
1: वो हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि पैनिक नहीं होना है,
0: मरीज और उसके साथी भले पैनिक हो,
1: क्योंकि उस स्थिति में फिर आपका दिमाग नहीं काम करता है।
0: जी,
1: स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, पैनिक से हम लोग नहीं मतलब बचते हैं कि भाई, क्योंकि अभी हमको हमारे पास टारगेट सामने है कि भाई इसकी जान बचानी है। जितना हमने सीखा है, जितना हमने पढ़ा है, उसका सही उपयोग करके इस आदमी को इस कंडीशन से बाहर निकालना है। फिर हमारी एक विशेषज्ञ की टीम होती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे किडनी का है तो किडनी के स्पेशलिस्ट को, ब्रेन का है तो ब्रेन के स्पेशलिस्ट को, और फिर हम एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं कि स्टेबलाइज करते हुए इसकी वजह निकालनी, क्यों इस कंडीशन में पहुंचा। ट्रीट द कॉज हर का रहता है कि भाई इन्फेक्शन हुआ तो कहां से आ रहा है, यूरिन से आ रहा है, ब्लड से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, वो पता लगाना, फिर अकॉर्डिंग टू दैट उसको ट्रीट करना। यही बेसिकली इंटेंसिव केयर ही होता है कि आप पहले तो उसको स्टेबलाइज किया, उसके ऑक्सीजन को, उसके ब्लड प्रेशर को, उसके हार्ट रेट को, फिर पता लगाया एंजियोग्राफी करके भाई किस जगह से क्लॉट है, उसको वहां से दूर किया। उसमें भी स्टेजिंग होती है, वो तो बात की चीजें हैं, बट रिवार्डिंग भी बहुत है सर। जब आपका मरीज अच्छा होता है तो उससे अच्छा आपको कुछ, फिर वो पैसा दे ना दे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो जब हंस के उसके परिवार वाले बोलते हैं ना, सर आपने बचा लिया
0: जी,
1: तो उससे बड़ा रिवार्ड हम डॉक्टर्स के लिए कुछ नहीं होता है।
0: और
1: बहुत अच्छा लगता है ऐसा, हमेशा स्ट्रेसफुल जब वो रिजल्ट मिलता है ना उसका, तो वो बहुत अच्छा भी लगता है।
0: बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। आपने अलग अलग शहरों के छोटे बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया है और एक बड़ा अनुभव आपके साथ है, तो अपने करियर की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त आपको याद आ रही हो।
1: 26/11 हुआ था, बहुत दुखद हादसा था और हम लोग उस वक्त बॉम्बे हॉस्पिटल में थे।
0: ओहो, बिल्कुल आप उसी इलाके में थे।
1: उसी में थे, तो इंटेंसिव केयर में हमारे कई कमांडोज भी आए थे। तो एक कमांडो ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, उनके सीने में बहुत सी गोलियां लग गई थी। तो हमने उनसे जब छुट्टी हो रही थी तो हमने पूछा, सर कैसा रहा? कहा, सर उतना दर्द तो गोली से नहीं हो रहा जितना दर्द आप जब गोली निकाल रहे थे तब हो रहा था। हमने कहा, सर आप गोली से नहीं कहे, सर उसके लिए हम यूज टू हैं। जैसा आपने पूछा पैनिक की, कहा वो जब सामने से तो हमारा डर खत्म हो जाता है। वो लगता है इसको टारगेट है, ये हमारे देश का दुश्मन है, इसको खत्म करना है, तो उस वक्त हमको दर्द नहीं महसूस होता। यहाँ पे फिर हम नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग घटना थी। वो मुझे लगा कि यार, हमने पूछा कि सर आप गोलियों से नहीं डरे, आप ये जरा से टांकों से डर रहे हैं।

0: क्या डर नहीं रहे, लेकिन आपको बड़ा मजेदार एक वाक्या सुनाता हूँ
1: जी।
0: मैं। इंटेंसिव केयर में नाइट ड्यूटी में था और रवि साहब एडमिट थे,
1: संगीतकार रवि की बात
0: हाँ
1: हो रही
0: हाँ
1: है।
0: जो फेमस म्यूजिक डायरेक्टर।
1: जी।
0: तो रात का वक्त था और मैं उस वक्त अपने ट्रेनिंग में था, तो 1-2 बजे का वक्त था तो मैं नोट्स डाल रहा था, और जैसे इंडियन लोग थोड़ा हमिंग करते हैं ना, ला ला ला ला ला ला ला, ऐसा करके मैं डाला, तो रवि साहब बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये गाना आपको बहुत पसंद है। कहा हाँ बहुत अच्छा, क्या कंपोजिशन सर, पहले के कंपोजर क्या कंपोज करते थे, आपको पता है किसने कंपोज किया है। हमने कहा हाँ एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे रवि साहब, हैं मतलब रवि साहब, आपने मेरा नाम पढ़ा क्या, बोर्ड पे नाम लिखा होता। हमने देखा, हाँ आपका भी सेम नाम है। मैं सेम नहीं, मैं ही रवि साहब हूँ।
1: अरे गजब, क्या बात है।
0: तो बड़ा अच्छा लगा उनसे, और बहुत सी बातें बताई उन्होंने, बड़े बड़े जो हम तो सिर्फ जो सपनों में सोचते थे, जब रफी साहब, लता जी, आशा जी, हमने पूछा जब ठीक हो गए तो कभी फंक्शन वगैरह में आते थे, तो बहुत अच्छा।

0: क्या बात है।
1: तो बड़ा अच्छा लगा उनसे, और बहुत सी बातें बताई उन्होंने, बड़े बड़े जो हम तो सिर्फ जो सपनों में सोचते थे, जब रफी साहब, लता जी, आशा जी, हमने पूछा जब ठीक हो गए तो कभी फंक्शन वगैरह में आते थे, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और तो बड़े जिंदा दिल इंसान थे।
0: कमाल के इंसान, मेरा भी उनसे एक नाता रहा है, और
1: अच्छा।
0: वो बहुत दिलचस्प किस्से सुनाया
1: हाँ
0: करते थे,
1: हाँ
0: उनके पास एक से बढ़कर एक किस्से थे और खुद गाने भी गाया करते
1: अरे
0: थे।
1: अरे, बहुत कमाल के
0: अभी
1: कलाकार
0: जब
1: थे।
0: गाने की बारी आएगी तो रवि जी का गाना सुना जाएगा। अभी अपनी बातों को आगे बढ़ाया जाए, आपने बताया कि एक कमांडो आए थे, जब कोई बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में घायल व्यक्ति, एक्सीडेंट विक्टिम्स हो या बर्न विक्टिम्स हो, इस तरह के लोग आते हैं जो बहुत विभत्स स्थिति में भी
1: बड़े
0: होते हैं,
1: अपने
0: उनको
1: एक
0: कैसे संभालते हैं?
1: मैं सफदरजंग के बंस यूनिट में था जब सरोजनी नगर बम कांड हुआ था।
0: ओ
1: वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हादसा था वो,
0: जी
1: और उस वक्त हमको याद है कि हम ड्यूटी खत्म करके, हमारे 3 या 4 बजे के करीब हम निकल गए थे एक दिल्ली में, हम ड्यूटी खत्म करके अपना कनॉट प्लेस में थोड़ा घूमने घामने गए थे। फिर अचानक फोन बजने लगा, हमारे सर का फोन, तुम लोग कहाँ हो? तो उस वक्त हमको ये पता नहीं था कि ये बम विस्फोट हो चुका है। अंदर से कहा, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, तभी सर कॉल कर रहे हैं। मैं, क्या हो गया सर? बोले, जहां भी हो, जितने भी दोस्त हो, सब भाग के सफदरजंग आ जाओ, जो जहां भी है, जो सबको फोन करो कि बहुत डॉक्टर्स की जरूरत है इस वक्त। फिर समझ में आया कि भाई बहुत बड़ा बम कांड हुआ है, और मेरे ख्याल से, मुझे अभी याद नहीं है, बट 200-300 लोग की डेथ हुई थी। और उस वक्त जब बॉडी सर आ रही थी ना, तो मतलब हमारा एक दोस्त था, वो देख नहीं पाया, डॉक्टर हो के वो वहां पे फेंट कर गया,
0: ओहो
1: और किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, मतलब वो इतना विभत्स, वो मेरे, मतलब आज भी जब मुझे याद करता हूं तो मेरे से रोंगटे खड़े जाती है। और वो क्या सीन था, मतलब कैसे कैसे करके। और बट ये हमारे बड़ी अच्छी चीज है हिंदुस्तान में कि सब लोग, आसपास के सभी लोग, सभी हॉस्पिटल के बगल में एम्स था और मौलाना आजाद, जो भी डॉक्टर जब भी सुना, जिधर से आया, वो गाड़ी मोड़ के आ गया। और उस वक्त वो सीन हम अभी भी नहीं उतरता, कभी भी हम याद करते हैं ना कि वो जो हादसा जो हुआ था, वो बम विस्फोट, वो अभी भी मेरे दिमाग से नहीं उतरता है।
0: ऐसे मुश्किल हालात में भी डॉक्टर जो है अपना संतुलन बना के और लोगों को बचाने का काम करते रहते हैं।
1: ड्यूटी है सर। लेकिन हाँ, अच्छा लगता है, मैंने बताया, जब हमारा मरीज अच्छा होके जाता है, जब कोई ठीक हो जाता है, तो बहुत रिवार्डिंग है सर, उससे बड़ा इनाम और क्या मिलेगा एक डॉक्टर
0: बिल्कुल,
1: को।
0: आपने ये वादा किया था कि रवि जी से जुड़ी घटना सुनाने के बाद कि अब उनका कोई गाना सुना जाएगा, तो कौन सा गाना सुना जाए?
1: ऐ मेरे जोहरा जो भी सुनते हैं सर।

0: डॉक्टर संदीप वर्मा, अब मुंबई में आप अलग अलग हॉस्पिटल से जुड़े रहे हैं और आईसीयू यूनिट में लगातार काम कर रहे हैं। ये जो नया दौर है, इसने आईसीयू यूनिट को किस तरह से बदला है और आपके काम करने की प्रणाली को किस तरह से बदला है?
1: टेक्नोलॉजी का तो सर बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है, बहुत बहुत फायदा हुआ है। अब काफी एडवांस हो गए हैं हम लोग, मतलब हर फील्ड में, रेडियोलॉजी हो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो, वेंटिलेटर्स की क्वालिटी हो, और मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है हर फील्ड में। इवन हम स्ट्रोक का हम वाक्य आपको बताएं कि एक हम जब बॉम्बे हॉस्पिटल में थे, एक बैंक के कर्मचारी थे और वो कुछ साइन कर रहे थे और अचानक वो हाथ से पेन गिर गया उनके, तो उनको लगा कि शायद कुछ हुआ होगा। हर आदमी एक पहली बार में कैसे सोच लेगा कि वो स्ट्रोक है, लेकिन वो बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे ही था वो कार्यालय उनका, तुरंत वो लेके आया और उनका वो पूरा राइट साइड पूरा काम नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने बताया कि जो वक्त की कीमत,
0: बिल्कुल,
1: तो सही समय पे वो आ गए सर और बिल्कुल 100% रिकवर हो गए। अगर वो सही समय पे नहीं आते सर तो वो हाथ उनका हमेशा के लिए चला जाता
0: जी।
1: तो ये है वक्त, फिल्म की बात की आपने, ये है वक्त पे सही समय पे सही जगह पहुंचने का ना, ये है।
0: ये जो क्रिटिकल टाइम है किसी भी गंभीर बीमारी के मरीज को बचाने के लिए, जो एक शुरू के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का ये जो वक्त होता है, पूरे देश में आम जनता ये कार्यक्रम सुन रही है। एक इंटेंसिव केयर यूनिट से जुड़े हुए डॉक्टर के तौर पर आप हमें ये समझाएं कि किस तरह से बिना पैनिक हुए फौरन भागना चाहिए और किस तरह से मरीज की मदद करनी चाहिए।
1: आज के सिनेरियो में एक ब्रेन का और एक हार्ट का, दो चीज में आपको बहुत, क्योंकि इसमें अगर वक्त आपने जाहिर कर दिया तो काफी देर हो जाता है। ब्रेन का तो मैंने जैसे जिक्र किया कि कोई भी कहीं भी आपको कमजोरी लग रही हो, बात करने में जुबान लड़खड़ा रही हो आपकी, स्लरिंग जिसको बोलते हैं, विजन में दिखने में कोई दिक्कत हो रही है, ये सब लक्षण को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें सर।
0: मरीज तो ठीक है, लेकिन जो मरीज के साथ में
1: साथ वाले वो उनको
0: पास पड़ोस के लोग हैं,
1: हाँ हाँ, और ये जो हमारे यहाँ गुडविल में ही रहता है, जो अपनी पहले थेरेपी, फिर दादा दादी नानी की थेरेपी, फिर बगल वाले दुकानदार की थेरेपी, फिर फोन पे कहीं और से थेरेपी, इसमें जब हम 3.5-4 घंटे निकाल देते हैं जो क्रिटिकल टाइम होता है बचाने का, तो वो बिल्कुल ना करें सर।
0: तुरंत
1: वो
0: पहले तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए दौड़ें,
1: जिस चीज के एक्सपर्ट के पास जाएं, इसके लिए बनाया गया। और अब मैं तो जैसे पहले भी बोला आपके इस इंटरव्यू में कि अब गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बढ़ोतरी कर दी है, आप कहीं भी तुरंत संपर्क में आ सकते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप है, मोबाइल है, कहीं आप डॉक्टर को फोन करें
0: बजाय इसके कि नुस्खे अपनाने,
1: हाँ,
0: की
1: नुस्खे वो ठीक है, वो थोड़ा सा छिल गया, थोड़ा सा कट गया, थोड़ा सा पेट खराब हो गया, उसके लिए ठीक है, लेकिन जो इस तरह के वाइटल साइन है, चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना हो रहा है,
0: झाग वाग निकल रहा है,
1: हाँ, वो तो मिर्गी या सीजर या जो भी लोग समझ, वो उसमें टाइम नहीं खराब करना है सर। और कभी आप डिजीज वाइज इमरजेंसी में कभी आप रखिएगा कि भाई ब्रेन के लिए अलग, तो मैं आपको डाटा दे दूंगा कि भाई इस वक्त ये मोटा मोटा समझाने के लिए, जैसे मैंने बोला कि भाई
0: मान लीजिए कि किसी मरीज को, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है, तो अमूमन तो पता नहीं चलता है ना कि ये हार्ट अटैक है, तो ये जो आजू बाजू के लोग हैं, जो उसके पास मौजूद लोग हैं, मान लीजिए कोई सड़क पर ही जा रहा है और ऐसी कोई परिस्थिति होती, तो कैसे पहचाने कि ये हार्ट अटैक हो सकता है और फौरन ले जाएं?
1: देखिए, जो सबको पता ही चेस्ट पेन, लेकिन सिर्फ चेस्ट पेन ही नहीं, जॉ पेन, ईयर पेन, पसीना आना, और खासकर डायबिटिक पेशेंट इस बात का ध्यान रखें, जो क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना सर, उनको वो पेन वो टिपिकल महसूस नहीं होता है। जो भी डायबिटीज से सफर कर रहा है ना, तो वो बीच बीच में अपनी जांच करते रहे, अगर उसको पसीना आ रहा है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, लेकिन उसको टिपिकल हो सकता है डायबिटीज पेशेंट को वो टिपिकल चेस्ट पेन ना हो जो कि नॉन डायबिटिक पेशेंट को होता है, तो वो थोड़ा एक

0: ट्रिकी पॉइंट है जो भी डायबिटीज सफर कर रहे हैं लोग उनके लिए। लेकिन कोई भी ऐसी जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन, जॉ पेन, पसीना आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ये सब चीजों को कभी टिंगलिंग हाथ से बाएं हाथ में, बट आप राइट साइड पेन को भी इग्नोर ना करें। हमको पता नहीं कि लेफ्ट का ही पेन हार्ट का है, वो कभी कभी बैक पेन भी हार्ट का होता है। और यूजुअली अगर आप टिपिकल देखेंगे तो पेशेंट पेन जो है एक जगह लोकलाइज नहीं होता, वो रेडिएट कर रहा होता है। ऐसा नहीं, वो नहीं होता हार्ड एंड फास्ट, कुछ नहीं रह गया अभी। अभी बीमारियां काफी अपना स्वरूप बदल के भी आ रही हैं, लेकिन मोटा मोटा है कि पेन अगर रेडिएट हो रहा है जॉ की तरफ, पीछे की तरफ, तो ये अलार्मिंग साइन है, हार्ट से जुड़ी ये अलार्मिंग साइन। उसमें और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं
1: जी,
0: उसको कभी लेंगे, लेकिन इस तरह की चीज अलार्मिंग है। आपको तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र एक चिकित्सक, जो भी डॉक्टर रहे जो इससे जुड़ा हुआ है, उसे संपर्क करना चाहिए।
1: स्ट्रोक से जुड़ी हुई क्या सिग्नल्स होते हैं?
0: जैसे कोई भी वीकनेस, कोई भी हाथ पर कहीं भी वीकनेस महसूस हो रही है, कमजोरी हो रही है, आप किसी चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं, आपका अगर चेहरे की सिमेट्री आपको जो है चेंज लग रही है, फेशियल डिविएशन, कोई एंगल माउथ
1: टेढ़ा-मेढ़ा हो रहा
0: है, टेढ़ा-मेढ़ा, आप जो आपने पहले जिस आदमी को देखा है और आपने नोटिस किया कि यार उसका चेहरे में कुछ तो
1: विरूपता
0: आ रही है, सिमेट्री कहीं भी जाती है ना सर,
1: तुरंत समझ जाना चाहिए।
0: हाँ, कहीं भी सिमेट्री जो नेचर के जो बनी हुई सिमेट्री है वो अगर डिस्टॉर्ट हो रही है, डिविएट हो रहा है, आंख ऊपर की तरफ जा रही है, आपको दिखने में दिक्कत हो रही है, ब्लरिंग हो रहा है, दो चीज दिख रही है, ये सब जो भी साइन है इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है सर, शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना है डॉक्टर।
1: इन दोनों
0: के पास
1: परिस्थितियों में कितना वक्त होता है मरीज के पास, कितनी जल्दी पहुंचाना चाहिए?
0: देखिए जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आप टाइम खराब करते हैं, फिर फोन किया, उससे बात किया, उसने बताया फलाने को हुआ था, तो ऐसा नहीं, नहीं बाबा आसपास पहले वहां पहुंच जाए, आप एक्सपर्ट के पास पहुंच जाइए, वो आपको गाइड करेगा ना, वो किसी भी रास्ता भूल जाते हैं, अगर पुलिस वाला कोई खड़ा है सिग्नल, वो सबसे अच्छा बताता है ना हमको। आप अनजान शहर में हैं और एक पुलिस वाला जो आप रास्ता भटक गए उससे पूछे, आम आदमी डॉक्टर तो नहीं होता है, आप साइन सिम्टम आपको जैसे ही लगे कि बाबा ये कुछ तो मेरे साथ एबनॉर्मल है, ऐसा पहले नहीं होता, उस पर मत डालिए कि मैं यार आज खाना भूल गया, आज नींद नहीं हुई, उस पर मत, ठीक है भगवान करे वही हो, मैं भी चाहता हूं, डॉक्टर भी चाहते, भगवान ये नॉर्मल ही हो, लेकिन 99 में एक भी एबनॉर्मल है तो आपके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना सर।
1: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी बातें डॉक्टर साहब आपने बताई हैं, और यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: तो कौन सा गाना होगा?
0: यहाँ पे हम रफी साहब का एक गाना सुनेंगे।
1: ठीक है,
0: आज मौसम बड़ा बेईमान।
1: क्या बात है, आप गुनगुनाते हैं तो इस बार फिर मैं चाहूंगा कि आप गुनगुनाएं।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें मेडिकल से जुड़ी हुई हुई। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो मुझे पता है और वो ये है कि हनुमान अंश फिल्म के जो निर्देशक हैं वो आपके साथ मेडिकल कॉलेज में थे।
1: हाँ हाँ, डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी हमारा दोस्त भी है, हमारा जूनियर भी है और उसके लिए बहुत खुशी है। उस बच्चे ने बहुत ही मेहनत किया है और बहुत शानदार उसने ये फिल्म बनाई है। और लोग बोलते हैं कि सफलता सफलता उसने आज हम उसकी सफलता देख रहे हैं। उसने जो 20 साल मेहनत की है उसका ईश्वर ने उसको रिवॉर्ड दिया है। और बातें मुलाकात होती है बट आपके माध्यम से भी हम उसको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे, बहुत बेहतरीन काम किया है उसने।
0: क्या बात है।
1: और इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे मुंबई लाने वाला विशाल ही था।
0: अच्छा,
1: मैं दिल्ली में था और मजा नहीं आ रहा था काम करने में, तो कहा चलो बस मुंबई चलते हैं, मैं भी गा लेता हूँ। वो मजाक मिला, चलो आपको कुमार सानू बना दूंगा यार, आप चलो तो मैं तो कंपोजर हूं ही
0: अच्छा, अब वो तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे।
1: हाँ
0: जी,
1: हाँ
0: जी, जी।
1: और वो गाने लिखता भी था, कॉलेज में भी बहुत अच्छा हमारा एक छोटा सा म्यूजिकल बैंड टाइप का था।
0: अच्छा,
1: तो पहले वो हर जैसे यंग बच्चे के होता ना, रॉक स्टार बनना है बस,
0: हाँ।
1: गिटार वगैरह बजाना, गाने लिखना। और वहां से वो क्रिएटिविटी तो थी, लिखता भी था, गाने भी बनाता था, स्केचिंग भी बनाता था। और हम सभी बहुत खुश हैं उसके लिए कि आज उसको वो मुकाम मिला है जिसको वो जो डिजर्व करता है।
0: क्या बात है। तो मतलब एक डॉक्टर साहब से बातचीत करते हुए दूसरे डॉक्टर साहब का जिक्र निकल आया क्या बात है। अच्छा, इंटेंसिव केयर यूनिट के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। एक चीज जो मुझे लगता है कि शायद इस पर बात करनी चाहिए, और वो आईसीयू में जो मरीज भर्ती होते हैं, जाहिर है कि परिवार जो है वो बहुत पैनिक होता है, बहुत चिंता में होता है, पर आईसीयू एक खास तरह के बर्ताव की उम्मीद करता है। वहां का एक खास अनुशासन और संयम होना चाहिए जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे?
1: मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, दिक्कत क्या होती है कि वो जो जोन होता है उसको सबसे हमारा रहना है कि उसको इन्फेक्शन फ्री रखना चाहते हैं। अक्सर

0: मैं आपका पॉइंट समझा कि रिलेटिव्स को मिलने नहीं दिया गया। बात सही है कि कोई स्ट्रेस में है अंदर भी और आईसीयू के बाहर भी, बट वो फॉर द टाइम बीइंग ना हमको उसको शांत रखना है, उसको स्ट्रेस फ्री रखना है, और सबसे भी ज्यादा हमको इन्फेक्शन फ्री रखना है।
1: बिल्कुल, सबसे
0: तो
1: बड़ी
0: सबसे
1: जिम्मेदारी है।
0: बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम बोल भी देते हैं देखो यार सेफ्टी फर्स्ट, अगर छोटा बच्चा आग छूना चाहे तो माँ उसको छूने नहीं देती है ना, वो बच्चा रोएगा, बट ठीक है हमको पता है छू देगा तो उसका नुकसान है। वैसे ही कुछ हमारा रहता है कि भाई हम मानते हैं आपको बुरा लग रहा है कि आपको मिलने नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप उस कंडीशन में हमारी प्रायोरिटी है वो मरीज की सेफ्टी है,
1: उसकी
0: हम
1: जान बचाना
0: उनकी
1: है।
0: जान बचाना है। आपको देखिए वो इमोशनल होगा या आप उसको देखिए इमोशनल होंगे, आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है, और जो कुछ है हम आपको बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं, बीच बीच में बताते रहते हैं क्या है क्या नहीं। बट हाँ आपकी बात सही है कि हर आदमी देखना चाहता है कि भाई किस अवस्था में मेरा मरीज है, वो उसके भले के लिए, जैसे माँ अपने बच्चे को आग नहीं छूने देती ना।
1: लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि
0: हाँ
1: डॉक्टर्स
0: हाँ
1: अपनी जिम्मेदारी निभा रहे
0: निभा
1: हैं
0: रहे हैं और उसके
1: और
0: भलाई
1: आईसीयू
0: के
1: में
0: लिए
1: खास तरह का बर्ताव किया जाए
0: बर्ताव किया जाए।
1: और जैसा डॉक्टर्स कह रहे हैं वैसा मान के बाहर रुका जाए,
0: हाँ और
1: इंतजार किया जाए।
0: डॉक्टर कम्युनिटी से मैं ये भी कहूंगा भाई थोड़ा पोलाइट रहते हैं, पोलाइट कभी कभी, देखिए हम इंसान ही हैं,
1: जी,
0: कभी कभी हो सकता है कि हमने जो है बहुत जो उम्मीद थी उनसे जितने प्यार से बात करना चाहिए शायद मैंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात किया, तो वो कभी कभी हो जाता है क्योंकि हम लोग भी बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो कभी कभी हो जाता है कि जितने प्यार से वो उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर साहब बोलेंगे शायद उतने प्यार से नहीं बोला मैंने, लेकिन इंटेंशन कभी हमारा वो नहीं होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर संदीप वर्मा, बहुत दिलचस्प बातें हुई और आपने कुछ बहुत जरूरी मुद्दे हमारे श्रोताओं को समझाए आज की इस बातचीत में। विविध भारती के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको मौका देने के लिए, और एक डॉक्टर की तरफ से आप स्वस्थ रहें मस्त रहें।
1: शुक्रिया।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की ये बातचीत। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
4: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
5: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
4: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
5: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहां रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिनपॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
4: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरे

0: केंद्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
2: रंग तरंग
1: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग और आज इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। श्रोताओं, कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती बल्कि सीधे दिल में उतर जाती हैं। किशोर कुमार की आवाज भी ऐसी ही थी, जिसमें शरारत थी, शोक ही थी, रोमांस था और जुदाई का दर्द भी। वे गाते थे तो लगता था जैसे हर इंसान की अपनी कहानी को सुर मिल गए हो, है ना? आज उनकी पुण्यतिथि पर हम याद कर रहे हैं उस बेमिसाल फनकार को जिसने अपनी आवाज से हिंदी सिनेमा के संगीत को एक अलग पहचान दी। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।

शिवांग माथुर और श्रद्धा श्री की आवाजों में अभी आपने सुना ये गरबा गीत। इसे लिखा ऋतिका ब्रह्म भट्ट ने और संगीत था शिवांग माथुर का।

ये गजल अभी आपने सुनी उर्दू मॉडर्न इस एल्बम से। अशोक खोसला की आवाज थी और इसे लिखा डॉक्टर राही मासूम रजा ने। जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया।

0: कभी तो नजर मिलाओ इस एल्बम का गीत अभी आपने सुना अदनान सामी और आशा भोसले की आवाजों में। रियाज उर रहमान सागर ने इसे लिखा, अदनान सामी का संगीत।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में पंडित भरत व्यास का लिखा ये भजन, जिसे संगीतबद्ध किया है बाबू सिंह ने।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आपने सुना चांद का टुकड़ा, इस फिल्म का ये गीत। इसे संगीतबद्ध किया महेश किशोर ने। साथियों, आपको बता दें कि आज के यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सुनेंगे किशोर कुमार की अलग अलग अदाओं में गायकी के कुछ गीत। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे यानी कि विविध भारती के साथ।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, इस एल्बम का गीत सुनिए फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में। गीत और संगीत ललित सेन का।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं जय बजरंगबली इस एल्बम का ये भजन, शबाब सबरी की आवाज। मनीष व्यास ने इसे लिखा है, अभिजीत गढ़वे का संगीत।

इस भजन के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत है ललित का और एल्बम का नाम याद पिया की आने लगी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को

0: नई दिल्ली में आए ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि भारत की क्षमताएं अन्य देशों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलें।
1: इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है, एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, ये अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता है तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की है।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 के बाद से स्टार्टअप के लिए भारत में काफी विस्तार हुआ है और स्टार्टअप्स की संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। नेपाल में आई बाढ़ के कारण मध्य क्षेत्र में ट्रैकिंग और पुल ढहने से विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक विदेशी ट्रैकर्स फंस गए हैं। काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में तड़के हुए भूस्खलन के बाद आज अधिकारियों ने 12 विदेशियों सहित 321 लोगों को सुरक्षित बचाया। सेना ने कहा है कि नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद बचाव अभियान कल भी जारी रहेगा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 433 अंक की वृद्धि के साथ 72,357 पर था, जबकि निफ्टी 22,490 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। स्वीकारे नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार।

तो साथियों, आप समझ ही गए होंगे इस धुन को सुनकर कि आज हम क्या बातचीत करने वाले हैं। साथियों, किशोर कुमार एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दिल में संगीत की लहरें उठने लगती हैं। कभी उनकी आवाज हमें हंसाती है, कभी प्यार के खूबसूरत एहसासों में ले जाती है, तो कभी आंखें नम कर देती है और कभी ऐसा सुकून भी देती है जैसे भागदौड़ की जिंदगी में कुछ पल ठहरने का बहाना मिल गया हो। आज का ये सफर किशोरदा के इन्हीं अलग अलग रंगों के नाम है। तो आइए सुरों के इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं नमक हलाल फिल्म का ये गीत, आवाज किशोर कुमार और साथियों की। इस गीत को लिखा है प्रकाश मेहरा ने और बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल

0: अंतराल के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं यादों के महफिल कार्यक्रम में मस्ती भरे गीतों के साथ। साथियों, किशोरदा की आवाज में एक ऐसी शरारत थी जो उदास चेहरे पर भी मुस्कान ले आए। उनके गानों में कभी बेफिक्री, कभी नटखटपन, तो कभी ऐसी मस्ती होती थी कि पैर अपने आप थिरकने लगे। तो चलिए जिंदगी की फिक्रों को कुछ देर किनारे रखकर माहौल को थोड़ा मस्ती भरा बनाते हैं और आइए सुनते हैं डॉन फिल्म का ये गीत, आवाज किशोर कुमार की, अनजान की रचना और धुन बनाई आनंद जी कल्याण जी ने।
1: हर भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा,

कटी पतंग फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, आवाज किशोर कुमार की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
4: और आइए अब आपको सुनवाते हैं आराधना। इस फिल्म का गीत आवाज किशोर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत।

साथियों, प्यार के एहसास को शब्दों में बयां करना आसान नहीं, लेकिन किशोरदा ने अपनी आवाज से इसे बेहद खूबसूरत बना दिया। कभी पहली मोहब्बत की झिझक, कभी किसी का इंतजार, तो कभी दिल की अनकही बातें, उनके रोमांटिक गीत हर एहसास को अपना सा बना देते हैं।

0: की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: हर कहानी का अंत खुशियों से हो ये जरूरी नहीं। किशोरदा ने अपनी आवाज में बिछड़ने की कसक, अधूरी मोहब्बत और तन्हाई के दर्द को कुछ इस तरह पिरोया कि हर गीत दिल की कहानी लगने लगता है। आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ नगमे जो अनगहे जज्बातों को आवाज देते हैं।

अमर प्रेम इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज किशोर कुमार की, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, राहुल देव बर्मन का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं अमानुष फिल्म का गीत, आवाज एक बार फिर किशोर कुमार की। इंदिवर की रचना है ये और श्यामल मित्रा ने इसे संगीतबद्ध किया है।

आंधी फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गुलजार ने इसे शब्दबद्ध किया है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुवारे।
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर बस आंखें बंद करने और उनमें खो जाने का मन करता है। किशोरदा की आवाज में एक ऐसा अपनापन और ठहराव था जो मन की हलचल को धीमा कर देता है। तो आइए अब सुनते हैं ये ऐसा ही एक गीत जो दिल को सुकून और मन को राहत देता है। घर फिल्म का ये गीत है आवाज किशोर कुमार की, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

तो साथियों, आज के इस संगीतमय सफर में हमने किशोर कुमार की आवाज के कई रंग महसूस किए। कहीं मस्ती थी, कहीं मोहब्बत, कहीं दर्द और कहीं दिल को छू लेने वाला सुकून। यही तो खासियत थी किशोरदा की, वे हर एहसास को अपना बना लेते थे और फिर उसे हमारे दिलों तक पहुंचा देते थे। उनकी आवाज आज हमारे बीच भले ही पहले की तरह मौजूद ना हो, लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। किशोरदा को सुरो भरा नमन। और आज के इस कार्यक्रम से अब नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। स्वीकार करें नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, आज का दिन हिंदी सिनेमा की दो अनमोल शख्सियतों की याद दिलाता है। आज अशोक कुमार जी की जयंती है, जिन्होंने अपने सहज अभिनय से भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। वहीं किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि हमें उनकी आवाज के उस जादू की याद दिलाती है जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। इन्हीं यादों के साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जो कभी पटरियों पर दौड़ता है तो कभी जिंदगी के रास्तों पर चलता है। साथियों, इबारत आपने फेसबुक पर पढ़ी ली होगी और हमारे सभी श्रोता साथी फेसबुक पर हमसे कमेंट्स द्वारा जुड़ भी गए होंगे। यदि कोई छूट गया है तो आइए उनके लिए एक बार इबारत फिर पढ़ देते हैं। कहते हैं जिंदगी भी एक रेलगाड़ी के सफर जैसी है, जहां कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं, कुछ रास्ते में मिलते हैं और कुछ किसी स्टेशन पर उतर जाते हैं। कभी सफर सुहाना होता है तो कभी मुश्किलों की सुरंगें सामने आती हैं, लेकिन जैसे हर सुरंग के बाद रोशनी आती है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद उम्मीद की किरण जरूर आती है। हम अक्सर मंजिल की चिंता में सफर का आनंद लेना भूल जाते हैं। याद रखिए, हर मुसाफिर की मंजिल अलग हो सकती है, लेकिन सफर में मिली यादें हमेशा साथ रहती हैं। इसलिए जिंदगी की इस रेलगाड़ी में मंजिल तक पहुंचने की जल्दी मत कीजिए। सफर को भी मुस्कुराकर जीना सीखिए, क्योंकि खूबसूरत यादें अक्सर रास्तों में ही बनती हैं। और आइए इसी के साथ सुनते हैं ये इस कार्यक्रम का आज का पहला गीत। अशोक कुमार की आवाज में आशीर्वाद फिल्म से ये गीत है, गुलजार के बोल, वसंत देसाई का संगीत।
1: आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी।

आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हारा कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर, सब पैसेंजर याद रेडी, एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक लोहे की सड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान पुल पग डंडी टीले पे झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे धोबी का घाट मंगल की हाट गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडीगल डिंडीगल कुक्कल मछलीपट्टनम विमलीपट्टनम विमलीपट्टनम मछलीपट्टनम ओंगोल निर्दिगोल निर्दिगोल ओंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद सोतनूर कोतनूर सोतनूर कोतनूर

आप सभी ने इस गीत में आया हुआ वो शब्द तो पहचान ही लिया होगा। जी हाँ, वो शब्द है रेलगाड़ी। अशोक कुमार का गाया ये गीत था। एक साथी ने लिखा है, आज ट्रेन के सफर की बात है तो जिंदगी हमेशा सफर पर ही रहती है। कभी सुरीला सफर बन जाती है, कभी खट्टा तो कभी मीठा। आज मैं ट्रेन से नहीं गाड़ी से सफर कर रही हूँ, इसलिए आज प्रोग्राम नहीं सुन पाऊंगी। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जिस सफर पर हैं वहां पर हमारा जो विविध भारती है न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप दिन रात लगातार कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, तो आप वहां पर सुन सकती हैं। तो कार्यक्रम को मिस मत कीजिए, इसका आनंद लीजिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। शब्द पहचानिएगा, आपको कमेंट करके बताना है कि इस गीत का वो शब्द कौन सा है। कालिया फिल्म का ये गीत है, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, राहुल देव बर्मन का संगीत।

तो आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है, आज अभी ये जो गीत बजा इसका शब्द था साथ। एक साथी ने लिखा है, फिल्म आशीर्वाद का प्रसिद्ध गाना रेलगाड़ी भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक और अनोखा गीत है, जिसे दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार यानी कि दादा मुनि ने गाया था। इसे भारतीय सिनेमा का पहला रैप गाना माना जाता है, जिसमें बिना किसी भारी संगीत के रेलवे स्टेशनों के नामों और ग्रामीण भारत की छटा को बेहद लयबद्ध अंदाज में पिरोया गया है। इस मासूम और ऊर्जावान गीत को हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने लिखा और वसंत देसाई ने संगीतबद्ध किया, ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी ने लिखा है, किशोरदा आप भी तो जिंदगी के इस सफर के ऐसे मुसाफिर हैं जो अपनी देह से भले ही दूर चले गए मगर अपनी आवाज के रूप में हर दिल में ठहर गए। वक्त की रेलगाड़ी आगे बढ़ती रही, पीढ़ियां बदलती रहीं, कितने ही स्टेशन पीछे छूट गए, लेकिन आपके गीतों का कारवा आज भी उसी शिद्दत से हमारे साथ चल रहा है। आपकी आवाज सुनकर लगता है जैसे कोई बिछड़ा हुआ अपना फिर लौट आया हो, जैसे यादों की किसी पुराने स्टेशन पर जिंदगी कुछ पल के लिए ठहर गई हो। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत और पहचानिएगा इस गीत का वो कौन सा शब्द है जो हमारी आज की इबारत में शामिल है। फिल्म का नाम है राम बलराम। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ने इस गीत को गाया है। बोल है आनंद बख्शी के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना, इससे पहले जो गीत बजा उसमें शब्द था रास्ता। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक साथ ही लिखते हैं, सफर बैलगाड़ी का हो या हवाई जहाज का या जिंदगी का, हिचकोले तो लगते ही हैं लेकिन हमेशा तो नहीं। इसलिए सुहाने सफर का आनंद भी लें तो जीवन के झटके भी हंसते हंसते लें। एक साथ ही लिखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जब हम किसी खूबसूरत सफर पर होते हैं तो ऐसी ऐसी मीठी मधुर और मधुर अनुभूति होती है जिन्हें हम कभी भी भूलना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि सफर कभी खत्म ही ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब सफर पर हमें बहुत अच्छे बातूनी लोग मिल जाते हैं या फिर हम जैसी सोच रखते हैं उस तरह की सोच रखने वाले लोग मिल जाते हैं तो बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर सफर कहाँ गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। लगता है ये सफर थोड़ा और लंबा होना चाहिए था। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला गीत आपको सुनवाते हैं शोले फिल्म से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने, शब्द था स्टेशन, जो इस गीत में शामिल था और हमारी इबारत में भी। एक साथी ने लिखा है, यादगार सफर का आनंद लिया जब ट्रेन गुजर रही थी सुरंग से, वो भी सबसे लंबी, करीब 14 किलोमीटर लंबाई से गुजरना हुआ। अगस्त 2026 में जब वंदे भारत ट्रेन में श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से श्रीनगर स्टेशन की ओर वापसी में मेरी धर्मपत्नी और मैंने सफर किया था। बाबा अमरनाथ जी के पवित्र गुफा के दर्शन लिए, रास्ते में चेनाब नदी के ऊपर सबसे ऊंची ब्रिज से भी ट्रेन गुजर रही थी। कई सुरंगों और ब्रिजेस से ट्रेन गुजर रही थी जिनको देखकर हम भी आनंदित हो रहे थे। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं श्रोताओं, जो हमारी जहन में बस जाती हैं, हमें याद हो जाता है।

अंदाज फिल्म का ये गीत था किशोर कुमार की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। साथियों, एक साथी लिख रहे हैं कि रेलगाड़ी का सफर बेहद रोमांचक, आरामदायक और यादगार अनुभव माना जाता है। खिड़की के पास बैठकर बाहर बदलते नजारे, खेत खलिहान, पहाड़, नदियां और छोटे छोटे स्टेशंस को देखना मन को सुकून देता है। जी हाँ, ये तो एक बड़ा ही खूबसूरत

एहसास है जिसे जब तक खुद अनुभव ना किया जाए तब तक उसमें कुछ आनंद ही नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात लिखी है आपने। एक साथ ही लिखते हैं, जीवन को समझने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक रेलगाड़ी के सफर से बखूबी समझा जा सकता है। हम सभी इस संसार रूपी स्टेशन पर आते हैं, जीवन की गाड़ी में सवार होते हैं और अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलते हैं। ये यात्रा केवल एक दूरी तय करना नहीं, बल्कि अनुभवों का एक विशाल संग्रह है। और आप सभी ने ये भी बिल्कुल सही पहचाना है, इस गीत में शब्द था सुहाना। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई। शब्द रचना शैलेंद्र की, शंकर जयकिशन की धुन।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति होकर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: तो इस संदेश से पहले जो गीत आपने सुना उसमें शब्द था रोशनी। साथियों, एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली नेहा जी और सभी गुणी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। किशोर दा हमारे ही शहर खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मुंबई में उनके निधन के बाद उनकी इच्छानुसार उन्हें खंडवा लाया गया था, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। अब ये तो कहना चाहिए कि एक ऐसा अवसर था जो आप उस शहर के थे और इसलिए इसका आप इसमें शामिल हो सकें, और बड़ी मुश्किल से कभी ऐसे अवसर मिलते हैं जहां हम किसी ऐसी महान हस्ती की यात्रा में शामिल हो पाते हैं। और किशोर कुमार जी के भी कुछ जो उनके साक्षात्कार हुए, उनकी बातों में हमें कई जगह पता चलता है कि उन्हें अपने शहर खंडवा से बेहद प्रेम था और उनकी हर बात में ये बात झलकती थी कि वे वापस खंडवा आना चाहते थे। आइए अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला कमेंट हमें किया है, एक साथी ने लिखा है, मेरा सबसे लंबा सफर था जब बेटे की बारात लेकर कटक से अल्मोड़ा जाना था। राजधानी एक्सप्रेस से कटक से दिल्ली करीब 24 घंटा, फिर 12 घंटे बस द्वारा दिल्ली से अल्मोड़ा। हम 35 बाराती खूब मौज मस्ती करते गए और वापस उसी रास्ते आए। एक साथी ने लिखा है, नेहा जी जिंदगी के इस सफर में मेरे बचपन से आज तक जो विश्वसनीय साथी रहा है वो है विविध भारती मुंबई, जिसके प्रोग्राम्स जो मैं रेडियो पर सुनते हुए अपने जीवन के सफर को सुरीला बनाता रहा हूं और आगे भी जितनी सांसें मिली हैं तब तक बनाता रहूंगा। जी हाँ बिल्कुल, तो आप सुनते रहिए विविध भारती। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत तलाक फिल्म से, आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजें। प्रदीप ने इसे लिखा है, श्री चंद्र का संगीत। शब्द आपको पहचानना है कौन सा है।

आप सभी ने शब्द बिल्कुल सही पहचाना है, ये शब्द था किरण। एक साथी लिख रहे हैं, जिंदगी का सफर एक खूबसूरत नदी की तरह है जो कई मोड़ों और उतार चढ़ावों से होकर गुजरती है। इस रास्ते में कई लोग लहरों की तरह मिलते हैं और कुछ यादें बनकर पीछे छूट जाते हैं। कभी मुश्किलें चट्टान बनकर सामने आती हैं तो कभी खुशियों के झरने सुकून देते हैं। हम अक्सर किनारे यानी कि मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में बहते पानी के आनंद को भूल जाते हैं। मंजिल तो तय है लेकिन असली सुकून हर पल को मुस्कुराकर जीने और इस सफर में यादें बटोरने में है। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत, आवाज एक बार फिर किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है परिचय, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: सही पहचाना है।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और एक साथी ने लिखा है, एक बार रेल से सफर के दौरान हमारे कोच में आग लग गई थी। बाहर से लोग चिल्ला रहे थे कि गेट खोलो। मेरे मामा जी जो मुझे लिवाने आए थे बोले सब अंदर आना चाहते हैं, चुपचाप सो जाओ। इतने में मुझे खिड़की के पास आग की लपटें दिखाई दी। मैंने दौड़कर गेट खोल दिया, सब सुरक्षित बच गए, पर आज भी याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, ये बात सुनकर तो हमें भी रोंगटे खड़े हो गए हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ ने उस घटना को टाल दिया कह सकते हैं। तो ये सूझबूझ कभी कभार बहुत ज़रूरी होती है। एक साथी ने लिखा है, मुझे तो रेलगाड़ी की यात्रा इतनी अच्छी लगती है कि मैं हवाई यात्रा को छोड़कर रेलगाड़ी की यात्रा करना पसंद करती हूँ। मेरे ऑफिस से मुझे बीकानेर से मुंबई तक का हवाई यात्रा का अवसर मिलता है, लेकिन मैं रेलगाड़ी से ही जाती हूँ, तो सब मेरे कलीग्स और मेरे परिवार वाले मेरी हंसी भी उड़ाते हैं कि हवाई यात्रा छोड़कर आप रेलगाड़ी में जाती हैं। रेलगाड़ी से खिड़की से झांक कर एक एक स्टेशन देखना, धरती से धरती तक का मिलन, धरती से आकाश का क्षितिज पर मिलन, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक साथी ने लिखा है, मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन से जब भोपाल की तरफ चलते हैं तो ट्रेन बहुत सारी सुरंगों और हरे भरे जंगलों के बीच से गुजरती है। वो जंगल की छटा बरसात के समय बहुत ही रोमांचक होती है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज, साथ दिया है मोहम्मद रफी ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। पहचानिए शब्द।

याद शब्द आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना। एक साथी लिख रहे हैं, जिंदगी का सफर बहुत खूबसूरत है, इसमें कभी खुशी मिलती है तो कभी गम का सामना करना पड़ता है, कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी मुश्किलें हमारा हौसला परखती हैं, लेकिन यही उतार चढ़ाव जिंदगी को जीने का सही मतलब सिखाते हैं। एक साथी लिख रहे हैं, जिंदगी का ये सफर वाकई बहुत ही अजीब है, बंद मुट्ठी आए थे, खुले हाथ जाना है, जो धन मान सम्मान कमाया वो छोड़कर एक दिन चले जाना है, न साथ लाए थे न साथ आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, इसलिए हमें जीवन में हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए, हमें हमेशा ये लगना चाहिए कि हमें जो मिला है वो काफ़ी है, यानी कि जितना मिला जैसा मिला वो अच्छा है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है।

देख रहे हैं, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बस सुरीला सफर का भी थोड़ा सा सफर बाकी है, मगर हम सोच रहे हैं काश सुरीला सफर का सफर और बढ़ जाए। गीत बहुत सुंदर बज रहे हैं। तो दोस्तों, रेलगाड़ी की तरह जिंदगी का सफर भी चलता रहता है। कुछ यादें और कुछ लोग हमेशा साथ रह जाते हैं। आज किशोर दा और दादा मुनि को याद करते हुए इसी खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। अब दीजिए आज्ञा नेहा अगरकर देसाई को इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार, त्रिवेणी लेकर हाजिर हूँ मैं नेहा आगरकर देसाई। मुस्कान चेहरे पर सजी वो खूबसूरती है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। किसी की एक प्यारी सी मुस्कान हमारा पूरा दिन बेहतर बना सकती है, खासकर जब ये मुस्कान किसी ऐसे शख्स की हो जो हमारे लिए बहुत खास हो। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर मन में एक अलग ही खुशी महसूस होती है। शायद इसीलिए किसी की मुस्कुराहट को देखकर हम भी मुस्कुरा देते हैं। रिश्तों में भी मुस्कान की अपनी एक खास जगह है, क्योंकि कई बार शब्दों से ज्यादा असर एक सच्ची मुस्कान कर जाती है।

किसी खास इंसान की मुस्कान की बात ही कुछ और होती है। हम चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो, उसकी एक मुस्कान चेहरे पर खुशी ले आती है। कभी कभी तो उस मुस्कान में इतना अपनापन भरा होता है कि बिना कुछ कहे भी दिल को सुकून मिल जाता है। प्यार में शायद इसी एहसास की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। सामने वाला हमारे साथ हो या दूर, उसकी मुस्कान की याद भी चेहरे पर मुस्कान ले आती है। और जब कोई पूछता है कि आखिर इतनी खुशी की क्या वजह है, तो दिल बस उसी शख्स का नाम लेता है।

मुस्कुराने की कोई एक वजह नहीं होती। जिंदगी में खुशियों के बड़े मौकों के साथ साथ छोटी छोटी खुशियां भी होती हैं, जिन्हें महसूस करना जरूरी है। सुबह की पहली किरण, किसी अपने की आवाज, पसंदीदा गीत, दोस्तों के साथ बिताया हुआ वक्त या अचानक मिली कोई अच्छी खबर, ये सब हमें मुस्कुराने का मौका देते हैं। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उनके बीच भी खुशियों के छोटे छोटे पल तलाशना हमारे हाथ में है। इसलिए जब भी मौका मिले, दिल खोल कर मुस्कुराइए और अपने आसपास के लोगों के साथ भी ये खुशियां बांटिए। आखिर जिंदगी है तो इसे गुनगुनाइए और मुस्कुराइए।

आपने ट्यून किया है विविध भारती, देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन के भारत दौरे पर। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर

0: खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
0: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
1: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
0: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के, कृपया इसे फिर से सुन ले, भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
2: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
1: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपये से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने

0: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। IMF की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैन जोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। ये मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारिल हावलेचक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके और एक समृद्ध, समावेशी, नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
2: 2014 से केंद्र सरकार ने एक्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है। सुरक्षा के माहौल में ये बड़ा सुधार बोडो, कार्बी और उल्फा गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए 1 दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आर्म्ड फोर्स पावर एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। पीएम दिवाइन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से 8 राज्यों में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसमें हर मौसम के अनुकूल राजमार्गों, नए रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे तक शामिल है। 2023 में अपने असम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
3: असम में नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते

0: आठ सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते आठ सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई है।
1: विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डेनमार्क बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से ओडेंस में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और के श्रीकांत भी आज अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आपने ट्यून किया है अपना सबसे पसंदीदा चैनल, मनोरंजन चैनल विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार नगमे। आइए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं, किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम हाउस नंबर 44। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है और सचिन देव बर्मन का संगीत।
4: बंसिया बजाई, अरे कैसी बंसिया बजाई, श्यामा सुध बिस राई, तरे रे तरे रे तरे रे रे रे
5: भूल गया यार,
4: तेरे तेरे तेरे रे
6: ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा।

0: चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर। दुनिया की गाड़ियाँ चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा।
0: अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार।

0: दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
0: ऊंचे सुर

अभी आपने ये गीत सुना फिल्म उड़न खटोला से, आवाज लता मंगेशकर की थी। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में नई दिल्ली फिल्म का ये गीत। शैलेंद्र की रचना है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री 420। इस फिल्म का गीत आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश की। शैलेंद्र ने इस गीत को रचा है और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: की बोले रे
1: मेरा हो जाता जिला फिर बेड़ा पार।
2: मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारों।
3: सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं।

इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है मंजरी जी? खूब गरबा दांडिया खेल कर आ रही हैं ऐसा लग रहा है, मतलब रात को।
2: जी बिल्कुल, जश्न ही ऐसा है कि त्योहार का समय चल रहा है, नवरात्रि चल रही है।

0: तो ऐसे में तो शुरू हो गई है सब जगह पे डांडिया खेलना, गरबा खेलना.
1: और जुनून सा होता है कि
0: बिल्कुल
1: बहुत सारी महिलाओं को हमने देखा, अरे हमें तो नहीं आता है और हमें तो पैरों में दिक्कत है, तकलीफ है, हम नहीं करेंगे. लेकिन जब वो
0: ये 9 दिन आते हैं
1: हाँ
0: जी.
1: सखियों और सखाओं के साथ वो मैदान में उतरती हैं तो बिल्कुल शुरू हो जाते हैं, फिर जुनून छा जाता है, फिर तो समय का
0: बिल्कुल
1: भी ख्याल नहीं रहता है. इसका स्वरूप थोड़ा बदल रहा है ना,
0: जी
1: बल्कि जो पहले था गरबा डांडिया का जो स्वरूप, डांस का तरीका था, अब
0: बिल्कुल
1: उसमें बहुत सारी मिलावट भी हो गई है. तो हमारे
0: बिल्कुल
1: श्रोता इस बारे में क्या सोचते हैं, हम चाहते हैं कि वो बताएं अपनी बातें.
0: बिल्कुल. और मुहावरों की दुनिया में अपना उल्लू सीधा करना, इसके बारे में भी हमारे साथियों ने संदेश भेजे हैं और भी बातें करेंगे वो. और
1: और मंजरी जी, माँ की अलमारी में बहुत कुछ छिपा होता है ना.
0: बिल्कुल
1: हम याद होगा बचपन में कि जब माँ बड़ा सा बक्सा खोलकर बैठती थी तो हम सब घेर के बैठ जाते थे, भाई
0: बिल्कुल
1: बहन पूरे परिवार के सदस्य, और देखते थे कि इसमें क्या है. उनके पुराने पुराने कुछ गहने जेवर और कुछ पुरानी चीजें, कुछ छोटा सा पाउच, कुछ पर्स, और उसमें न जाने क्या क्या रहता था. और वो पुराने कपड़े
0: जी
1: निकाल के देखना, फिर धूप दिखाना रख के बड़े से चारपाई पर,
0: चारपाई पे
1: तो ये सब बड़ी अजीब सी बातें थी और अब जैसे खत्म हो रही है. लेकिन माँ की अलमारी में एक कुछ और भी छुपा होता था.
0: बिल्कुल. उनकी यादें, बहुत सारे एल्बम होते थे, और जो आपने बोला ना पोटली होती थी, दुर्जनिया होती थी, और एक काजल लगाने वाली चांदी की होती थी, लंबी सी डंडी होती
1: चांदी
0: थी.
1: की सुपारी भी होती
0: हाँ,
1: थी,
0: चांदी की सुपारी, बिछिया तो कितनी सारी निकलती थी
1: गुटी
0: उसमें, मतलब वो
1: लेकिन
0: टूटी फूटी
1: उन्हीं
0: भी, साबुत भी
1: उन्हीं सबके बीच
0: जी.
1: जो छूटा रहता था उनका सपना,
0: बिल्कुल
1: उनका अधूरा सपना, क्योंकि एक जमाना था जब माँ के हिस्से में सिर्फ त्याग और बलिदान आता था, कि वो
0: बिल्कुल
1: त्याग की मूर्ति जो होती थी वो माँ सबसे अच्छी माँ कहलाती थी,
0: सही बात
1: है ना,
0: है
1: कि
0: जी.
1: कितना कुछ सब पूरे परिवार के लिए करना लेकिन खुद के लिए कुछ
0: आपने
1: नहीं
0: बिल्कुल
1: करना.
0: यादों को एकदम ताजा कर दिया है कि हम उस दौर में चले गए, उनके अलमारी तक पहुंच गए.
1: तो आपके साथ साथ, मतलब हम सब के
0: हमारे
1: साथ
0: साथ
1: साथ, हमारे
0: साथ
1: श्रोता भी यादों की अलमारी खोले और माँ के जो अधूरे सपने माँ की अलमारी में छिपे, उनके अधूरे सपने, इस बारे में हमारे श्रोता टिप्पणी करें विविध भारती
0: बिल्कुल.
1: के फेसबुक पेज पर जाकर.
0: और सखी विशेष में हम बात करने वाले हैं महिला उद्यमी अंकिता गावा के बारे में, जो सोशल समोसा और फिबी की संस्थापक भी हैं. और आज क्योंकि शरदीय नवरात्र का पर्व है, तो हमारे सभी साथियों ने बधाइयां भी भेजी हैं. और आज माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, लोग हवन करते हैं, अच्छे श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, देवी की आराधना करते हैं और भक्ति में डूब जाते हैं.
1: सुनते हैं ये गीत.

0: नौ दुर्गा फिल्म का गाना सखियां और सखा सुन रहे थे, और खास बात यह है कि ये चित्रगुप्त के स्वर में था। हम संगीतकार के रूप में चित्रगुप्त को जानते हैं, बहुत कम श्रोता जानते हैं कि उन्होंने गाया भी है, तो ये उन्हीं के स्वर में था। रमेश सी पांडे का गीत था और एस एन त्रिपाठी का संगीत था।
1: क्या बात है। और हम लोग बात करने वाले हैं सखी विशेष में महिला उद्यमी अंकिता गाबा के बारे में, और जिसके आज के समय में महिलाएं न केवल स्टार्टअप की शुरुआत कर रही हैं बल्कि कंपनी भी संभाल रही है ममता जी, और बल्कि हजारों लाखों लोगों को नौकरियां देकर उनका नेतृत्व भी कर रही हैं। और आज एक ऐसी महिला की सफलता और मेहनत की कहानी लेकर हम आए हैं, और जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि इससे ज्यादा स्टार्टअप्स की नींव रखी और उन्हें सफल भी बनाया। अंकिता गाबा जो एक इंटरनेट उद्यमी और सफल बिजनेस वुमेन है।
0: ये एक ऐसा नाम है मंजरी जी जिन्हें इंटरनेट उद्यमी का खिताब भी मिल चुका है। उन्होंने सोशल समोसा
1: और सुपर माउस
0: फीवी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की नींव रखी, और 4 अप्रैल 1985 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी अंकिता गाबा बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल आया करती थी। वे अपने जीवन में कुछ अलग और नया करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने विल्सन कॉलेज मुंबई से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया, और बाद में उन्होंने वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA की डिग्री भी हासिल की।
1: बिल्कुल। और पढ़ाई के दौरान ही साल 2007 में अंकिता गाबा ने भारतीय सोशल मीडिया एजेंसी सुपर माउस की नींव रखी, जिसके बाद साल 2010 तक इसके CEO के तौर पर काम किया। इसके साथ ही अंकिता ने साल 2008 में इंडस्ट्री में भी करियर की शुरुआत की, और उन्होंने टी सीरीज के साथ ही कई प्रसिद्ध हस्तियों के लिए PR मैनेजमेंट का काम भी किया इन्होंने।
0: और 2011 में उन्होंने अन्य संस्थापकों के साथ मिलकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल समोसा की नींव रखी। इस पोर्टल पर सोशल मीडिया से जुड़ी जानकारियां प्राप्त की जाती हैं, और ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया, विज्ञापन, मार्केटिंग अभियानों और केस स्टडीज से जुड़े आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं।
1: और साल 2015 में इस पोर्टल को प्राइवेट इन्वेस्टर नाम की कंपनी को बेच दिया गया था। इस समय तक ये कंपनी 3-4 करोड़ की लगभग बन चुकी थी, और इसके बाद साल 2015 में गेट जेलाइज की को फाउंडर बनी, और एक साल बाद उन्होंने 2016 में आइजेनेरियो में पार्टनर एंड बिजनेस हेड के रूप में भी काम की शुरुआत की। यहां लगभग 2 साल तक काम करने के बाद ओरो वेल्थ में मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट बनी, और उसके बाद मनी फ्रंट की मार्केटिंग हेड और महिला बनी, वेबसाइट की कंटेंट एंड कम्युनिटी हेड के रूप में भी आपने काम किया।
0: और 2023 में अंकिता गाबा ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर फिवी की स्थापना की। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स से जुड़ी खबरें दी जाती हैं। इस पोर्टल को पूरी तरह से सोशल मीडिया से जो प्रभावित होते हैं उन्हें समर्पित किया गया है।
1: जी, और आज अंकिता गाबा डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ कर दम पर एक नहीं बल्कि कई स्टार्टअप की शुरुआत करके उन्होंने उसे सफल बनाया। और अंकिता गाबा के पुरस्कार उपलब्धियों के बाद करें तो सोशल समोसा वेबसाइट को वेब समिट 2013 के टॉप 10 स्टार्टअप में जगह मिल चुकी है, और एक्सचेंज 4 मीडिया द्वारा IDMA 2013 के लिए सोशल समोसा को टॉप 5 डिजिटल स्टार्टअप में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही 2013 में उन्हें सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है,
0: और वैश्विक शीर्ष 100 सोशल मीडिया एजेंसियां और सलाहकार के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। और अंकिता गाबा सोशल मीडिया के क्षेत्र में अपने एक्सपीरियंस और नए नए आइडियाज साझा करती हैं, और केवल स्टार्टअप्स की ही शुरुआत नहीं की बल्कि कई लोगों को वो नौकरी भी दे चुकी हैं इसके माध्यम से। उनकी सफलता ये सीख देती है कि एक छोटा सा इनोवेटिव आइडिया के दम पर कैसे बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आज अंकिता गाबा कई महिलाओं को प्रेरणा दे रही हैं।

संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी।

0: उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर। फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: मंजरी जी, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और ये संदेश हमने सुनवाए अपने अपने श्रोताओं को, और हमने अपने श्रोताओं से कहा था कि गरबा और दांडिया का स्वरूप बदल रहा, तो उसमें अपने उद्गार लिखे, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गरबा डांडिया के बदलते रूप में इतना ही कहना है कि घर मोहल्ले के चौराहे से पारंपरिक भक्ति अनुष्ठान से निकलकर अब कमर्शियल ग्लोबल रूप ले चुका है, जिसमें भक्ति भाव कम है और टिकट रेट ज्यादा होता है।
4: बिल्कुल सही बात लिखी है, क्योंकि जब हम जाते हैं देखने तो वहां पर बहुत ज्यादा पैसे उसके टिकट के बढ़ा दिए गए, और साथ साथ वेशभूषाओं पर भी बहुत सारा खर्चा होता है। देखा जाए बाजार में भरे पड़े हैं सामान और लोग खरीद भी रहे हैं, ऐसा नहीं, तो खर्चा भी बहुत तेजी
3: और
4: से होता है।
3: दोस्ती भी यहाँ पर बहुत परवान चढ़ती है, खास तौर से उसमें कई बार गलत रिश्ते भी पनप जाते हैं।
4: बिल्कुल,
3: लड़के लड़कियों के बीच, कम उम्र के लड़के कम उम्र की लड़कियों को, जहाँ पर बहुत ज्यादा गलत सही का फर्क नहीं पता होता है, उनके बीच एक रिश्ता एक नाता तय होता है, तो वो रात भर गरबा के बहाने निकल के बाहर जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, वो भी ठीक नहीं है।
4: बिल्कुल, उससे वो गलत ही प्रभाव पड़ता है, बाद में पता चलता है कि दोस्ती हुई और बाद में दोस्ती में दरारें आ रही, तो ये सब चीजें बहुत हो रही हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि पहले के जमाने में गरबा गांव के मैदान में एक ही जगह सब मिलकर करते थे, अब तो हर जगह होने लगा है। पहले कम आवाज होता था, अब बड़े बड़े स्पीकर आ गए और शांति सुकून तो गायब ही हो गए। पहले चनिया चोली और केडियो ड्रेस थे, अब वो ड्रेस तो है पर साथ में अंग प्रदर्शन भी होने लगा है। कुल मिला के पहले जो भक्ति भाव था वो अब मतलब कहना चाहिए अच्छा नहीं लगता है, ऐसी चीजें पहनने में दिखावे में हो गई हैं। और मेरी बात करूं तो पहले मैं भी गरबा करने जाता था, पर अब सिर्फ देखता हूं, गरबा करने का मन नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि आज के फैशन के दौर में इतनी चीजें निकल आई हैं, डिजाइनर चीजें आ गई हैं, कपड़े आ गए, तो लड़कियां उसकी तरफ भागी जा रही हैं।
3: पूरा बाजार भरा होता है।
4: बिल्कुल,
3: इस समय बाजार में जाएं तो वही चानिया चोली और घाघरा मिलता है, और जैसे होड़ सी मची हुई है कि हम उससे ज्यादा अच्छा पहन लें।
4: बिल्कुल,
3: और रंगों के हिसाब से जो कपड़े पहने जाते हैं उसमें लोगों को और दिक्कतें आती कि वो एक दिन पहना गया और फिर अगले गरबा में ही काम आता है, तब तक पता चला कि आप शहर छोड़ चुके होते हैं, आपका करियर बन चुका होता है, वगैरह वगैरह।
4: और बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी भी मिल रही है जो सिल्वर कोटेड होती है, नकली ज्वेलरी जो है, लेकिन उसको पहनने से कई बार इन्फेक्शन का भी वो हो जाता है, लेकिन फैशन है, पहनना है तो सब पहनते हैं।
3: इसका जो उद्देश्य है मौज मस्ती
4: जी,
3: और एक दूसरे से मेल मुलाकात, एक दूसरे से स्नेह प्रेम का रिश्ता वो बना रहे, बस ये उद्देश्य होना चाहिए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि होली और दिवाली के अलावा जो पर्व सिनेमाई संगीत में सबसे अव्वल नंबर पर है वो है गरबा। हालांकि मैंने आज तक गरबा नहीं खेला, मगर अपने आसपास के माहौल को देखती हूं तो लगता है कि गरबा के साथ जिंदगी की रंगत कुछ और ही हो गई है। गरबा बस गीतों के सहारे धूमधड़ाका ही रह गया है, जीवन में आने वाले खुशी के छोटे छोटे पल को उत्सव में बदल देने की ये परंपरा बहुत पुरानी है। ये हमें ऐसी दुनिया में खो जाने का मौका देता है जहां खुशियां होती हैं और अपनों के साथ गरबा नृत्य

0: में नृत्य में हावी होता रिमिक्स कल्चर जीवन शैली में बदलाव की वजह से महज शोर और दिखावा ज्यादा है। अब तो उसमें बाकायदा भांगड़ा पॉप सब कुछ
1: सब चीज मिक्स हो गया है बिल्कुल।
0: और बहुत तेज संगीत, अब तो जो प्रतिबंध है कि आपको रात को 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद कर देना है, लोग उसका भी उल्लंघन करते हैं, तो ये नियमों का उल्लंघन कम से कम ना करें
1: ना करें बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, गरबा और डांडिया का ये बदलता स्वरूप ये साबित करता है कि हमारी संस्कृति आधुनिक समय के साथ खुद को ढालने में सक्षम है। हालांकि आधुनिकता की चकाचौंध में हमें अपनी मूल परंपराओं और जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, ताकि इस पवित्र उत्सव की असल आत्मा हमेशा जीवित रहे। बिल्कुल सही बात लिखी है, हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हम सुनते हैं एक गीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा।

0: विविध भारती पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। मंजरी जी कहाँ गुम हो गई हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर ढूंढ रही टिप्पणियां। एक अच्छी खबर सुनिए, वो ये कि एक महिला को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हुई है। वो महिला है नवनीतम नवी पिल्ले। ये भारतीय मूल की दक्षिणी अफ्रीकी जज और यूएन मानवाधिकार की प्रमुख रही हैं। इन्हें मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। मतलब मिला क्या, चुना गया है भी, और वो तो बाकायदा घोषित हुआ है और जब ये सम्मानित किया जाएगा आगे चलकर
1: जी। और उन्होंने युद्ध अपराध और नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाने के लिए आवाज उठाई, प्रयास किया। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करने की ओर प्रयास किया। इसके लिए आप सम्मानित की गई।
0: और इसके इनके बारे में और भी थोड़ी सी जानकारी दे दें। 1890 के दशक में नवी के ग्रैंड पेरेंट्स बंधुआ मजदूर के रूप में गन्ने के खेतों में काम किया करते थे। मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की थी। दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1941 को डरबन में इनका जन्म हुआ। और पिता बस चलाते थे, यानी बस के ड्राइवर थे। उनका बचपन बहुत ही संघर्षमय रहा
1: जी। और वे दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला जज बनी। उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से डॉक्टर ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस की डिग्री प्राप्त करी। वे रवांडा के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ICTR की अध्यक्ष रही। इसके बाद वे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की जज भी रही।
0: और इन्होंने 2008 से 2014 तक UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के रूप में कार्य किया। और इनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें हम विविध भारती परिवार की ओर से बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। अब क्या इरादा है,
1: गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: मंजरी जी, फिर याद है कि माँ की अलमारी में कुछ अधूरे सपने भी छुपे होंगे, कभी टटोलने की, ढूंढने की कोशिश की आपने?
1: बिल्कुल बहुत की, क्योंकि अक्सर
0: कि
1: जब
0: सिर्फ वो अंगूठी और जेवर लेके
1: नहीं
0: पहनने की
1: नहीं नहीं
0: कोशिश
1: नहीं
0: की?
1: मेरा तो जब वो खोल के, माँ जब बक्सा खोल के बैठती थी तो बस उनकी जो शादी का जो लहंगे की ओढ़नी थी तो वो बस हम बच्चे निकाल लिया करते थे, तो उसको मैं साड़ी की तरह लपेट के घूंघट काढ़ के डोलती थी
0: और माँ की
1: कमरे
0: साड़ी पहनने का
1: में
0: भी एक अलग सुख होता
1: बिल्कुल
0: था।
1: बिल्कुल
0: कद छोटे होने के कारण माँ की साड़ी आती नहीं थी, तो उसको दोहरा करके
1: दोहरा करके
0: या
1: साड़ी
0: फिर खुद लपेट के, साड़ी
1: पहनते
0: पहननी
1: थे
0: नहीं आती
1: जी
0: थी, तो लपेट के आईने के सामने देखना और
1: हाँ
0: अलग अलग रूप रंग में जैसे जैसे माँ तैयार
1: बिल्कुल।
0: होती थी
1: और
0: वैसे वैसे तैयार
1: माथे की
0: होना।
1: बिंदी निकाल के अपनी लगा लेना, ये भी बड़ा शौक होता था
0: तो लेकिन
1: जी
0: उनके सपनों के बारे में, तब जब हम छोटे
1: जी
0: थे तो माँ के सपनों के बारे में सोचने के लिए हम वहाँ पहुँच भी नहीं सकते थे कि
1: नहीं
0: उनके
1: नहीं
0: भीतर, उनके मन
1: बिल्कुल
0: में क्या चल रहा होता है, वो सब के बारे में, पूरे परिवार के बारे में सोचती थी,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता। ये हर घर की कहानी है।
1: ये अब जाके हम लोग सोच पाते कि उस समय उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी थी अपने चीजों को बताने के, समेटने के लिए। तो
0: बिल्कुल। और वहाँ माँ की अलमारी खोलते हैं, वहाँ जो उनकी ज़िंदगी की बहुत सारी यादें, उनके बहुत सारे अधूरे किस्से छिपे होते थे, वहाँ कपड़े और पुरानी साड़ियों की तह में उनकी खुशबू बसी होती थी, और उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे अधूरे किस्से भी छिपे होते थे जो गाहे बगाहे वो बताया भी करती थी, अपने बचपन की यादें कि क्या हुआ था उनके बचपन में, उनके लिए कोई स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने खुद पढ़ाई की, ऐसी तमाम बातें माँ
1: बिल्कुल
0: के, हम सब के माँ के, और लगभग सबकी माएं एक जैसी होती थी उस समय।
1: बिल्कुल क्योंकि वो सारी यादें जुड़ जाती हैं। और उन समय उनकी गोटे वाली साड़ी जब हम लोग देखते थे तो माँ, मतलब माँ का यही होता था कि भाई ये शादी में बनवाई थी, पापा से लड़ाई लड़ करके कितना खर्चा किया था इस पर पापा बोले थे। और अक्सर माँ ये किस्सा बताया करती थी। और अच्छे कपड़ों की वो अलमारी अलग से रखती थी जिससे वो खास मौके पर पहनने का सपना देखा करती थी। तो इस तरह की यादें होती हैं कि, और किसी भी पुराने डिब्बे में बचा कर रखी हुई चिट्ठियां, तस्वीरें या छोटी छोटी चीजें, वो माँ उसको दिखाकर अपनी चीजें बताया करती थी कि उन्हें क्या अच्छा लगता है।
0: अब देखिए ना, हमारे श्रोता भी इन यादों में बिल्कुल खो गए हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि माँ से जुड़ी यादों में एक बहुत ही खूबसूरत याद कि माँ अंतिम दिनों में खूब स्वेटर बुनती थी और बुनकर वो अक्सर उपहार में दे देती थी। अंतिम समय में उनकी सलाइयों पर वर्धमान की पिंक कलर की ऊन का एक स्वेटर था, उसे अधूरे स्वेटर को मैंने करीब 10 साल तक संभाल के रखा। अंततः मेरा मन हुआ कि मैं इसको पूरा करूं और मैंने उस ऊन का इस्तेमाल करके खूब सुंदर सी जैकेट बनाई। और तो हमें एक बात याद है कि जब स्वेटर की बात की है तो ऊन का गोला बनाने के लिए बैठा करती थी माँ और घर की जो अन्य सदस्य होते थे सबको, और हमें, हम सबको ऊन का गोला बनाने के लिए थमा दिया जाता था कि
1: जी
0: आप भी बनाओ, और वो ऊन पूरा उसका एक गुंफा बन जाता था,
1: हाँ,
0: संभलता नहीं था
1: और कई बार तो
0: और
1: फिसल जाए अगर गोला
0: बिल्कुल,
1: बना भी रहे तो छोटे छोटे
0: हाँ तो
1: हाथों से
0: कहाँ
1: फिसल गया तो
0: दूर तक
1: दूर
0: चल
1: तक
0: गया
1: चला
0: वो
1: गया
0: धागा,
1: फिर वो
0: धागे के पीछे पीछे भागता
1: फिर मालूम पड़ा
0: रहा।
1: उलझा भी देते थे, गांठ पड़ गई, फिर माँ कह रही तुम
0: हाँ
1: रहने

0: ने दो तो, लेकिन
1: और उस
0: बड़ा
1: बोली
0: मजा
1: में
0: आता था।
1: एक खास तरह की कलाकारी भी होती थी उसमें, तरह तरह के, जैसे एक सुपारी का आकार
0: हाँ
1: या फिर संतरे का आकार,
0: नहीं,
1: सेब
0: उसको
1: का आकार बनता
0: अंगूठे
1: था।
0: और छंगुनिया में ऐसे करके तिकल्ला नहीं होता है जैसे, उस तरह से वो लपेटा जाता था, तो वो भी छोटे छोटे हाथों में कितना लपटेगा, तो वो भी
1: अब
0: बड़ा
1: हमारे
0: मजेदार
1: श्रोता
0: है
1: देख नहीं सकते, नहीं तो
0: जी।
1: हम ये जो अभी आपने
0: अब किया
1: एक्शन करके
0: एक्शन
1: दिखाई है ना,
0: किया
1: ये दिखा सकते थे कि मंजरी जी बाकायदा वो हाथ
0: हिला
1: ऐसे हिला के दिखा रही
0: करके। नहीं,
1: हैं।
0: हमारे श्रोता बहुत समझदार है, वो सब जान गए कि तिकल्ला बोला है।

0: पहना ही नहीं, दूसरी तह में वो किताब जिसे वो पढ़ना चाहती थी, पर चूल्हे चौकी की जिम्मेदारियों में वक्त नहीं मिला। और सबसे नीचे दबी वो डिबिया जिसमें मेले से लाई बिंदिया आज भी वैसी की वैसी पड़ी है। उनके अपने सारे रंग हमारे भविष्य को संवारने में घोल दिए और खुद एक फीकी सी साड़ी में सिमट गई। अलमारी खोलो तो आज भी उसमें से ममता के साथ साथ एक अनकही उदासी की महक आती है कि काश किसी दिन हमने पूछा तो होता, माँ तुम्हारा सपना क्या था। बहुत ही मतलब दिल भर आया ऐसी बातों को सुन करके।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि पुराने जमाने की माँ के लिए अलमारी यानी सिर्फ कपड़ों की या गहनों की राशि, वो तो है उनके त्याग की निशानी और अधूरे सपनों की कहानी। ऐसा हम जरूर कह सकते हैं, सामाजिक वैचारिक अनास्था के कारण खुद की इच्छाएं दबाकर कुटुंब के लिए वो त्याग की मूर्त बन जाती थी, परंतु उन्हीं के ममता भरी सजग छाया में पली आज की आधुनिक माताएं ऐसी नहीं है। बड़ी समझदारी से परिवार और बच्चों को संजोते हुए वे खुद के सपने और कर्तव्य पूरी नजर आ रही है। दरअसल इसमें भी कोई बुराई नहीं है, अगर हम उन परंपराओं से आगे नहीं बढ़ेंगे तो वे पीछे रह जाएंगे। आपको अगर आगे बढ़ना है और लड़कियों को खासतौर से आगे बढ़ाना है, उन्हें भी समानता से उनके हक के बारे में सोचना है, तो फिर उन परंपराओं से तो आगे निकलना होगा।
0: बिल्कुल,
1: अब कहने का ये मतलब नहीं है कि माँ की जो अच्छाइयां थी उसको आप हटा के दूर रख दीजिए।
0: जी, उनको तो रखना ही अपने पास। और हमारे साथी लिखते हैं कि माँ की अलमारी सिर्फ कपड़ों या कागजों का बक्सा नहीं होती थी, वो उनसे उन अनकहे अधूरी इच्छाओं का संग्रहालय होती थी जिन्हें उसने परिवार की खुशियों के पीछे कहीं छुपा दिया होता है। उसके ये अधूरे सपने किसी मलाल की तरह नहीं होती बल्कि उस त्याग की मिसाल होते हैं जो उसने हंसते हंसते खुद पर ओढ़ लिया। उसने अपनी दुनिया को अपने बच्चों और परिवार की खुशियों के इर्द गिर्द बुन लिया और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को उन परतों में हमेशा के लिए छुपा दिया। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उनकी, और घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच ना जाने कितनी बार अपने सपनों को वो चुपचाप तह करके रख दिया करती, और बच्चों की खुशी, पति की जरूरतें और घर की जिम्मेदारियां उनके अपने अरमानों से आगे निकलती रहती। और उनकी अलमारी की हर तह जैसे कहती कि मैंने भी कभी अपने लिए कुछ सोचा था। और कभी अगर ममता जी उस अलमारी को ध्यान से खोलिएगा तो देखें माँ के कितने सपने उसमें मिल जाएंगे, और जिसमें उनके कोई कभी शब्द नहीं उन्होंने दिए, और अगर मिल जाए तो उसे पूरा करने की कोशिश हम सभी को करनी चाहिए, क्योंकि माँ के सपनों को उम्र नहीं बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए होता है। और कई बार होता है कि जब उनकी अलमारी देखो तो उसमें बहुत सारे रुमाल दिख जाते हैं तह रखे, उनकी कढ़ाई के धागे दिख जाएंगे, सुई का डब्बा दिख जाएगा, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें माँ की उस अलमारी में दिख जाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और उनके उसके साथ साथ कुछ कागज़ों के बीच रसीद भी मिल जाती है, जो चीज़ें उन्होंने उस समय खरीदी होंगी वो भी दबी पड़ी हैं, कुछ पन्ने फट गए उनके रसीदों के, लेकिन फिर भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और इसके साथ साथ अपने बच्चों के छोटे छोटे से कपड़े, झबले, टोपी, मोजा, ये सब भी उनकी अलमारी में खूब दिख जाता है। और जब क्या कहते हैं कि उनकी तस्वीर का जो एक पोटली होती है या एल्बम होता है, उसमें भी ना जाने कितने समय के लोगों के परिवार के सदस्यों की फोटोग्राफ्स मिलती हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है कितना संभाल के उन्होंने उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को रखा हुआ है।
1: और वो प्रिंट करने का जमाना भी था कि प्रिंट करवा के सहेज के रखा भी जाता था, कहीं एल्बम में लगाया जाता था या लिफाफे में करके। अब एक गाना सुन लेते हैं और बातें करते हैं।

0: भाई, माँ की अलमारी में जो छुपे उनके अधूरे सपने थे, इसी तरह चांद सितारों के माध्यम से, सूरज के माध्यम से, कुदरत के माध्यम से पूरे होते थे। वो
1: बिल्कुल
0: अपने सपनों को इन्हीं तरीके से, कभी चांद की कहानी, कभी कोई कहानी सुनाकर अपने सपने पूरे कर लेते थे। तो सपन कहानियों के माध्यम से उनके सपने मुकम्मल हो जाया
1: बिल्कुल।
0: करते
1: और
0: थे।
1: ममता जी, कई घरों में उनके पास अलमारियां होती थी, माँ की दीवार वाली अलमारी होती थी, कई बार वैसी लकड़ी की पुरानी जो नक्काशीदार अलमारियां होती थी, और कई बार उनके बक्से या कोठरी में बहुत सारी चीजें होती थी, इस तरह से भी
0: अब
1: रखते थी वो लोग।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि माँ की अलमारी में पुरानी फोटो, डायरी, कॉपी और बहुत सारी यादगार चीजें रखी हुई थी। उन कॉपियों में उन्हें कुकिंग टिप्स, फिल्मों के मनपसंद गाने लिखे हुए होते
1: क्या
0: थे।
1: बात,
0: और एक हमारी सखी, इन्होंने लिखा है कि बहुत सुंदर बातचीत चल रही है, वो जो अंगूठे और उंगली में लपेटने की बात कर रही है मंजरी जी, ऐसे लपेटा हमने लोगों को, हम लोगों के भाई पतंग उड़ाने के समय जब
1: जी
0: मांझा लपेटा करते थे भाई।

0: ये तो हमने भी ये काम किया है
1: हाँ, मांझा लपेटना भी
0: कि
1: तिकल्ला जैसा
0: हाँ
1: बनाते
0: वो
1: थे
0: पतंग उड़ा रहे हैं
1: जी।
0: और मांझा पकड़ो आप संभालो, और उंगली कट जाती थी।
1: हाँ, जैसे वो जब पूरा लपेट के निकलता था ना ममता जी, तो उसका शेप जो गुल्ली डंडा खेलते थे ना, वो जो गुल्ली होती थी वैसा बन जाता था। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मेरे माता जी ने एक बार अलमारी में एक पोटली निकाली थी, हम तीनों भाई बहन उसको बड़े अचरज से देखने लगे कि इसमें क्या होगा। उस पोटली में पुराने सिक्के थे और हमारे जन्म से पहले के, और बहुत रेयर अलभ्य थे कुछ सिक्के और कुछ तांबे के, कोई हॉल वाले तो कोई पुराने गोल, मतलब एक गोल छेद वाला सिक्का, और पुराने गोल नहीं होते थे, और राजा महाराजा के मुख्य उसमें छापे बने हुए थे। वे सिक्के उनके नहीं, हमारे सपने पूरा करने के लिए रखे होंगे, मतलब वो
0: और
1: सिक्के देख के।
0: एक
1: जी
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी सेंट बनाया करते थे मेरी मम्मी की, बड़ी बड़ी लोहे के संदूक में से। आज भी उनकी खाली छोटी छोटी शीशियों से उनकी खुशबू संदूक में से आती है जब भी वो संदूक खोले जाते हैं, जबकि वो सेंट नाना जी ने आज से कम 70-75 सालों पहले बनाए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे माता जी ने एक बार अलमारी में से कोई एक पोटली निकाली थी, हम तीनों भाई बहन इसे अचरज से देखने लगे कि इसमें क्या होगा। उस पोटली में पुराने सिक्के थे, और जो आपने बताया कि
1: जी
0: सिक्के, तो इस तरह की बातें। और एक श्रोता ने लिखा है कि उन दिनों की माँ की अलमारी कहाँ हुआ करती थी भाई, हमने तो माँ की काठ की पेटी या फिर बक्सा देखा था जिसे वही छू सकता था जो बच्चा उनके समीप रहते हुए उनका प्रिय होता था, और
1: जी
0: मैं उन बच्चों में नहीं आ पाया था। और बिल्कुल ताला बंद होता था उस बक्से में, और चाबी कहीं
1: मतलब
0: छुपा
1: इसीलिए
0: के
1: तो मैंने
0: रखी
1: बोला ना
0: होती थी।
1: कि सब चीजें सबके यहाँ नहीं होती थी।
0: हाँ, एक श्रोता लिख रहे हैं कि माँ से जुड़ी यादों में एक बहुत ही खूबसूरत याद है, माँ के अंतिम दिनों में खूब स्वेटर बुना करती थी, और हम
1: जी
0: स्वेटर की बातें कर चुके हैं।
1: बिल्कुल, और जब स्वेटर बिनती थी तो हमने देखा ही था कि किस तरह से वो बिना करते थे। और माँ की बहुत सारी चीजें भी होती थी घर गृहस्थी की, जिन्हें हम सोच सकते हैं कि वो भी कभी कभी उसमें चीजें दिख जाती थी उनके बक्से में रखी हुई संभाल करके।
0: अब हम मुहावरों की बातें कर लेते हैं
1: जी
0: मंजरी जी, तो बताइए आपको कितने मुहावरे याद हैं? आज जो मुहावरा हमने दिया है वो याद है कि नहीं?
1: हाँ
0: बताइए।
1: अपना उल्लू सीधा करना, और हमारे साथी भी लिखते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे को इस बात से बताना चाहूंगा कि अक्सर हम देखते हैं कि तीर्थ स्थलों में, अन्य पूजा स्थलों में, जहाँ श्रद्धालुओं में भक्ति भावना होनी चाहिए, अत्यंत भीड़ भाड़ में भी कुछ लोग बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भी धक्का देते हुए पहले पहले दर्शन करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, जो कि भक्ति भावना के विपरीत है। और इस तरह की बातें हमारे बहुत साथियों ने लिख करके भेजी हैं, तो हम
0: अच्छा मंजरी जी,
1: जी
0: आप तो मुहावरों की बातें बता रही हैं और शुरुआत तो हम कर चुके हैं, लेकिन अभी ये माँ की अलमारी की बात तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही है। उसमें
1: नहीं
0: से कपड़े सपने निकलते ही आ रहे हैं। अब हमारी एक सखी हैं, इन्होंने लिखा है, अभी अभी कमेंट लिखा है, हमें लगता है कि
1: जी
0: इस विषय पर बातें करना हमारी सखियों को बहुत मन भाया है। लिखा है कि अलमारी में उनकी साड़ियां इतने करीने से मलमल के कपड़े में लपेटी हुई रखी रहती हैं, जैसे कितनी अनमोल धरोहर है उनकी। साड़ियों में तो उनको बहुत ही ज्यादा प्रेम होता है। एक किनारे में उनकी छोटी सी पैकेट बना रहता है, छोटा सा पैकेट बना रहता है जिसमें उनकी पुरानी तस्वीर, पुराने एल्बम और न जाने क्या क्या सहेजा हुआ रखा रहता है। काफी सारी डायरी जो उनको लिखने का शौक है, कुछ कुछ लिखती रहती हैं, वो भी उनकी अलमारी में सजी रहती है। पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, सब कुछ एक पेंसिल बॉक्स में करके रखा हुआ है। कभी उनको पेंसिल चाहिए तो वो भी वर्क पहली भरने के लिए,
1: जी
0: और कभी गलत हुआ तो रबर भी चाहिए, शार्पनर भी चाहिए, वो सब संभाल के अपने पास रखती हैं। क्या बात है भाई, हमें लगता है कि जो माँ की अलमारी की यादें हैं वो अंतहीन हैं। अब
1: बिल्कुल
0: एक हमारी सखी ने लिखा है कि मम्मी की अलमारी और यादें शब्द नहीं है बयां करने के लिए, अब तो हमारे पास भी जैसे शब्द खत्म होने को हैं। और डायरी और कॉपी, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि उनके अलमारी में, उनके बक्से में एक डायरी होती थी, और कुछ डायरी में ये भी लिखा होता था कि किसको कितना दिया गया,
1: हाँ खर्चे का
0: दहेज
1: हिसाब।
0: और
1: जी
0: खर्च का हिसाब,
1: हाँ
0: और तोहफे के रूप में जैसे शादी विवाह में
1: जी
0: शगुन के तौर पर देते हैं, तो फलाने को इतना रुपया दिया गया और उनको इतना रुपया दिया जाना है, ये
1: जाना
0: भी लिखा
1: है
0: होता था।
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल,
1: और साथ
0: इतिहास
1: में
0: होता
1: किसी
0: था।
1: मेले में जाती थी तो वो भी डायरी में दिखता था कि यहाँ पे ये पानी बताशे, दही बड़ा, चटनी और आलू की टिक्की खाई, और इतने पैसे ले गए थे, इतने पैसे बचे, मतलब ये सब चीजें छोटी छोटी भी वो लिख के रखती थी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम उनकी यादों को साझा करते हैं,
0: और
1: ताजा करते
0: वो
1: हैं।
0: अक्सर मुहावरों और लोकोक्तियों में बात करती थी, है ना?
1: बिल्कुल

0: काम करने का मन नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं, तो बस कुछ ना कुछ अपना बोल दिया उन्होंने, अपनी मुहावरे कहा थे, तो बड़ा
1: और आज का विषय भी मुहावरा है,
0: जी
1: तो मुहावरे में हमने रखा है कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपने आप अपना काम निकाल के आगे बढ़
0: जी
1: जाएं।
0: जी
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये पुराना और प्रसिद्ध मुहावरा है, इसका अर्थ है अपना काम सिद्ध कर लेना। और ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जिंदगी में जो अपना काम सीधा करके आगे निकल जाते हैं।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया अपना उल्लू सीधा करना, भाई इस नेक कार्य में तो प्रायः सभी लोग लगे हुए हैं, ऐसा करते रहना कोई बुरी बात नहीं, बशर्ते उससे किसी का दिल ना दुखे, लिखते हैं हमारे साथी। और एक लिखते हैं कि इस मुहावरे को इस बात से बताना चाहूंगा कि अक्सर हम देखते हैं कि तीर्थ, अच्छा ये चीज़ तो मैंने पढ़ी है कि दर्शन करने जाते हैं ये वाली बात। और एक लिखते हैं कि उल्लू सीधा करने वाले मुहावरे पर ये गीत फिट बैठता है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, अपना काम निकल गया, फायदा हो गया, फिर कौन तू कौन मैं, सावधान ऐसे लोगों से जो दूसरों को उल्लू बनाते हैं। कई बार हो भी जाता है तो बड़ा मन दुखता है कि कैसी लोगों की प्रवृत्ति होती जा रही है, जो सिर्फ मतलब के लिए ही साथ में खड़े होते हैं, उनका मतलब निकल गया तो आपको पूछेंगे भी नहीं, पलट कर आपको देखेंगे भी नहीं, मुसीबत के समय तो आप ये उम्मीद ही मत करिए कि वो आपका साथ देंगे। तो अगर आप एक बार धोखा खा जाएं तो हमेशा के लिए उसको अपना बना लें कि इस तरह
1: पर
0: का।
1: ऐसा करना नहीं चाहिए
0: जी
1: कि अपना मतलब सिद्ध करके आगे बढ़ के और सामने वाले की मदद ना करें।
0: जी
1: और मंजरी जी, आज आपदा जोखिम नवीनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आज के दिन को याद किया जाता है।
0: बिल्कुल
1: दरअसल अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को आपदाओं से बचाव के प्रति जागरूक करना। जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, सूखा और भूस्खलन जैसी आपदाएं बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन आपदाओं को हमेशा रोका नहीं जा सकता, लेकिन सावधानी और तैयारी से नुकसान कम किया जा सकता है।
0: बिल्कुल
1: इसकी सतर्कता की ओर ध्यान दिलाना इसका उद्देश्य है।
0: बिल्कुल। और हमें घर, स्कूल और कार्यालयों में सुरक्षा के उपायों को जानकारी देनी चाहिए, रखनी भी चाहिए, और आपातकालीन जो नंबर होते हैं उनको लिखकर जरूर आप रखें, कभी भी यह मुसीबत पड़े तो आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। सरकार और आम लोगों को मिलकर आपदा से निपटने की तैयारी करनी चाहिए, जागरूकता और सही तैयारी से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस दिवस का संदेश है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और आपदा के लिए पहले से तैयार रहें।
1: और अब सुनते हैं ये गाना।

0: अभिमान फिल्म का ये गाना था और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोली बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहरी कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने। ये है दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में अपने एक्टिंग के सपने को जिया है और आज एक बहुत ही पसंद की जाने वाली सीरीज पंचायत जिसका नाम है उसके किरदार विकास के रूप में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। एक ऐसा किरदार जो ईमानदार है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूमियत भरी है और उसने लोगों को हंसाया भी है और रुलाया भी है। अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता चंदन रॉय जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच मैम, और मुझे सच में यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है।
1: अच्छा, अब बात करते हैं उस सीरीज की जहाँ से आपको नाम मिला विकास का, इस किरदार का। तो ये पंचायत के साथ जुड़ना कैसे हुआ, क्योंकि शायद दिलचस्प बात यह है कि आप बहुत ज्यादा सीरियसली इसका ऑडिशन नहीं दिया था या यूं ही हो गया, कुछ तो मजेदार किस्सा है इसके साथ जुड़ा हुआ। पंचायत के साथ कैसे जुड़े आप?
2: देखिए, जब मुंबई में ऑडिशन का सिलसिला शुरू हुआ मेरा, तो जैसा मैंने कहा कि रोज सुबह, कई बार तो बहुत लंबे टाइम तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि मैं मुंबई आ गया हूं। सोया हुआ हूं, नींद खुली, मैंने कहा अरे मैं मुंबई में हूं, यकीन ही नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि बचपन से मुझे मुंबई जाना था, बचपन से ही सपना देखा था मैंने। इस कदर दीवानगी थी मुंबई आने का कि अगर मैं किसी ट्रेन में देख लूं कि पटना टू बांद्रा, मुझे लगता था कि जाकर के उस बॉगी को एक बार प्रणाम कर लें,
1: अच्छा
2: उसको छू लें, क्योंकि ये मुंबई जा रहा है। और जब मैं मुंबई आ गया तो रात में कभी चौंक के उठ जाता था कि सच में मैं मुंबई आ गया, मैं मुंबई में हूं अभी, ये यकीन नहीं होता था मुझे। और जब मुझे ये लगता कि जब तुम मुंबई आ गए हो तो तुम सोए हुए क्यों हो भाई, उठो ना, जाओ ना ऑडिशन देने के लिए, करो ना वो काम जो तुम चाहते हो। तो बहुत ही सुबह उठ के थोड़ा गले के लिए कुछ रियाज कर लेता था, चूंकि थिएटर बैकग्राउंड से आया था मैं,
1: बिल्कुल,
2: और वही चावल दाल, कभी चना मूंग खा के, या सत्तू, सत्तू मेरा बहुत ही गो टू

0: अभी भी यकीन माने मैं सत्तू पी के आया हूँ।
1: अच्छा
0: तो
1: जी
0: उस टाइम में भी ये सब सत्तू या चावल दाल खा के मैं निकल जाता था ऑडिशन के लिए।
1: जी
0: और कई बार मुंबई की तो आप जानते ही हैं उमस, इधर तो आप गर्मी भी ज्यादा होने लगी है, बट ये सब चीज फर्क नहीं पड़ता था। ना तो उस समय सनस्क्रीन था, ना तो कुछ था, बस जुनून था जिसकी वजह से पूरा शरीर चमक रहा था, है ना।
1: बिल्कुल, आपकी बातों में झलक रहा है वो
0: हाँ जी।
1: जुनून।
0: और मैं निकलता जहां मुझे मिल जाए पानी पीने का, पसीने सुखाने का, वो सब चीज मैं कर लेता था। ऑडिशन जब भी मैं कहीं जाऊं और दिन में अगर एक भी ऑडिशन हो जाए तो ऐसा लगता था आज का दिन सफल हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि जब सामने कैमरा होता था तो मुझे लगता मैं क्या कर दूं। कई बार स्क्रिप्ट हम घर से अपना कुछ मोनोलॉग तैयार करके ले जाते थे
1: जी
0: और सामने में रिकॉर्ड करने वाला अगर उसको मजा आ रहा है तो हम उसी में इम्प्रोवाइज करने लगते थे,
1: बिल्कुल।
0: किसी तरह इसको मैं इम्प्रेस कर दूं अपने एक्ट से। ये फितूर, ये दीवानगी, ये पागलपन मेरे सर पे सवार हो गया था और ये चलता रहा मैं। बट उस समय एक चीज मेरे ध्यान में था कि ऑडिशन दो और भूल जाओ। क्यों? क्योंकि यहां लोड बढ़ जाता था दिमाग पे कि भाई मैंने बड़ा अच्छा ऑडिशन दिया, कॉल नहीं आया, पता नहीं क्या होगा। तो अपन ऑडिशन दे दे के भूल जाते थे।
1: तो पंचायत का ऑडिशन भी आपने दे के भूल गए या किस तरह से यहां तक पहुंचे?
0: पंचायत के ऑडिशन में ये हुआ कि तब तक 1.5 साल हो चुके थे मुंबई में,
1: अच्छा
0: साल 1.5 साल। और मेरे कुछ दोस्त, मेरे नहीं मतलब मेरे रूममेट के एक दोस्त,
1: जी
0: वो उनकी महफिल जमती थी मेरे घर पे। तो अंकित मैं फ्लैटमेट हुआ करता था।
1: जी
0: फ्लैटमेट क्या, हम लोग समझिए कि रैन बसेरा ही था वो। एक साथ 6-7-8 लोग रह रहे हैं
1: अच्छा
0: और कमाल की बात ये थी कि 7-8 लोगों के लिए मैं ही रोटी बेलता था।
1: अच्छा रोटी का काम आपको सौंपा गया था।
0: नहीं, सौंपा क्या गया था, कोई कुछ करते ही नहीं थे।
1: अच्छा
0: और मुझे ये था कि इस समय पे मुझे बाहर जाना है, ऑडिशन देना है, समय पे
1: जी
0: सो जाना है। तो वो सब इंतजार करते रहते थे कि चंदन आएगा तो खाने को मिलेगा। तो उन सब के लिए मैं रोटी बनाता और बाद में फिर मैं टिक्कर बनाने लगा।
1: अच्छा
0: टिक्कर जो रोटी का बहुत मोटा रूप।
1: अच्छा छोटा और मोटा रूप, छोटा और मोटा
0: हाँ
1: रूप।
0: जी,
1: अच्छा
0: बहुत मोटा मोटा मैं, चूंकि मुझे
1: हाँ
0: बड़ा मुश्किल हो गया था वो,
1: जी
0: मतलब 1-1 घंटे तक रोटी बेलना, तो मैं
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: मोटा
1: जी
0: मोटा बनाने लगा।
1: जी
0: खैर, तो हाँ महफिल जमती और फिर लोग आते हैं। तो उसमें से एक मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त बन गया, लतिन। तो उन्होंने कहा कि यार चंदन तुम कल आ जाओ ऑफिस में, तुम्हारा हम इंट्रोडक्शन करवा देंगे। मैंने कहा अरे वाह, बहुत सही, इतने साल से आज तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है कास्टिंग वे में। तो उसने बुलाया, अगले दिन हम पहुंच गए वहां। कमाल की बात ये थी कि पंचायत सारे कैरेक्टर लॉक हो चुके थे,
1: अच्छा
0: सिर्फ दो कैरेक्टर बचा हुआ था। एक एक दिन का वो काम था, एक इलेक्ट्रिशियन का और एक दूल्हे का। बोला देख दूल्हा तो तू लग नहीं रहा, इलेक्ट्रिशियन बन जा, उसका ऑडिशन है। उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, बोला ये करके तैयार, थोड़ा सा तैयारी कर लो और आ जाओ।
1: जी
0: मैंने कहा ठीक है। एक दो बार पढ़ा और फिर मैंने वो ऑडिशन देखे, फिर वही बातें, भूल जाओ। भूल गया फिर अपने दूसरे ऑडिशन की तैयारी, घूम घूम के कि यस, ऐसे दरवाजा नॉक करता था कि भाई सर कुछ है क्या मेरे लिए, कुछ है क्या मेरे लिए, ये फिर शुरू हो गया मेरा। उस समय चंदन चंदन कुमार जो हमारे पंचायत के राइटर है और दीपक मिश्रा जो हमारे पंचायत के डायरेक्टर है, तो इन्होंने देखा मेरा ऑडिशन और उन्होंने उसी समय डिसाइड किया कि यार इस लड़के से अपन कुछ और करवाते हैं, बहुत सही लग रहा है। तब तक विकास के लिए कोई और कैरेक्टर लॉक हो चुका था।
1: अच्छा
0: तो उनके मन में आया क्यों ना हम विकास एक बार ट्राई करें इससे। तो आया विकास का ऑडिशन मेरे पास। मुझे लगा कि यार ये क्या ही, मतलब कहाँ मैं वन डे टू डे करता हूँ, इन्होंने पैरेलल लीड कैरेक्टर मुझे ऑफर कर
1: बिल्कुल
0: रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, मतलब हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपना तो चल ही रहा है, रोज भटकेंगे फिर से। और मैं एकदम कफन बांध के आया था अगले 20-25-30 सालों के लिए,
1: अच्छा
0: ये नहीं कि मुझे फट से काम, नहीं, बहुत समय, बुढ़ापा तक, वो सोच के आया था मैं। बट आ गया पंचायत का ऑडिशन और अगले दिन चला गया ऑडिशन के लिए, दिया
1: शुरू किया
0: ऑडिशन।
1: जाए।
0: हाँ दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं।
1: अच्छा
0: तो रामनगर में उनका ऑफिस आ गया मैं मिलने के लिए। यकीन मानिए मुझे उस समय तक मैं टीवीएफ जानता भी नहीं था, कुछ
1: अच्छा
0: वीडियो मैंने जरूर देखे थे बट जानता नहीं था मैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है।
1: क्या बात है,
0: तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: क्या बात है, क्या बात है। इस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिलना ही बहुत बड़ी बात है।
0: हाँ जी।
1: इसी बात पर कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे?
0: अरे वाह, मैं इस वक्त

0: जो मुझे याद आ रहा है, जब मैं स्कूल शुरू किया था ना, तो अक्सर फिल्म का एक गाना बहुत उस समय, आजकल तो वायरल कहते हैं, उस समय तो लोकप्रिय कहा करते थे।
1: पॉपुलर,
0: हाँ जी, हाँ
1: बहुत
0: जी।
1: पॉपुलर
0: तो एक बार आजा आजा अक्सर फिल्म का गाना है,
1: जी,
0: इमरान हाशमी,
1: सुनवाते
0: उनका
1: हैं
0: दौर
1: गीत,
0: था ये।
1: सुनवाते हैं गीत,
0: हाँ जी, हाँ
1: बिल्कुल
0: जी।

0: से ये क्योंकि बहुत पसंद किया जाने वाला किरदार है, जिस हिसाब से वो स्लो बड़े आराम से इत्मीनान से बोलता है चलता है, तो वो तैयारी कैसी हुई?
1: जी, तो जब स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो जैसा वो थिएटर में मुझे बताया गया था कि जितने बार स्क्रिप्ट पढ़ोगे ना तो वो कैरेक्टर एक समय के बाद खुद से बोलने लगेगा कि मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूं, मैं ऐसा हूं। तो पंचायत का जो विकास है वो स्क्रिप्ट से मैंने उठाया, मतलब उसको जितना मैं पढ़ा, मतलब बहुत पढ़ा मैंने
0: जी,
1: कि अगर ये प्रधान जी से इस तरह से बात कर रहा है, ये प्रहलाद चा से ऐसी बातें कर रहा या सचिव से ऐसी बातें कर रहा, तो ये किस तरह का कैरेक्टर होगा, इसके अंदर कैसी एनर्जी होगी, ये सब कुछ आप जब बार बार बार बार स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना, आपको सब कुछ मिल जाता है। इस एक स्क्रिप्ट में अगर आप बार बार पढ़ो तो उसमें सब कुछ रहता है, आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं होती,
0: बस उसमें रमना और बसना होता है
1: बस।
0: स्क्रिप्ट में
1: तो समझिए कि विकास को इतना मैं, चूंकि वो पहला प्रोजेक्ट था
0: जी,
1: तो मैं किसी तरह से कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखना चाहता था
0: जी,
1: तो उसको बहुत पढ़ा मैंने। जैसे कई बार होता है ना कि जो बुक आपका बहुत पसंदीदा होता है आप इतना पढ़ जाते हो कि उसके पेज थोड़े से मटमैले हो जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: हर जगह फिंगरप्रिंट होता है, गंदे से हो जाते हैं हर जगह, तो मेरा स्क्रिप्ट भी इसी तरह से हो गया था
0: जी।
1: कहीं भी मुझे अगर 5-10 मिनट का भी समय मिलता मैं एक दो पेज पढ़ लेता,
0: अच्छा
1: इतनी दीवानगी थी मुझे अपने स्क्रिप्ट को लेकर के। तो एक तो दिमाग में ये भी था मैम कि अपन एक्टिंग नहीं करेंगे कहीं भी, जितना अच्छा ये मेरा ना मतलब अभिनय को लेकर के मेरा अप्रोच भी हमेशा से रहा है
0: जी,
1: कि लोगों को ये ना लगे कि अच्छा हेयर मेकअप करके अभी तैयार है तो अभी मुझे एक्टिंग करनी है, मैं जैसा हूं या जैसा मेरा कैरेक्टर है अपन उसी तरह से करेंगे। क्यों हम कैमरा लगते ही ये दिखाने लगते हैं कि देखो अब हम एक्टिंग करेंगे, अब तैयार हो जाओ हमें देखने के लिए। मुझे इससे परहेज शुरू से था, मुझे नहीं पता कि अच्छी एक्टिंग क्या होती है, आज तक मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन हाँ मुझे बुरी एक्टिंग क्या होती है इस बात की समझ बहुत पहले हो गई थी।
0: और मुझे लगता है वो समझ होना बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं उनसे बचता था। और ये था कि क्या करना है ये तो एक्सप्लोर करो, ये बहुत महासागर है, ये पूरा खुला आकाश है, क्या करना है आप ढूंढो, लेकिन क्या नहीं करना है ये पहले उस
0: पहले
1: पर
0: पता होना
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: पता होना चाहिए। तो विकास के साथ भी ऐसा ही किया मैंने
0: जी,
1: अपने गांव में जिस तरह से मैं देखता था कि लोग जिस तरह से खड़े होकर के, 5 लोग अगर पुलिया पे खड़े हैं या बैठे हैं और बात कर रहे हैं तो कितना अगर बहुत इन्वॉल्व है, उस तरह की बातें हो रही हैं तो उनका हाथ पांव कैसे रहता है, एनर्जी कैसी होती है, मेरी ये पूरी कोशिश रही। आप देखना किसी भी फ्रेम में आपको नहीं लगेगा कि ये लड़का अलग किसी दूसरे शहर का है या ये लड़का विकास इस गांव का नहीं है। तो इन सब पर मेरा बहुत ही मैं चाहता था कि घुस जाऊं, जैसे आप कोई शर्ट पहन लेते हो, कोई कोट पहन लेते हो और वो आपका हो जाता है, उसी तरह से विकास को मैंने पहन लिया
0: बिल्कुल, और वो दिखता भी है। और इसके एक दो सीन है जिसकी मैं बात करना चाहूं, जैसे एक था जिसमें विकास वो बाइक पे बैठता है और पूरा पूरा पलंग उठा के सर पर और चल देता है,
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: इस
1: हाँ जी।
0: तरह के जो सीन है ये कहीं इम्प्रोवाइज्ड है या स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे पहले से?
1: नहीं, ये जो बेसिकली जो खाट जो हम सर पे उठाते हैं
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: स्क्रिप्ट में लिखा था,
0: अच्छा,
1: लेकिन पंचायत में एक बड़ी अच्छी बात यह है, हमारे क्रिएटर्स जो हैं दीपक सर, अरुणाव सर और चंदन सर जो राइटर हैं, ये अपने एक्टर को बड़ा खुला छोड़ देते हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात अभी मतलब शुरू से ही उन्होंने कहा है कि देख ये यूनिवर्स है, हमने अपने सारे कैरेक्टर को इस यूनिवर्स में उतार दिया है, मैं ये इंसिडेंट या ये इवेंट मैंने स्क्रिप्ट में लिखा है बट ये होगा कैसे, आपको उस मोमेंट में उस स्पेस में उस एम्बियंस में जो समझ में आ रहा है आप करो। यही वजह है कि पंचायत में जितने कैरेक्टर हैं कई बार वो स्क्रिप्ट के बियॉन्ड चले जाते हैं और बहुत खूबसूरत चीज निकाल के ले आते हैं, है ना। और इसके लिए जरूरी है कि आप उस यूनिवर्स को समझें, अगर आप नहीं समझोगे ना तो ऐसा लगेगा एयर ड्रॉप किया हुआ ये कैरेक्टर है,
0: जी
1: सिर्फ स्क्रिप्ट बोल रहा है, सिर्फ वो लाइंस बोल रहा है, ऐसा लगेगा। तो ये छूट, ये लिबर्टी हमारे क्रिएटर्स ने हम लोगों को दिया है और मुझे भी इम्प्रोवाइज करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार जब आप जो हमारे राइटर हैं डायरेक्टर हैं उन्होंने कुछ सोचा है इस सीन को कि ऐसा रखेंगे, उनके अतिरिक्त आप कुछ कर देते हो, उनसे आगे कुछ बढ़ा देते हो अपने सीन को या अपने कैरेक्टर को, तो यकीन मानिए जब आप होटल

पंचायत की बात चलिए तो हम आते हैं कि आपके किरदार पर, उस किरदार के लिए कुछ तैयारी की आपने, जैसे मैनरिज्म कुछ है उसके, उसकी बोली किस तरह से बोलेगा, इसके पीछे कुछ तैयारी हुई, वर्कशॉप हुई, किस तरह

0: आते हो वापस अपने फ्रेश होकर के नहा के अपने बेड पे आते हो तो बड़ी खुशी मिलती है आपको कि वाह मैंने
1: वो
0: सीन में
1: संतोष मिलता है
0: यस
1: कि आज क्या किया।
0: आज बड़ा अच्छा सीन किया
1: जी
0: मैंने,
1: जी जी
0: और
1: बिल्कुल।
0: बहुत ही खुशी खुशी आपको नींद आ जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह 4:30-5 बजे का अलार्म बजता है, फिर आप वही जुनून वही पागलपन आपको काम आता है।
1: तो सेट पे कैसा माहौल है आपके को एक्टर से, ऑफ स्क्रीन भी कैसा माहौल है, किनके साथ मिलना जुलना तो लगा रहता होगा।
0: देखिए एक तो बहुत यह है कि लोगों को लगता है कि बहुत हम लोग मिलते जुलते हैं, पर्दे पे इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन मुंबई बिल्कुल उल्टा है, किसी के पास भी समय नहीं है। और कई बार डर भी लगता है कि भाई कोई कहीं जाऊं पता नहीं क्या होगा, उसकी प्राइवेसी है उसका क्या है। तो सेट पे तो हम लोग सब बहुत मिलजुल के सब लोग, और ये सभी अभी इतने 8-9 साल का अनुभव है मेरा,
1: जी
0: सेट पे हम लोग जितनी केमिस्ट्री, और सिर्फ मैं किसी एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, सभी प्रोजेक्ट में यही होता है कि
1: जी
0: हम लोग सेट पे बहुत अच्छे रहते हैं, और जैसे ही हमारा पैकअप होता है हम सब अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं, अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं, है ना। और ये कई बार सही भी होता है, कई बार मुझे गलत भी लगता है, बट ठीक है मैं भी इस धारा में बह रहा हूं। किसी के पास समय नहीं होता कि वो मिले, पुराने दिनों को याद करे, सिर्फ
1: कभी
0: का
1: कभी किसी प्रोजेक्ट में अगर फिर से उनसे मुलाकात हो फिर वो एक मिलना अलग हो जाता है।
0: एक तो हम लोग का जो भी एक्टर होते हैं
1: जी
0: उनका बहुत रिसीविंग नेचर होता है।
1: जी
0: मान लो कि अगर आपकी एनर्जी मुझसे नहीं भी मिल रही है, आप बहुत अलग ख्यालात के हैं, मैं अलग हूं, बट जो हमारा सीन होता है तो हमें अपनी एनर्जी को मैच करके और उस वक्त को बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर को करना होता
1: जी जी
0: है ना।
1: जी बिल्कुल।
0: तो लोग लगा अरे यार क्या है, बहुत बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है इन लोगों में। तो ये हमारा जॉब का एक सबसे पहला एक स्टेप है ये।
1: अच्छा, पंचायत के बाद क्या फर्क आया है जब आप अभी वापस गांव जाते हैं मिलने जुलने परिवार से दोस्तों से, पहले के चंदन में और अभी वो जिस तरह से बिहेव करते हैं या मिलते जुलते हैं, कुछ फर्क है दोस्तों के बीच या बाहर के लोगों के बीच?
0: देखिए उनके नजर उनका नजरिया बदला होगा मेरे लिए, ये तो मुझे ऐसा लगता भी है,
1: हाँ
0: बट मैं तो बिल्कुल भी अंदर से नहीं बदला हूं, मैं
1: अच्छा
0: जैसा था वैसा ही हूं। पहले भी इसी तरह से मैं सोचता था, इतना ही कूल और कॉन्फिडेंस में रहता था जितना आज है, और कभी मुझे अभी कई बार ऐसा लगता है कि ये तो होना ही था मेरे लाइफ में,
1: जी
0: तो कई बार आश्चर्य नहीं होता मुझे कि अरे
1: लेकिन बाहर जो बाकी लोग मिलते हैं उनकी मेहमान नवाजी में कुछ फर्क आया?
0: बिल्कुल। कई बार तो उनको लगता है कि भाई ये चंदन तो आप, जैसे मुझे बहुत बुरा लगता है जब दोस्त लोग अजीब बिहेव करते हैं,
1: अच्छा
0: हाँ उनको लगता है कि अरे इसको ऐसे मत बोलो, इसको ऐसे बैठाओ, इसके लिए थोड़ा
1: कुछ
0: पहले
1: कुछ
0: चंदन
1: बुरा
0: को,
1: लग जाएगा।
0: हाँ तो मुझे लगता है ओ हेलो मैं वही चंदन हूं भाई, ऐसा क्यों तुम बिहेव कर रहे हो, जैसा पहले थे वो सही रहो। तो लोगों का नजरिया बदला है, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी जैसा मैं पहले था आज भी वैसे ही हूं, घर जाऊं या कहीं भी जाऊं
1: जी
0: मैं वही कहा कि मेरा जॉब है अभिनय करना। लोगों को लगता है कि अरे ये तो पर्दे पे आ रहा है ये सब चीजें, बट ये मेरा जॉब है, और बहुत ही संजीदा और गंभीरता के साथ जितना एक डॉक्टर इंजीनियर आर्मी ऑफिसर अपने काम करते हैं, उसी शिद्दत के साथ उसी मेहनत के साथ उसी ईमानदारी के साथ हम लोग भी काम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपसे बहुत बेहतर हैं या ऐसा कुछ कुछ भी नहीं। हाँ बट कई बार होता है कि कैमरा देख करके लोगों को थोड़ा सा रोमांच फील होता है, मैं समझ सकता हूं कि वो अगर वैसा सोचते हैं तो बुरी बात नहीं है, लेकिन ये मेरा एक जॉब है, मैं बस एक जॉब कर रहा हूं, मुझसे बेहतर काम जो सरहद पे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो
1: बिल्कुल।
0: इंजीनियर हैं, वो या जो प्रोफेसर हैं टीचर हैं, वो मुझसे ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, उनका योगदान समाज में मुझसे कहीं ज्यादा है।
1: क्या बात है, बिल्कुल। सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत,
0: बिल्कुल सुनेंगे हम,
1: जरूर बताएं
0: हर घड़ी बदल रही है
1: रूप
0: रूप
1: जिंदगी,
0: जिंदगी की,
1: बिल्कुल सुनवाते हैं ये
0: है
1: गीत।
0: ना

0: अभी हम बात करते हैं गुलमोहर की।
1: वाह
0: गुलमोहर में आपने काम किया और उसमें मनोज बाजपेयी जी के साथ काम किया, शर्मिला टैगोर जी भी स्क्रीन पर थी आपके साथ। उससे जुड़े कुछ खास अनुभव किससे आप सुनाना
1: यस
0: चाहें,
1: यस यस
0: कैसा लगा उनके साथ काम करके और कैसा अनुभव रहा?
1: बिल्कुल। गुलमोहर मेरे फिल्मी करियर के लिए एक ऐसा है फिल्म जिसको मैं हमेशा याद रखूंगा। हालांकि जब ये स्क्रिप्ट मेरे

0: पास आया था तो मैंने मना ही कर दिया था।
1: अच्छा क्यों?
0: हाँ, क्योंकि कैरेक्टर मुझे सही नहीं लग रहा था यार, मैं इस तरह का कैरेक्टर तो नहीं करूंगा। बट हमारे जो डायरेक्टर हैं राहुल चिटेला, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि सुनो एक बार मुझसे मिलो, करना ना करना बात की बात है, पहले एक बार मिलो। मैं मिला और मुझे ये था कि अगर मैं जाऊंगा तो ये तो मना ही लेंगे,
1: जी
0: बट मैं बहुत जिद्दी रहूंगा अपने जिद पे कि भाई मुझे नहीं करना। और गया मैंड्रा में उनके ऑफिस, और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं करना चाह रहे हो। मैंने कहा सर मैं ये गेट कीपर इस तरह का कैरेक्टर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे एक डर भी था कि अगर मैं इस तरह करूंगा तो लोग मुझे इसी तरह के कैरेक्टर देते रहेंगे,
1: टाइप कास्ट कर
0: टाइप
1: देंगे.
0: कास्ट कर देंगे, और अपन बहुत अंदर भरा हुआ है मामला, तो फंसना नहीं है किसी एक कैरेक्टर में। उन्होंने कहा कि देख चंदन करना तो तुम्हें ही है ये कैरेक्टर, हाँ बोलो ना बोलो, अब तुम ये बताओ कि इस कैरेक्टर को और कैसे, तू क्या क्या नहीं चाहता है इसमें,
1: जी
0: और इसमें हम और क्या कर सकते हैं। एक नया लड़का उस फिल्म में, इतने दिग्गज लोग, मनोज वाजपेयी सर, शर्मिला टैगोर, तलत अजीज, अमोल पालेकर, वहां पे मेरे जैसा लड़का एक बोल रहा है कि सुनो मैं पूरे फिल्म में कभी कुछ जो कॉस्ट्यूम है ना वो वर्दी वाला गेट कीपर का वो नहीं पहनूंगा, पूरे फिल्म में कुछ काम नहीं करूंगा मैं, कुछ उठाना हुआ कुछ ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो करोगे क्या? मैंने कहा मैं पढ़ाई करूंगा, मैं एक ऐसा लड़का जो गांव देहात से आया है दिल्ली में, और इस शहर में वो इंग्लिश पढ़ना चाह रहा है, तो कुछ ऐसा कैरेक्टर रखते हैं। राहुल कमाल का, बहुत कमाल के इंसान, वो मेरी हर बात को मानते चले गए। उन्होंने बोला बस मैं यही चाह रहा हूँ, यही करो,
1: अच्छा.
0: और पता नहीं क्यों मेरी सारी बातें उन्होंने मान ली, और मैंने वो फिल्म किया, और मुझे अब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं गुलमोहर में हूँ, क्योंकि पता नहीं इतने दिग्गज लोग के साथ फिर दोबारा कब काम करूंगा।
1: बिल्कुल.
0: और जैसे शर्मिला मैम, मुझे एक और घटना याद आ रही है कि एक तो मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था इस एक्शन, मतलब एक ऐसा
1: हाँ, एक
0: सीन
1: सीन
0: था
1: में.
0: वहां पर
1: जी
0: कुछ झड़प था, आपसी झड़प, उसमें मेरा को एक्टर, उन्होंने मुझे पैर पे मार दिया था, तो मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, और मनोज सर को लगा कि मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ
1: अच्छा.
0: जबकि मैं दर्द के मारे तड़प रहा था।
1: जी
0: तो एक पॉइंट के बाद जब मैं अपना लाइंस नहीं दिया उनको, तो वो आए और उनको लगा सच में ये कुछ तकलीफ में है, दर्द में है, और आकर उन्होंने फिर मुझे उठाया और तुरंत एम्बुलेंस ला के मुझे भेजा गया हॉस्पिटल। बट मुझे याद है कि शर्मिला मैम का जब रैपअप हो रहा था लास्ट डे उनका, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि अरे चंदन को बुलाओ, चंदन को बुला, और उन्होंने केक कट करके वो एक छोटे से प्लेट में रख करके मेरा वेट कर रही थी कि
1: अच्छा.
0: मैं चंदन को खिलाऊंगी पहले, आई डोंट नो। और मुझे था कि भाई बड़े लोग हैं, अपना केक कट हो रहा है, मैं उधर कहीं स्पॉट बॉय लोग के साथ कहीं बैठ के अपना बैठा था, तो प्रोडक्शन भागा भागा, अरे सर आपको उधर ढूंढा जा रहा है। मैंने कहा मुझे कौन ढूंढ रहा भाई, शर्मिला मैम। तो जब मैं वहां गया तो मैम ने वो प्लेट मुझे दी, अपने हाथों से खिलाया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब
1: जिन्हें
0: ये,
1: पर्दे पे बचपन से
0: हाँ
1: देखा
0: जी
1: और वो आज अपने हाथ से आपको केक खिला रहे हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्या बात है.
0: मैंने क्या, मेरे दादाजी ने भी उनकी फिल्में देखी होंगी, मेरे पिताजी ने भी देखी होगी,
1: जी जी
0: और
1: बिल्कुल.
0: मैं उनके साथ काम किया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
1: और मनोज वाजपेयी जी के साथ भी आपने स्क्रीन
0: हाँ
1: शेयर
0: जी
1: किया
0: हाँ जी हाँ
1: है,
0: जी।
1: उनसे क्या कुछ, कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा
0: एक तो
1: किस्सा?
0: हाँ मुझे एक एक एक सीन याद आ रहा है कि मैं और शांति, एक सीन चल रहा था, वो किचन में थी और फिर वो मेरे पास आती हैं, तो मनोज सर सीन चल रहा था, मनोज सर वहीं पे चेयर लगा करके बाहर बैठ गए, उस दिन उनका सीन भी नहीं था, मुझे लगा यार क्यों बैठे हुए हैं ये, मैं नया एक्टर हूँ, मैं मतलब इनसिक्योर हो जाऊंगा, मैं मतलब मुझे डर लग रहा था उनको देख के कि
1: जी
0: मैं जिनको भाई जो इतने कमाल के एक्टर हैं उनके सामने मुझे एक्टिंग करने के लिए बोल रहा है, नहीं प्लीज आप चले जाओ, मेरे मन में यही चल रहा था।
1: अच्छा.
0: और किसी तरह वो सीन बहुत अच्छा हो गया, और फिर जब सीन खत्म हुआ तो सर आए मेरे पास, उन्होंने कहा तू कहाँ से है? मैंने कहा सर मैं तो बिहार से हूँ। अरे बहुत सही, या थिएटर करते हो? मैंने कहा जी सर। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और उन्होंने से पीठ पे एक बार ऐसे थपथपा के वो चले गए। फिर तो हमारा पहला उनसे जो हम कह सकते हैं मुलाकात इस तरह से हुआ मनोज सर के साथ मेरा जी।
1: यहां पर आपके पसंद का गीत कौन सा सुनवाना चाहेंगे आप?
0: इस वक्त मैं अपने पसंद का गाना सुनना चाहता हूं।

0: इतनी दिलचस्प बातें हो रही है आपके साथ।
1: हाँ जी,
0: और अब आते हैं हम चंपारण मटन करके
1: क्या बात।
0: एक शॉर्ट फिल्म थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: एफटीआई की फिल्म है ये,
0: हाँ
1: रंजन इसके डायरेक्टर हैं, और ये पहली ऐसी फिल्म है जो बज्जिका में बनी है। लोगों को लगता है कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी मैथिली है ना, लोगों को लगता है कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन ऐसा
0: जी।
1: नहीं है। भोजपुरी के अलावा भी कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। एक बड़ा खूबसूरत एक कहावत है बिहार में कि कोस कोस पे पानी बदले, तीन कोस पे बानी, है ना। मतलब
0: तीन
1: हर,
0: कोस पे भाषा
1: हाँ जी हाँ जी
0: बोली बदलती
1: हाँ
0: है।
1: जी, और बज्जिका मेरी मातृभाषा है। मेरी दादी, मेरे दादा, मेरे घर में आज भी जब अगर आपके सामने मेरा फोन आ जाए तो

0: मैं अपनी माता जी से, पिताजी से बज्जिका में ही बात करूंगा।
1: अच्छा
0: तो इस भाषा में अगर मुझे मिले फिल्म करने के लिए, तो मैं कैसे छोड़ सकता था। और ये FTI की फिल्म थी, बहुत प्यारी फिल्म इन लोगों ने बनाई। हालांकि मैं उस समय लगातार शूट चल रहा था, तो 15 दिन का एक गैप था। मैंने कहा इस बीच ये फिल्म हम शूट करेंगे, स्टूडेंट फिल्म है, मजे मजे में मैं चला गया था। चूंकि एक आदत होती है ना कि आप OTT के लिए काम कर रहे हो या फिल्म कर रहे हो, और अचानक से एक स्टूडेंट फिल्म करने के लिए चले जाते हो, जहां पे बहुत सारी चीज, ना आपको होटल अच्छा मिलेगा, ना वैनिटी मिलेगी
1: एक
0: कोई।
1: अलग तरह का अनुभव।
0: हाँ जी, बट मैं FTI इसलिए चला गया था इस फिल्म को करने के लिए। उसके दो कारण थे। पहला कि थोड़ा सा मुझे ना एक ब्रेक चाहिए था, जो मेन स्ट्रीम में काम कर रहा हूँ उसे मुझे एक ब्रेक चाहिए था, मुझे कुछ मजे करके आ जाएंगे बच्चों के साथ। दूसरा कारण ये कि FTI में मैंने बहुत पहले राइटिंग के लिए अप्लाई किया था। मुझे ये था कि एक्टिंग के लिए तो मेरा होगा नहीं, तो क्यों ना अपन राइटिंग में चले जाए।

0: मुझे एक ब्रेक चाहिए था, मुझे लगा कुछ मजे करके आ जाएंगे बच्चों के साथ। दूसरा कारण ये कि FTI में मैंने बहुत पहले राइटिंग के लिए अप्लाई किया था, मुझे ये था कि एक्टिंग के लिए तो मेरा होगा नहीं, तो क्यों ना अपन राइटिंग में चले जाएं, क्योंकि मैं उस समय दैनिक जागरण में जॉब करता था कंटेंट राइटर, तो मैं सोचा कि यहां पर भी राइटिंग करके यहां मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और फिर मैं पूरे दिन एक्टिंग वाले स्टूडेंट के साथ बैठा रहूंगा, उन्हीं के क्लास में बैठा रहूंगा, थोड़ी भगा देंगे क्लासरूम से, बैठूंगा वही एक्टिंग सीखता रहूंगा। बट उस समय मेरा वेटिंग एक रह गया राइटिंग में, और सच पूछी तो अच्छा ही हुआ क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने कुछ पैसे कमाए थे मुंबई आने के लिए, तो उधर खर्च हो जाते हैं, तो बेहतर है कि, तो ये दो कारण थे। और बड़ी अच्छी फिल्म उन लोगों ने बहुत प्यार से बनाया, सब बच्चे ही थे तो 6 या 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, बहुत शिद्दत से बहुत प्यार से हमने ये शूट किया और बहुत इम्प्रोवाइज भी किया हम लोगों ने। बट ऐसा हमने कुछ सोचा नहीं था कि ये
1: अच्छा
0: फिल्म स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो जाएगी और फाइनल राउंड से बाहर हो जाएगी। कहाँ, हम लोग गांव देहात में छोटे छोटे नाटक करते थे, ऑस्कर के लिए हमारी फिल्म नॉमिनेट हो जाएगी ये किसने सोचा था।
1: बिल्कुल।
0: बट ठीक है, विधाता को जो मंजूर है अपन उस पथ पे चल रहे हैं।
1: हाँ, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म गई है।
0: बिल्कुल,
1: इसके साथ ही आरजे बस्तर
0: हाँ
1: फिल्म,
0: जी, हाँ
1: उसके
0: जी,
1: बारे में कुछ बताए, वो भी मेरे ख्याल से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे गई है।
0: बिल्कुल,
1: एक तरफ ये पंचायत जो मासेस के लिए
0: हाँ
1: है, और
0: जी,
1: एक तरफ ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म, दोनों में काम करने का फर्क कितना है?
0: बहुत खूबसूरत सवाल है मैम ये। मैं इस तरह की फिल्में इसलिए करता हूं ना, इससे मुझे सुकून और बहुत शांति मिलती है,
1: अच्छा
0: बहुत प्यार मिलता है। आरजे बस्तर, मैं बस्तर में गया शूट करने के लिए, एकदम बिहर जंगल में चारों तरफ धान की खेती है, और बस्तर बहुत खूबसूरत जगह। जितना भी हम लोग बाहर सुनते हैं कि बस्तर में ये, बस्तर में पूरा बस्तर लाल रहता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई भय नहीं, बहुत ही सपोर्टिव लोग और बहुत प्यारे लोग। मैं पहली बार जीवन में आदिवासी भाइयों से मिला, इतना खातिरदारी करते हैं, ऐसा लगता है कि जान निकाल के रख देंगे आपके स्वागत के लिए।
1: अच्छा
0: तो जब आरजे बस्तर में शूट कर रहा था, तो एक तो कहानी बड़ी अच्छी, मनीष मानिकपुरी वहीं के रहने वाले हैं, बहुत कमाल के डायरेक्टर, वो आदिवासी लड़की की कहानी है जो रायपुर में काम करता है, दिहाड़ी मजदूर है, और उसको एक लड़की से प्यार है, और अपने प्यार के खातिर वो किस तरह से किस हद तक जाता है। और चूंकि आदिवासी में ना, वहाँ महिलाओं पुरुष में कोई ऐसा कुछ है नहीं, वो सब एक समान है, तो वहाँ की महिलाएं भी बहुत सशक्त होती हैं, सारे घर में जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वही लेती हैं। तो इस फिल्म में भी यही है, जो हमारे अपोजिट हैं उनका ये है। अच्छा, उनको भी आरजे बनना है
1: अच्छा
0: और मैं पीछे पीछे हूँ, उनका कंधा थामे हूँ कि आपको जो बनना है बनो, मैं आपके साथ हूँ क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है। और अपने मोहब्बत के लिए उसका जो कैरेक्टर है रमेश, वो हद से गुजरने के लिए तैयार है। बहुत बहुत प्यारी कहानी।
1: चलिए, यहां पर आपके पसंद का एक गीत हम सुनवा देंगे अपने श्रोताओं को।
0: हाँ जी, हाँ जी।

0: अभी हाल फिलहाल आपकी फिल्म आई गांधारी और आखिरी राइड,
1: हाँ जी, हाँ
0: ये कुछ
1: जी,
0: अलग हटके रोल है जो अब तक आपने किया है,
1: हाँ जी।
0: क्या अलग है, कैसा अनुभव रहा?
1: गांधारी तो मैंने इसलिए कर लिया था क्योंकि इसके डायरेक्टर देवाशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और मैंने इनको इनका काम जोरम में देख रखा है, और जैसा मैं चाहता था वैसी फिल्म बनी नहीं। और गांधारी करने का एकमात्र उद्देश्य ये भी है क्योंकि मैं थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहता था, है ना। तो मुझे लगा एक बेबी स्टेप है थोड़ा सा नेगेटिव वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए।
0: एक कदम है वो बस.
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए मैंने वो फिल्म करी। बट ठीक है, हमारा काम सिर्फ अभिनय करना होता है। जैसे ही हमारा रैप अप होता है, खत्म हो जाता है सब कुछ कट के बाद, है ना। बाकी ये फिल्म एडिट टेबल पे फिर से फाइनल बनती है, और बहुत सारे एक्सटर्नल एलिमेंट भी होते हैं जो फिल्म को प्रभावित करते हैं। मेरे हिसाब से गांधारी के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। और आखिरी राइड वो भी बहुत मेरे दिल के करीब वाली फिल्म है, इसलिए क्योंकि कहानी बड़ी अच्छी है इसकी, और अनुराग कश्यप सर ने इनको इस फिल्म को प्रेजेंट किया है। और मुझे याद है कि ये फिल्म भी, मैं कहीं और, मेरा शूट था पहाड़ पे किसी और दूसरे फिल्म को लेकर के, लेकिन डेट नहीं मैनेज हो रहा था, मतलब क्लैश हो रहा है डेट, तो मैंने उस फिल्म को छोड़ के आखिरी राइड करना पसंद किया जिसमें बिल्कुल भी बजट नहीं था। बट मेरे लिए कहानी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं एक ऐसे स्टेज में हूं जहां पे अपने पसंद का काम कर सकता हूं। मेरे लिए अब कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छी कहानी इंपॉर्टेंट है।
0: अपनी पसंद रख सकते हैं अब आप सामने.
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बिल्कुल. और ऐसा कौन सा किरदार है जो आप के मन में है कि ये तो मुझे करना है, इस तरह का अगर कुछ किरदार है चाहते हैं? नेगेटिव शेड तो आपने कहा कि नेगेटिव, कोई ऐसा आइडल कि इस तरह का किरदार तो मुझे पर्दे पे उतारना है जब कभी मौका मिले.
1: बिल्कुल। ऐसे तो बतौर अभिनेता अभी तो, मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी तो बहुत नया हूं, अभी तो बहुत सारे कैरेक्टर करने हैं, बहुत सारे चीजों को जानना है, समझना है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर ना एक बहुत गंभीर अभिनेता है जो आना बाकी है।
0: सीरियस रोल.
1: हाँ जी, हाँ जी। चूंकि कॉमेडी हो या बाकी चीजें हो वो सब तो ठीक है, बट जो मेरा कोर एक्टर है वो एक बहुत ही गंभीर है, बहुत संजीदा है। जैसे अगर आप समझना चाहें तो मैं एक उदाहरण दूं कि अगर आप हीट देख रहे हो, रॉबर्ट डिनर और अल पचिनो की फिल्म है जिसमें दोनों एक साथ बैठते हैं, इसमें चोर और पुलिस की कहानी है, और दोनों जब एक टेबल पे बैठते हैं,
0: जी.
1: और वो मेरे ख्याल से 10-11 मिनट का वो सीन है, मैं कई बार उस गंभीरता को महसूस करता हूं कि मुझे भी कुछ इस तरह कैरेक्टर करना है अपने इस करियर में। इतनी ही स्क्रिप्ट को जज्ब करके, एक एक

0: लाइन को महसूस करके उस गंभीरता के साथ मैं अपने कैरेक्टर को करूं, मैं ऐसा चाहता हूं।
1: हम भी चाहते हैं कि आपके मनपसंद का किरदार, कैरेक्टर, रोल आपको मिले, संजीदा रोल भी मिले और हम उसमें भी आपको देखें।
0: बिल्कुल, और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ऑडियंस को, अपने दर्शकों को हमेशा सरप्राइज करता रहूंगा।
1: बिल्कुल। जाते जाते हम एक सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक छोटे जगह से आए हैं और यहाँ पर आके आपने अपना मकाम बनाया है। तो जो उभरते कलाकार आते हैं, दो तरह के होते हैं। कई बार प्लान ए और प्लान बी लेकर चलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, अभिनय में ट्राई कर रहे हैं, ये नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम ये भी कर लेंगे, इसको भी ऑप्शन लेके चलते हैं। कई बार ऐसा होता है नहीं, पूरी शिद्दत से आते हैं लेकिन थक हार भी जाते हैं, वापस लौट भी जाते हैं। तो आपके ख्याल से आप क्या सलाह देना चाहते हैं उनको, यहां पर टिके रहना, अपना मकाम बनाना, क्या कहना चाहेंगे?
0: सबसे पहली बात कि दूसरों की बात आप ना सुने। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपके अंदर एक बड़ा कमाल का आर्टिस्ट है, आप मुंबई चले जाओ या इस फील्ड में जाओ, मत सुनो किसी की बात। आप अपने आप से पूछो, क्या वो एक्स फैक्टर है आपके पास? क्या वो हुक पॉइंट है आपके पास जिसकी वजह से आप मुंबई में रह सकते हो या इस फील्ड में पूरी जिंदगी अपने आप को दे सकते हो? ये बहुत जरूरी है खुद से पूछना। दूसरे की बातों पे बिल्कुल भी आप मत जाइए। एक बात और कि कभी भी ग्लैमर और मुंबई में ये पैसा, शोहरत, नाम, ये सब देखकर मत आइए। ये आर्ट है। अगर अपने आप को इस आर्ट में समर्पित कर सकते हो तो आओ। बहुत सारे जो हमारे नौजवान दोस्त हैं वो गलती यही करते हैं, उनको चाहिए ग्लैमर, उनको चाहिए बड़ी बड़ी चीजें, बट वो आर्ट से कुछ लेना देना है ही नहीं, और वो अपने जीवन का बहुत ही गोल्डन टाइम बर्बाद कर देते हैं मुंबई में। एक ऐसा ये एज है, ऐसा समय जिस वक्त आपको आपके घर वालों के लिए देना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, बजाय आप यहां पे अपना समय एक तरह से बर्बाद ही करें, क्योंकि आपने देखा नहीं खुद को, जाना समझा नहीं,
1: जी
0: है ना। और मुझे एक बात और आप लोगों से कहनी है कि दोस्त, सफलता असफलता कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है खुश रहना। और मुझे ये लगता है कि देख, जिंदगी एक ही मिली है। जिंदगी है तो ये सारे गोल हैं, सारे एम हैं, आपके जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो प्लीज अपने आप को जानिए, समझिए, उस डायरेक्शन में काम कीजिए। अगर सच में आपके अंदर ये काबिलियत है कि कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज आप मुंबई या जहां कहीं भी हो इस फील्ड में आ जाइए, क्योंकि अच्छे आर्टिस्ट की बड़ी भारी कमी है मुंबई में।
1: बिल्कुल
0: आपका आना बहुत जरूरी है, इस इंडस्ट्री के लिए जरूरी है और इस समाज के लिए बहुत जरूरी है कि अच्छे आर्टिस्ट आए, चाहे वो किसी भी फील्ड के आर्टिस्ट हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, पेंटर हो, गीतकार हो, संगीतकार हो, जो भी हो।
1: जी।
0: अगर आप कमाल के हैं तो इस इंडस्ट्री में आपकी बहुत जरूरत है।
1: ये बहुत ही सुंदर सलाह दी आपने। और चंदन जी, आपने अपने एक्टिंग का सफर तो हमारे साथ साझा किया ही, साथ ही निजी अनुभव और बड़ी ईमानदारी से वो छोटी छोटी बातें हमारे साथ शेयर की है, जो हमें बहुत अच्छी लगी है। और पूरी उम्मीद है कि जितने लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें एक इंस्पिरेशन मिली है और उन्हें बहुत ही वो प्यारी प्यारी सलाह मिली है आपकी
0: जी
1: तरफ से। आपके जो भी भविष्य के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारी सी बातचीत के लिए।
0: शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा हूं,
1: क्या कहना
0: और
1: चाहेंगे?
0: यहां बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मुझे विविध भारती के ऑफिस में बुलाया है। और यहां आना किसी सपने से कम नहीं है मेरे लिए। ऐसा लगता है कि बरसों का एक देखा हुआ, एक बालमन में देखा हुआ सपना आज मेरा पूरा हुआ है। मैं बहुत खुश हूं आप लोगों से मिलके, विविध भारती के इन दीवारों को देख करके, इन माइक, ये लाइट, ये सब कुछ देख करके। आपको शायद यकीन ना हो कि जब 2:30 बजे मेरा स्कूल छूटता था तो सीधे मैं घर आता था, अपना रेडियो सेट उठाता था, सखी सहेली सुनता था, उसके बाद पिटारा, और फिर रात्रि सेवा में मैं जब जयमाला से शुरू करता था तो गुलदस्ता होते हुए फिर गजल वाले प्रोग्राम, और फिर पता नहीं कब मेरी आंखें लग जाती थीं और कभी मेरी मम्मी, कभी मेरे दादा, कभी मेरी बहन आकर के बंद करते थे रेडियो, या कई बार सुबह तक वो रेडियो चलता रहता था।
1: जी
0: मुझे याद है कि मैं रेडियो से इस कदर स्नेह रखता था बचपन में कि मेरे गली में, आंगन के बगल में गली था, अमरुद का पेड़ हुआ करता था, उसमें मैं कई बार उस अमरूद के पेड़ पे अपने
1: बिल्कुल
0: ट्रांजिस्टर को लेकर

0: कि चढ़ जाता था और ऊपर ही कहीं पेड़ के तने में बांध करके रेडियो चल रहा होता था और मैं अमरूद वही नमक लेके खाता रहता था,
1: क्या बात
0: है
1: है।
0: ना। तो रेडियो इस तरह से मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आज भी सूट पे जाता हूँ या किचन में होता हूँ या घर में कहीं भी, रेडियो मेरे घर के किसी न किसी एक कोने में बज रहा होता है। रेडियो मुझे लगता है मेरा बचपन का दोस्त है,
1: बिल्कुल
0: एक ऐसा दोस्त जो हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल है।
1: बिल्कुल, हमेशा साथी बनकर,
0: बिल्कुल,
1: क्या बात
0: रेडियो
1: है,
0: सिर्फ इस देश की धड़कन ही नहीं है, ये मेरा भी धड़कन है।
1: क्या बात है।
0: यस,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।

ये थी जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। आपने सुना दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ।

0: काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो राइट। तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुनेंगे छाया गीत बस कुछ ही लम्हों बाद।

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। हमारी आंखों में कुछ ख्वाब बेकरार हैं, तेरे फिराक के मौसम सोगवार हैं। न जाने किसकी नजर लग गई बहारों को, चमन के फूल सारे दाखदार हैं। वो एक शख्स जो आबाद था कभी दिल में, उसी के नक्श वहां आश्कार हैं। हमें तो रास ना आई कभी रस्म उल्फत, अपने आप से हम भी शर्मसार हैं। ये उम्र भी अजब उम्र रायगा निकली, हम अपने ख्वाब लिए तार तार हैं। हमें खबर है कि वो बाबे उल्फत बंद हुआ, मगर वो जख्म निहा दिल में बरकरार हैं। किसी के नाम से वाबस्ता थी मताए हयात, उसका नाम लब पे मगर बे इख्तियार है।
1: वो जब याद आए बहुत

मैंने सब कागज पे लिख दिया था बहुत पहले, दिल का हर राज कह दिया था बहुत पहले। अब जो पूछोगे तो क्या बाकी है कहने को, जो कहना था कह दिया था बहुत पहले। मेरे जख्मों की गहराई ना पूछो मुझसे, मैंने हर दर्द को अपना लिया था बहुत पहले। तुमको फुर्सत ही ना थी हाले दिल सुनने की, हमने सब कुछ तो कह दिया था बहुत पहले। जिसको तुम आज भी एक ख्वाब समझते हो, वो हकीकत थी, हमने देख लिया था बहुत पहले। हमने हर रंज को किस्मत का लिखा मान लिया था, तुमको खोने का भी डर था बहुत पहले। तुमने लौट आने का वादा तो किया था हमसे, दिल ने मगर अंजाम समझ लिया था बहुत पहले।

0: चुकी ना जाने तुम कब आओगे।
1: हम टूटे ये दिल भी टूटा, चलो जाने दो, क्या सुनोगे क्या कुरेदोगे, जाने दो। दर्द की बात अगर छेड़ी तो बिखर जाएंगे, जख्म सोए हैं उन्हें मत छेड़ो, जाने दो। हमने माना कि बहुत रंज दिया है तुमने, अब ना शिकवे ना गिले, बस छोड़ो जाने दो। दिल ने बरसों जिसे आंखों में सजाया था, वो ख्वाब था अब ख्वाब समझो, जाने दो। जिंदगी फिर भी गुजर जाएगी खामोशी से, हम अगर टूट गए हैं तो गए हैं, जाने दो। जिसको अपना कहा वो अपना था ही कब, अब ये किस्सा भी हुआ पुराना, चलो

आके तुझ बिन इस तरह ऐ दोस्त घबराता हूँ मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूँ मैं। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। ऐन से फकत इश्क नहीं अजाब भी होता है, दिल के जख्मों का कोई हिसाब भी होता है। दिल के बहलाने को काफी नहीं वादों की रोशनी, चश्मे तर में आलम इस्तेराब भी होता है। हर ताल्लुक को समझ लेना मोहब्बत तो नहीं, कुछ ताल्लुक में फरीब बेहिसाब भी होता है। इश्क में हर शख्स को मिलती नहीं मंजिल, राहे उल्फत में दश्ते सराब भी होता है। इश्क इंसान को फकत आबाद ही नहीं करता, इसमें आदमी का खाना खराब भी होता है।

अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार। विविध भारती से छाया गीत कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राघवेंद्र सिंह ने।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

तराने नए पुराने इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। पहला जो गीत है ये धुंध फिल्म का गाना महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहां रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिनपॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: ये है रिफ्यूजी फिल्म का गाना, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार अनु मलिक।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: सोनू निगम की आवाज में समीर का लिखा हुआ ये गाना, अनु मलिक का संगीत, फिल्म सोल्जर।

तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें, समीर का लिखा हुआ गाना, नदीम श्रवण का संगीत, फिल्म का नाम है राजा।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।

0: आई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। श्रीमान सत्यवादी, ये उस फिल्म का नाम है जिसका गीत अब आप सुनेंगे मुकेश की आवाज में। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई दत्ताराम ने।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देश हित और जनहित में अपने काम

0: करने का प्रयास नहीं किया।
1: शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रांची में एक छात्र की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेगी और संस्थान में दिशा निर्देशों के पालन का आकलन करेगी। आयुष मंत्रालय ने त्वचा संबंधी बीमारियों के उपचार और प्रबंधन के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के साथ योग को शामिल करते हुए मानक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य आयुष की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में उपचार की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित चिकित्सा को बढ़ावा देना है। UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पहले दिन किदाम्बी श्रीकांत ने फ्रांस के अर्नोट मर्कले को हराकर पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने जापान की नातुस की निदेरा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने। वारिस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह।

अनजान का लिखा और आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म का नाम जमीन आसमान।

वक्त की दीवार, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की है। गीतकार अनजान, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

तराने नए पुराने इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए स्वामी फिल्म का गाना। आवाज़ येसुदास की है, अमित खन्ना के बोल हैं और संगीत राजेश रोशन का।

0: आज का तराने नए पुराने ये कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: तराने नए पुराने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

झरोखा के ठीक बाद यानी कि 6:35 पर कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं भाग 13। आमंत्रित कलाकार हैं गायक एवं संगीतकार शेखर सेन। 7:00 कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस ये कार्यक्रम होगा। 8:00 हवा महल में सुनिए नाटिका रिश्ते प्यार के। इसके लेखक हैं विष्णु भाटिया और निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। 9:00 कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार ये केंद्रित होगा अभिनेता अशोक कुमार पर। 10:00 का समय छाया गीत कार्यक्रम का। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11:00 कार्यक्रम होगा रंग तरंग। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। और अब आपको बताते हैं कल यानी बुधवार 14 अक्टूबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 6:05 पर कार्यक्रम होगा वंदनवार और 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 341। 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला राग समय चक्र भाग 1। कलाकार हैं गायिका मंजरी आलेगांवकर। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। सुबह 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हमें राही प्यार के और 8:15 पर कार्यक्रम होगा त्रिवेणी। आठ बजकर 30 पर चित्रलोक कार्यक्रम का प्रसारण होगा और सुबह 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार सुनिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया पर ये केंद्रित कार्यक्रम होगा। सुबह 10:00 कार्यक्रम पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे। 11:00 रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल और 1:00 कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। दिन में 2:00 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी और 2:30 पर सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम होगा। दिन में 3:00 का समय सखी सहेली कार्यक्रम का है और शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान सुनिए फिल्म लेखक निर्देशक डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग। शाम 5:00 कार्यक्रम होगा छाया गीत।

शाम 5:30 पर तराने नए पुराने ये कार्यक्रम होगा और 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम, शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण, शाम 7:00 जयमाला कार्यक्रम, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग ये कार्यक्रम आप सुनेंगे और रात 8:00 का समय हवा महल कार्यक्रम का है। सुनिए प्रहसन शीर्षक की खोज, इसके लेखक हैं देवराज दिनेश और निर्देशक हैं मुख्तार अहमद। रात 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम होगा, 9:00 कार्यक्रम होगा आपके लिए और रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार जो केंद्रित होगा कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया पर। रात 10:00 का समय है छाया गीत कार्यक्रम का, 10:30 पर ढलती जाए रात ये कार्यक्रम और रात 11:00 रंग तरंग कार्यक्रम। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी कल यानी बुधवार 14 अक्टूबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या रंजन। इस कार्यक्रम में सुनिए अवतार फिल्म का गाना। आशा भोसले, महेंद्र कपूर और नरेंद्र चंचल की आवाजों में इस गीत को लिखा आनंद बख्शी।

अवतार फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोंसले, महेंद्र कपूर और नरेंद्र चंचल की आवाजों में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज का संध्या रंजन ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।

0: श्री पंडित शेखर सेन। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आज सुनते हैं श्रृंखला की 13वीं और अंतिम कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं, इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज की इस कड़ी में हम चाहते हैं शेखर दादा, आप अपनी रचना संसार के कुछ मोती हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। अपनी कुछ रचना का जिक्र कीजिए और कोई रचना आप हमारे श्रोताओं को सुनाइए।
2: मेरा ये बड़ा सौभाग्य रहा है कि मुझे HMV ने साइन तो किया था गजल गाने के लिए, पर मेरी एक भी गजल रिकॉर्ड नहीं हुई। और मेरे करीब 280 एल्बम्स भजन और इस तरह के, रामायण और भगवद गीता इस तरह के 280 एल्बम्स हो चुके हैं। और अमूमन अधिकांश गायक गायिकाओं ने मेरे लिए भजन गाए हैं, पर सबसे अधिक जो काम हुआ है वो मेरा अनुराधा पोडवाल जी के साथ, 100 से भी अधिक CDs उनके साथ मैंने किए हैं। नितिन मुकेश जी के साथ 5 CDs का काम किया है। उदित नारायण जी, सोनू निगम जी, अलका याग्निक जी, ऐसे बहुत सारे गायक गायिकाओं के साथ मैंने किया है। और मैं दरअसल ये चाहता था कि जो मेरे मन का हो और जो मैं अपनी मर्जी से कर सकूं वही काम मैं करूं
1: जी।
2: तो उसमें मुझे लगा कि अगर मैं प्राइवेट एल्बम करूंगा वहीं पर वो संभावना बन सकती है कि मैं अपने मन की रचनाएं रिकॉर्ड करूं, कंपोज करूं। क्योंकि जब आप फिल्मों के लिए काम करते हैं तो आपको दूसरे के ऑर्डर पे काम करना पड़ता है
1: जी, जी।
2: कहानी ये है, डायरेक्टर को पसंद नहीं आया, प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आया, ये सब। तो फिल्म का भूत तो मेरा पहले एक साल में ही उतर गया। मैंने कहा ये मेरे मतलब की लाइन नहीं है, बहुत अच्छी लाइन है, पर मुझे लगा कि मैं प्राइवेट एल्बम्स का काम करूं। तो वो मेरे जीवन का एक बड़ा अद्भुत अनुभव रहा। और मैं आपको आज सुनाना चाह रहा हूं मीराबाई का एक भजन
1: जी,
2: जो मीरा नाम के एल्बम से हमने रिलीज भी किया था, और वो गाया था अनुराधा पोडवाल जी ने
1: जी।
2: और उसमें जो स्वर रचना थी वो कलावती और जनसनमोहिनी के आसपास मैंने रखी थी। दरअसल ये एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब आप रचना बनाते हैं ना तब राग ध्यान में नहीं रहता, क्योंकि राग जो होता है स्वर प्रधान होता है। भजन या गजल या गीत वो शब्द प्रधान होता है, तो जहां शब्द प्रधान होगा वहां पर स्वर थोड़े पीछे आ जाते हैं। ये अनुराधा जी की आवाज में भी आप सुनाइएगा, पर मैं पहले गाता हूँ क्योंकि मेरी बहुत प्रिय रचना है
1: जी। जी जरूर सुनाया।

श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्म

0: इस रचना के बाद शेखर दादा बताइए हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या सुनवा रहे हैं।
1: हमारे यहाँ माँ के भजन जो है वो थोड़े जयकारा
0: कीर्तन के
1: शेरा वाली दा और उस तरह के कि माँ तू आजा तेरे लिए हलवा बनाया है या माँ ने टेलीफोन किया है, इस तरह के गाने होते हैं। पर इसके बिल्कुल विपरीत बंगाल में जो श्यामा संगीत की परंपरा है उसमें माँ के लिए आप वैसे ही गाने गाते हैं जैसे आप अपनी माँ को गाकर सुना रहे हैं।
0: क्या बात है।
1: और ये भी एक बड़ी विलक्षण बात है कि केवल केवल और केवल भारतीय संस्कृति में ही देवी का रूप पूजा जाता है और माना जाता है। इसके अलावा पूरे संसार की किसी भी संस्कृति या किसी भी धर्म या किसी भी सभ्यता में माँ को वो स्थान नहीं मिला है जो हमारे यहाँ है। तो एक बार मुझे कहा गया कि भाई आप बनाइए। मैंने कहा भाई देखिए आपके यहाँ जिस तरह के भजन बनते हैं इस समय उस तरह के भजन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर अगर आप कहें कि जैसे बंगला में बनते हैं उस ऐसा कुछ बनाइए तो मैंने कहा उसका मैं प्रयास कर सकता हूँ। तो उस समय सारे जो भजन बने वो बहुत ही अद्भुत बने माँ के लिए
0: जी।
1: तो मैं आपको उसमें से एक सुनाता हूँ। और ये मुझे केवल एक दिन में मैंने 10 भजन लिखे स्वरबद्ध किए और अगले दिन उसको रिकॉर्ड कर दिया।
0: क्या बात है।
1: और ये शक्ति नाम से या माँ काली के भजन के नाम से रिलीज हुआ। इसमें मेरा भाव था कि मैं माँ की अगर अर्चना करता हूँ मैं माँ के आंखों में कितना स्थान रखता हूँ, बहुत थोड़ी
0: जी,
1: सी जगह मेरी होगी
0: बड़ी
1: कि सभी तो माँ के भक्त हैं, सभी माँ के संतानें हैं। तो मैंने उसमें लिखा कि जैसे नैनों में ज्योति, आंखों में जो ज्योति होती बहुत छोटे से हिस्से में होती है,
0: जी,
1: सीप में मोती, बहुत बड़ा सीप होता है मोती छोटे से स्थान पर, वैसे माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती।
0: क्या बात,
1: ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे मालूम है कि और भी संतानें हैं उनको भी आप स्थान दीजिए पर थोड़ी सी जगह मुझे दीजिए, ये भाव है उसमें।
0: जी सुनाए।

0: वाह, बहुत अद्भुत। शताब्दी की भक्ति रचनाएं, इसके आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं और आज की ये अंतिम कड़ी है। शेखर दादा, हम आपसे एक वादा चाहते हैं कि आप वादा कीजिए कि अगली बार जब आएंगे विविध भारती के स्टूडियो में तो अपनी रचनाओं के बारे में बातें करेंगे, अपने रचना संसार को आप यहाँ पर समाहित करेंगे।
1: सबसे पहले तो मेरा बहुत सौभाग्य कि विविध भारती के संगीत सरिता कार्यक्रम के लिए, जो मैं और मेरी पत्नी नित्य सुनते हैं, तो हमारे लिए बड़ा ही हमारा प्रिय कार्यक्रम है। और सुबह उठ करके मेरी पत्नी विविध भारती हर दिन लगा देती हैं।
0: क्या बात है।
1: और सबसे अच्छी बात यह है कि हर बार कुछ न कुछ मिलता है
0: जी जी,
1: जो दूसरे किसी कार्यक्रम में नहीं हो पाता, वो संगीत सरिता में मुझे हमेशा लगता है कि हमें कुछ मिल रहा है। तो अपने श्रोताओं को भी मैं कहूंगा कि आप और अधिक गंभीरता से संगीत सरिता सुनिए, क्योंकि इतने सारे लोगों को लेकर विविध भारती आता है और ये बहुत बड़ा योगदान है। हम अपने संस्कृति को जाने, अपनी सभ्यता को जाने, अपने महान कलाकारों को जाने, तो ये एक बहुत बड़ा हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है। तो आप सभी श्रोताओं को हृदय से प्रणाम कर रहा हूं और विविध भारती ने ये अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत आभार। विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और तबले पर साथ दिया आशीष बिस्वास जी ने, आपने बहुत ही कुशलता से संगत की और हम सबको बहुत अच्छा लगा आप दोनों यहां पर आए। और हारमोनियम पर संगत स्वयं शेखर सेन दादा ने किया। और अब हम सभी श्रोताओं से ले रहे हैं अनुमति, आप सभी को नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, आज हमने सुनी इस श्रृंखला की 13वीं और अंतिम कड़ी। आमंत्रित कलाकार, गायक, संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन, तबला संगत आशीष बिस्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। संगीत सरिता की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा हमारे फेसबुक पेज के जरिए www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर अपने कमेंट से हमें अपने विचार साझा कीजिएगा। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

फौजी साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है आज के इस जयमाला कार्यक्रम में। मैं हूं मंजू द्विवेदी, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। पहले जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो नया दौर फिल्म का गाना है। मोहम्मद रफ़ी बलबीर की आवाज़ें, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है ओपी नैयर का।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जयमाला कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं साजन बिना सुहागन। इस फिल्म का गाना आवाज मोहम्मद रफी की, बोल इंदिवर के संगीत उषा खन्ना का।

0: इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है परवरिश फिल्म का गाना, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेला।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। लीजिए अब सुनिए मृग तृष्णा, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, शंभू सेन का लिखा हुआ गाना है और इन्हीं का संगीतबद्ध किया है।

गानों को लेकर। अब आपको सुनवाते हैं लहू के दो रंग इस फिल्म का गाना, आवाज किशोर कुमार की, फारूक कैसर के बोल, संगीत है बप्पी लाहिरी का।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
5: हाँ जी हाँ।
4: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
5: नहीं नहीं, अभी नहीं।
4: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
5: है ना, बोलो, बोलो।
4: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
6: कुछ लिखा,
4: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
7: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है जयमाला। लीजिए अब सुनिए जानी दुश्मन, इस फिल्म का गाना आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों ने इस गीत को गाया है, वर्मा मलिक ने लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम पॉप एक्सप्रेस। पहला गीत सुनिधि चौहान की आवाज में, नितिन रायकवार के बोल, ललित का संगीत, एल्बम सुनिधि सी।

पॉप एक्सप्रेस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए बी प्राक और सुकृति कक्कड़ की आवाजों में प्रेम की तेनू इस एल्बम का गाना कुणाल वर्मा के बोल हैं।

देसी कलाकार। इस एल्बम का गाना सुनिए, यो यो हनी सिंह की आवाज में, लिल गोलू और यो यो हनी सिंह का लिखा हुआ गाना, यो यो हनी सिंह का संगीत।

अगला और अंतिम गाना स्वीताज ब्रार और योयो हनी सिंह की आवाजें, एल्बम छलांग, संगीत योयो हनी सिंह का।

0: श्रोताओं, आइए हवा महल में आज सुनी जाए नाटिका रिश्ते प्यार के। इसके लेखक हैं विष्णु भाटिया और निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर।
1: ज्योति की माँ, ए ज्योति की माँ,
2: अरे क्या बात है? हाँ, ये इस तरह गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: आके आप,
2: अरे रो क्यों रही हो?
3: मैं क्या कहूँ, ये चिट्ठी पढ़ लो।
2: किसकी चिट्ठी है ये?
3: तुम्हारी लाडली बेटी की।
2: ज्योति की चिट्ठी? देखो, पूज्य डैडी, मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए, ये घर छोड़ रही हूँ, श्याम के पास जा रही हूँ, हम विवाह कर रहे हैं, चाहती थी आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाता मगर माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं। खैर, अब जा रही हूँ, आपसे प्रार्थना है कि मेरी गलतियों को भुलाकर क्षमा करें, आपकी बेटी ज्योति।
3: अब तो आ गया ना विश्वास। मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि मुझे ये लड़का एक आंख नहीं पाता, ज्योति के साथ उसका मेल मिलाप ठीक नहीं।

0: हमेशा उसके गुणगान करते रहे। आज उस चित्रकार ने हमारे मुंह पर कालिक पोती है कालिक।
1: हाँ, श्याम को इतना ऊंचा आदमी नहीं समझता था। अगर वो मुझसे मेरी ज्योति का हाथ मांगता तो मैं हंसी खुशी ज्योति का विवाह उसके साथ कर देता।
0: मैं तो उस लिठले के साथ अपनी फूल सी बच्ची का विवाह कभी ना करती। उसके पास रखा क्या है, न पहनने का ढंग न बोलने की तमीज।
1: नहीं ज्योति की, मैं ऐसी बात नहीं है। मैं श्याम के बारे में सब कुछ जानता हूँ। उसके जीवन का उद्देश्य है सादा जीवन, उच्च विचार। वो अपने बाप के पैसे को छूना तक नहीं चाहता। अरे अपने पिता से उसकी लड़ाई उसूलों और आदर्शों की है।
0: वो इस तरह छुपकर खत लेकर क्यों गई? मुझसे न सही, तुमसे तो अपने मन की बात कह सकती थी।
1: कौन? ज्योति इधर आ बेटी, इधर आ।
2: डैडी, डैडी।
0: कर्मकोटी, तुझे शर्म नहीं आई? इस घर की इज्जत नीलाम करने गई थी? अरी वो लफंगा, जो अपने माँ बाप का सगा न हुआ तेरा क्या होगा?
1: तू चुप भी रहेगी? गलती इंसान से होती है। वैसे ज्योति अब बच्ची नहीं है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। वो अपना बुरा भला खुद सोच सकती है।
0: चुप बेटी, माँ को अपना दुश्मन समझे? ऐसी लड़के के होने से तो बे औलाद भली थी।
2: मम्मी, अगर ऐसी बात थी तो तुमने पैदा होते मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? ये खाओ ये ना खाओ, ये करो ये ना करो, यू उठो यू बैठो, जैसे मैं बच्ची हूँ, जैसे मुझे जीने का शौर ही नहीं हो।
0: देखो देखो तो छोकरी की जबान कैंची की तरह चल रही है, कैंची की तरह। शौर इतना है तो घर की इज्जत नीलाम करने क्यों गई थी?
2: घर की इज्जत? घर की इज्जत क्या होती मम्मी? माँ और बाप 24 घंटे अपने कामों में व्यस्त रहे, बेटी की क्या इच्छाएं हैं तमन्नाएं हैं ये जानने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं। तो बेटी क्या करे, घर की चार दीवारी से अपना सर फोड़े, दिल की बात दीवारों से करे?
0: नहीं नहीं, घर छोड़कर निकम्मे के साथ भाग जाए, माँ बाप के मुंह पर काले पोते हैं।
1: ज्योति की माँ, चुप भी कर, ज्योति से बात करने दो मुझे। जाओ मेरे लिए एक चाय का कप ले।
0: हाँ हाँ, मैं तुम दोनों के बीच से चली जाती हूँ।
1: हाँ ज्योति बेटी, मुझे बता तू क्या चाहती है। मैं तेरे दिल की भावनाओं को समझ सकता हूँ।
2: पापा, कहना क्या है, मेरा फैसला तो आप जानते हैं।
1: मैं जानता हूँ बेटी, तू शाम से विवाह करना चाहती है ना?
2: हाँ पापा।
1: पर बेटी, इस संबंध के नतीजे के बारे में भी तूने सोचा होगा।
2: नतीजों से आपका मतलब? मैं समझी नहीं पापा।
1: यही कि विवाह के बाद एक घर की जरूरत होती है, और घर चलाने के लिए एक रेगुलर इनकम। क्या तू शाम की तरह सादा जीवन जी सकेगी?
2: मैंने शाम को करीब से देखा है पापा, उसे समझा है। मैं हर हाल में उसके साथ खुश रहूंगी, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगी। आपने कभी शाम को समझने की कोशिश ही नहीं की पापा। शाम की तरह दुनिया में कितने लोग हैं जो औरों की सोचते हैं। वो हर शाम गरीबों की बस्ती में जाके उनके दुख दर्द सुनता है, वो उनके गम आंसुओं पीड़ा वेदना में हिस्सा बटाता है, उनके बच्चों को पढ़ाता है, उनके लिए खुशियां जुटाता है। अपने लिए तो सब जीते हैं पापा, औरों के लिए जीने वाले मुश्किल से मिलते हैं।
1: शाम को तो इतना जानती है, फिर भी तूने बुजदिलों की तरह भागने की जल्दबाजी क्यों की?
2: मैं डरती थी पापा, मैं डरती थी कि।
1: डरती थी किससे?
2: मुझे मम्मी का डर था, मुझे डर था वो कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगी।
1: हाँ, वो जल्दी से रिश्ते के लिए तैयार नहीं होती, वो पुराने विचारों की एक सीधी सादी औरत है। लेकिन वो भी इंसान है, प्यार से उसे समझाती तो वो भी मान जाती। आखिर उसने तुझे जन्म दिया है, तेरा सुख ही उसके लिए सबसे बड़ी चीज है।
2: पापा, उनकी बातें सुनने के बाद भी आप कहते हैं कि वो मान जाती? शाम के लिए उनके दिल में जो नफरत है पापा, आप।
1: शाम के लिए उसके दिल में नफरत नहीं, ईर्ष्या है। उसकी लाडली बेटी को उससे भी ज्यादा प्यार करे, ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। फिर तूने शाम के बारे में अपनी माँ को कभी हमराज भी नहीं बनाया, इसीलिए उसे लगा कि ये लड़का उसकी इकलौती बेटी को उससे दूर कर रहा है। वो अनजाने में शाम से चिढ़ गई। अगर तू अपनी माँ से शाम को मांगती तो वो तेरी खुशी के लिए खुश शाम की खुशामद करती। बेटा,

0: वो गर्म मिजाज की जरूर है, पर तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। तूने उसे समझने में गलती की है बेटा।
1: हो सकता है पापा, हो सकता है मैंने ही मम्मी को समझने में गलती की हो।
0: तूने मुझे भी गलत समझा है
1: पापा। ये आप क्या कहती हैं?
0: इस तरह घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? तूने मुझे इस संबंध में कहा होता।
1: मैंने कहा ना, मैं डरती थी पापा। मैंने सोचा कहीं माँ के दबाव में आके आप इनकार कर बैठे तो।
0: तू बिल्कुल भोली है। तूने ना अपनी माँ को समझा और ना अपने पिता को पहचाना। और बेटी मैं तो कहूंगा कि तूने श्याम को भी गलत समझा है।
1: पापा,
0: तू जब घर छोड़कर श्याम के पास गई तो फिर लौट क्यों आई? तुझे श्याम ने वापस भेज दिया ना?
1: हाँ, मुझे श्याम ने वापस भेज दिया। उसने कहा मुझे इस तरह घर नहीं छोड़ना चाहिए था।
0: उसने शादी के लिए इनकार तो नहीं किया ना?
1: नहीं नहीं पापा, उसने कहा ज्योति मैं तुमसे, सिर्फ तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन इस तरह छुप कर घर से भाग कर नहीं, तुम्हारे माँ बाप की अनुमति लेकर। उसे पूर्ण विश्वास था कि आप लोग अनुमति दे देंगे। उसने मुझे वापस भेज दिया पापा। वो आ रहा है आपके पास आप लोगों की अनुमति लेने।
0: ज्योति मैं जानता था कि श्याम एक आदर्श लड़का है, वो बड़ों का आदर करना जानता है। आज अपनी मर्यादा की वजह से वो मेरी नजरों में बहुत ऊंचा उठ गया है।
1: पापा,
0: अरे श्याम आओ बेटा आओ।
2: पापा मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं।
0: क्षमा? कैसी क्षमा?
2: अनजाने में ज्योति ने जो गलत कदम उठाया उससे आपको कितना कष्ट पहुंचा होगा ये मैं समझ सकता हूं।
0: तुमने मेरे घर की इज्जत बचा ली बेटे, वरना लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कितनी बदनामी होती है हमारी।
2: मैं जानता हूं पापा, इसलिए आज मैं आपका आशीर्वाद देने आया हूं।
0: मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। पर श्याम
2: जी,
0: कुछ बातें साफ कर देना चाहता हूं।
2: कहिए पापा।
0: क्या तुम समझते हो ज्योति एक अच्छी पत्नी साबित होगी?
2: हम एक दूसरे से प्यार करते हैं पापा।
0: लेकिन बेटा सिर्फ प्यार के सहारे जीवन नहीं कटता।
2: जी मैं समझा नहीं।
0: ज्योति एक ना समझ लड़की है, घर गृहस्थ कैसे चलाया जाता है इसे उसका कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि उसे खाना पकाने घर के कामकाज का भी शऊर नहीं है।
3: हाँ हाँ, वो जाहिल है, गवार है, क्योंकि उसकी माँ एक फूहड़ औरत है। उसने अपनी इकलौती बेटी को कुछ नहीं सिखाया, यही कहना चाहते हो ना?
0: अरे ज्योति की माँ ये
3: मेरी ज्योति हजारों में एक है, हजारों में, क्या नहीं आता उसे? हाँ बस तुमने उसे सर पर चढ़ा दिया है और अब कुछ दिनों से वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी।
1: माँ
3: छोड़ मुझे। क्षमा, मैं तेरी कौन होती हूँ? मैं तो तेरी दुश्मन हूँ। माँ,
2: माँ जी, कभी कोई माँ भी अपने बच्चे की दुश्मन होती है?
3: तू मत बोल मुझे। तूने ही मेरी बच्ची को मुझसे दूर कर दिया, तेरे ही कारण वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी है। तेरे लिए वो आज मुझे छोड़ कर जा रही है, मुझे अपनी माँ को छोड़ कर जा रही है।
2: माँ जी, ये इसकी नादानी थी, इसलिए मैंने इसे वापस भेज दिया। मुझे ज्योति से ज्यादा आपका प्यार चाहिए, माँ का प्यार। सच कहता हूं मां जी, साल दो साल का था मैं जब मेरी मां का स्वर्गवास हो गया। मुझे तो उसकी सूरत भी याद नहीं। मां के प्यार के लिए सारी जिंदगी तरसता रहा मैं।
3: सुना है तेरा पिता शहर का बड़ा व्यापारी है, फिर तो?
2: मां जी, जिस बच्चे की मां नहीं होती ना उसका बाप भी सौतेला हो जाता है। उन्होंने मेरी भावनाओं को कभी नहीं समझा। उनके लिए तो पैसा ही औलाद है और पैसा ही भगवान।
3: पर पैसे के बिना गृहस्थ चल भी तो नहीं सकता, यह भी तो एक सच्चाई है। इस तरह से आंखों को बंद नहीं करके बैठा जा सकता है। तुम्हारे पास है क्या?
2: मेरे पास है माँ जी आप जैसी माँ का आशीर्वाद। मेरी पूंजी है दया, करुणा।
3: ज्योति को बड़े नाजू से पाला है मैंने।
2: माँ जी, सीता भी तो राजा जनक की बेटी थी।
0: और फिर श्याम उसे ब्याह कर वनवास नहीं ले जा रहा, वो सादा जीवन बिताना चाहता है और सादगी कोई गुनाह नहीं है।
3: मैंने ज्योति के विवाह को लेकर कितने सपने बुने थे।
0: ज्योति की माँ, अब तुम्हें हालात के मुताबिक अपने को बदलना होगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो पिछड़े रह जाएंगे।
2: काश मेरे डैडी भी आपकी तरह होते।
0: तुम्हारे

0: को मैं समझाऊंगा, मैं लड़की वाला हूं भाई।
1: नहीं, वो आपके साथ सौदेबाजी करेंगे, हजारों रुपए दहेज में मांगेंगे। उन्हें जिंदगी में केवल पैसा चाहिए, पैसा। पैसे के लिए वो मुझे भी नीलाम करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
0: मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करूंगा। तुम्हारे पिताजी जितना दहेज मांगेंगे दूंगा।
1: नहीं पापा, मैं खुद को बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, इतना जरूर है कि उन्हें विवाह का निमंत्रण भेजूंगा, चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद पा सकूं।
0: हम शादी धूमधाम से करेंगे।
1: नहीं पापा, नहीं, मैं आपको कोई फजूल खर्ची नहीं करने दूंगा।
0: अच्छा चलो, एक बढ़िया सी पार्टी कर देंगे। क्यों ज्योति की माँ?
2: मैं तो दुश्मन हूँ इनकी, मुझसे क्या पूछते हो?
1: अगर आप नहीं चाहते तो मैं ये शादी नहीं करूंगा माँ जी। माँ को नाराज करके मैं कोई खुशी हासिल नहीं करना चाहता।
2: लेकिन मैं फकीरों की तरह रूह की सुखी शादी नहीं करूंगी। हाँ, कम से कम बारातियों को मीठा नमकीन तो देना ही होगा।
1: पर जानती है माँ जी, मेरी बारात में कौन लोग आएंगे? मेरी बारात में होंगे बस्ती के गरीब लोग, अनाथ बच्चे। मेरी रिश्तेदारी तो उन्हीं लोगों से है माँ जी।
0: लेकिन शाम,
2: आपको बीच में बोलने की बुरी आदत है, चुप रहिए।
0: पर ज्योति की माँ, शादी में रिश्तेदारों को?
2: रिश्ते खून के नहीं, प्यार के होते हैं। आज ये बात मुझे श्याम बेटे ने अच्छी तरह समझा दी। मेरी अपनी जाई ने मुझे नहीं समझा, मगर ये इसने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, उससे तो मेरा दिल भर आया।
0: अच्छा ही हुआ, अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे।
2: आप चुप रहिए, दामाद और सास के बीच में बोलने वाले आप कौन होते हैं?
0: जी मैं इस दामाद का ससुर और इस सास का पति और इस घर का मालिक।
2: मालिक? वो किसकी इजाजत से?
0: इस घर की मालकिन, यानी तुम्हारी इजाजत से।

हवा महल में आज आप सुन रहे थे नाटिका रिश्ते प्यार के। विष्णु भाटिया के लिखी इस नाटिका को निर्देशित किया गंगा प्रसाद माथुर ने। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सबसे पहले लव यात्री इस फिल्म का गाना देव नेगी और योयो हनी सिंह की आवाज़ों में, शब्बीर अहमद, योयो हनी सिंह और होमी डिल्लीवाला का लिखा हुआ गाना, तनिष्क बागची का संगीत।

लीजिए अब सुनिए वेल डन अब्बा, इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल और रूप कुमार की आवाजों में, स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत शांतनु मोइत्रा का। आवाजें श्रेया घोषाल और रूपांकर की है।

चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए वी आर फैमिली। इस फिल्म का गाना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में इरशाद कामिल और अन्विता दत्त के बोल, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

ब्रेक का समय पूरा हुआ और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं उड़ान फिल्म का गाना अमित त्रिवेदी और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ों में। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा, अमित त्रिवेदी का संगीत।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार।

0: सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। तो बात पक्की, ये फिल्म का नाम है। प्रीतम राणा और सोहम की आवाजें हैं, सईद कादरी के बोल हैं और प्रीतम का संगीत है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है।

0: ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
1: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष पूरे होने पर उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर न दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृहमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानूनी सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच तथा संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉ मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
2: I want to strengthen my party to Tamil Nadu.
3: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
2: To strengthen the party.
1: डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सेबी सारथी ऐप। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता है।
1: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चेक गणराज्य के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
2: भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी

0: प्रभावित होती है।
1: जो भी समाज नशे की गिरफ्त में आता है वहाँ एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम अपने समाज को नशे से मुक्त करने में सफल नहीं होते तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी।
0: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मास्टर प्लान की शुरुआत वर्ष 2021 में आज ही के दिन देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।
2: पिछले 5 वर्षों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत डिजिटल नियोजन मंच से विकसित होकर एक व्यापक भूस्थानिक नियोजन प्रणाली बन गया है जो अवसंरचना आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसने जीआईएस आधारित मंच के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों राज्यों और अवसंरचना नेटवर्क को एक साथ जोड़ा है। आज पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत हैं जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के आधार पर इस मंच पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 400 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
3: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई करों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल जीएसटी में किए गए नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28% की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5 और 18% कर दी गई है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
4: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
3: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
5: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के मामलों में अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।
3: पिछले 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी मजबूती मिली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देश हित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
7: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPA ने बताया है कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी UPI लेनदेन निःशुल्क रहेंगे। MDR शुल्क केवल 2000

0: रुपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेन देन पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से प्रति माह 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई MDR शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,109 अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 पर बंद हुआ।
1: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने प्रागवे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी। सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का पहला गाना है सुहाना सफर। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना सुनवाते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में परदेसी फिल्म का ये गाना है, मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और चित्रगुप्त ने संगीत तैयार किया है।

आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया। ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है। फिल्म का नाम मस्ताना।

ऐसा काहे को होवत हैरी लैला, ऐसा काहे को होवत हैरी लैला, मन मोर

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं जीवन मृत्यु इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, जवां मोहब्बत, ये फिल्म का नाम, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ें, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: तेरी मेरी। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके लिए संपन्न होता है।
1: आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं विविध भारती से आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के जाने माने अदाकार अशोक कुमार पर।
1: मैं बन का पंछी बन के सन सन बोलू रे, मैं बन का पंछी बन के सन

0: अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर सन 1911 में भागलपुर के एक वकील कुंजीलाल गांगुली के घर हुआ। बचपन का उनका नाम था कुमुदलाल गांगुली। गौरी देवी और कुंजीलाल के चार बच्चे थे, इनमें सबसे बड़े थे कुमुदलाल, जी हाँ अशोक कुमार यानी दादा मुनि। उनसे 2 साल छोटी थी उनकी बहन सती देवी। अशोक कुमार से 14 साल छोटे थे कल्याण गांगुली, बाद में जिनका स्क्रीन नेम यानी रुपहले पर्दे का नाम था अनूप कुमार। चार भाई बहनों में सबसे छोटे थे आभास कुमार, जो बाद में किशोर कुमार नाम से विख्यात हुए।
1: बाजू

0: अशोक कुमार की छोटी बहन सती देवी का विवाह जाने माने निर्माता निर्देशक शशधर मुखर्जी से हुआ था। शशधर मुखर्जी ने बाद में ज्ञान मुखर्जी, राय बहादुर चुन्नीलाल और अशोक कुमार के साथ मिलकर फिल्मिस्तान स्टूडियो का निर्माण किया। अशोक कुमार भागलपुर में जन्मे थे। बाद की पढ़ाई उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में की। हालांकि अपने पिता ही की तरह अशोक कुमार भी लॉ के छात्र थे, पर उनके मन में सिने जगत में जाकर तकनीशियन बनने की तमन्ना थी। ऐसे में काम आए उनके बहनोई जो हिमांशु रॉय की फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज में कार्यरत थे। उन्होंने अशोक कुमार को बतौर तकनीशियन बॉम्बे टॉकीज में रखवा लिया। ये सन 1930 के आसपास की बात है। बॉम्बे टॉकीज उस जमाने का बहुत ही बड़ा और जाना माना नाम था। अशोक कुमार लैब असिस्टेंट के अपने काम में खुश थे और रम गए थे। ऐसे में जीवन नैया फिल्म का निर्माण चल रहा था। ये सन 1936 के आसपास की बात है। निर्माण के दौरान फिल्म के हीरो नजमुल हसन बड़े ही नाटकीय ढंग से फिल्म अधूरी छोड़ फिल्म की नायिका के साथ भाग खड़े हुए थे। किसी तरह से ये फिल्म फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। देविका रानी के साथ नायक के रूप में पेश किए गए बॉम्बे टॉकीज के लैब असिस्टेंट कुमुदलाल गांगुली, इसी फिल्म के दरमियान इनका नाम अशोक कुमार हुआ। वो ना नकर करते रहे, पर अनिच्छा से ही सही वो बन गए इस फिल्म के हीरो। फिल्म जीवन नैया के साथ ही अशोक कुमार की एक्टिंग की गाड़ी भी शुरू हो गई।
1: रेल गाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक लोहे की सड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ फ्लाई छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान मंदिर मकान।

0: यार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक। धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल, मछली पट्टम दिमली पट्टम दिमली पट्टम मछली पट्टम, ओंगोल निर्दिघोल निर्दिघोल ओंगोल, कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, सोतनूर पोतनूर सोतनूर पोतनूर। बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक,
1: जीवन नैया के बाद इसी साल यानी 1936 में एक और फिल्म देविका रानी और अशोक कुमार को लेकर बनी अछूत कन्या। सामाजिक विषय पर बनी ये फिल्म भी काफी चली और देविका रानी तथा अशोक कुमार एक हिट जोड़ी के रूप में विख्यात हो गए थे।

में देविका रानी और अशोक कुमार अभिनीत कई फिल्में आईं। 1936 में ही जन्मभूमि, 1937 में इज्जत और सावित्री, 1938 में वचन और मुंशी प्रेमचंद की कृति पर आधारित फिल्म निर्मला। देविका रानी और अशोक कुमार अभिनीत आखिरी फिल्म थी अनजान, जो बनी थी 1941 में। ये फिल्म कुछ खास नहीं चली थी, परिणाम स्वरूप इसके बाद इन दोनों की एक साथ कोई फिल्म नहीं आई। इससे अशोक कुमार एक तरह से लाभान्वित ही हुए, उन्हें अब अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल गया था। अब तक वो देविका रानी के प्रभा मंडल के कारण कुछ छिपे हुए से लगते थे। उस जमाने की बड़ी ही खूबसूरत अदाकारा थी लीला चिटनिस, जो एक जानी मानी मॉडल भी थी। बाद वाली पीढ़ी ने लीला चिटनिस को रोती हुई मजबूर माँ के रूप में ही देखा हुआ है। उन्हें जानकर जरूर आश्चर्य हो सकता है कि लीला चिटनिस कभी खूबसूरत मॉडल भी रह चुकी हैं। खैर, तो लीला चिटनिस के साथ अशोक कुमार की जोड़ी बन गई। हालांकि लीला चिटनिस भी उम्र और रुतबे में अशोक कुमार से बड़ी थी, पर इनकी जोड़ी काफी लोकप्रिय हुई थी।

अशोक कुमार अभिनीत एक के बाद एक कुछ फिल्में आईं, उनमें उल्लेखनीय हैं 1939 में आई फिल्म कंगन,

1940 में बंधन और आजाद, इन फिल्मों की सफलता ने अशोक कुमार को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा दिया। 1941 में लीला चिटनिस के साथ आई फिल्म झूला की सफलता ने अशोक कुमार को फिल्म की सफलता की गारंटी के रूप में देखा जाने लगा।

0: 1943 से 1950 का दौर अशोक कुमार के उरूज का दौर कहा जा सकता है। 1943 में ज्ञान मुखर्जी की फिल्म किस्मत ने सफलता का नया इतिहास रच डाला। इस फिल्म में अशोक कुमार ने विलेनिश रोल किया था। यह हिंदुस्तानी फिल्मों में पहली बार हो रहा था। फिल्म की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने 1 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब 1.5 लाख में अच्छी खासी फिल्म बन जाया करती थी।
1: धीरे धीरे हारे बादल, धीरे हारे बादल, धीरे धीरे जा, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा।

0: पातल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा ओ बादल तू नजर न लगा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है शोर।
1: सही अर्थों में अशोक कुमार इस दौर के सुपरस्टार बन गए थे। इस दौर की उनकी चर्चित फिल्में थीं 1944 में चल चल रे नौजवान, 1946 में शिकारी, 1947 में साजन, 1949 में महल, 1950 में संग्राम और समाधि।

दोस्तों, अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज के लिए इस फिल्म कंपनी के बंद होने के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों का निर्माण भी किया है। 1947 में आई फिल्म नीलकमल राज कपूर साहब की बतौर नायक पहली फिल्म थी। 1948 में आई फिल्म जिद्दी जो देवानंद साहब और प्राण के करियर की एक मील का पत्थर फिल्म थी। 1949 में आई गूढ़ फिल्म महल जिसमें उन्होंने नायक की भूमिका की थी। उनकी नायिका का रोल वीनस ऑफ द इंडियन स्क्रीन मधुबाला ने निभाया था।

0: दोस्तों, अशोक कुमार ने नलिनी जयवंत और मीना कुमारी के साथ बाद की कुछ एक फिल्मों में काम किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये गाना।
1: बेकरार दिल तू गाए जा,

दोस्तों, फेल्ट हैट लगाए काले चश्मे के साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में विलेन के रोल भी किए हैं और कुछ एक फिल्मों में फर्ज पाबंद पुलिस अफसर की भूमिकाएं भी की हैं। कुछ ऐसा ही रोल था उनका ज्वेल थीप में।

1960 के बाद अशोक कुमार ने चोला बदलते हुए कैरेक्टर एक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। ये 1960 के आसपास की बात है। वो फिल्म कानून में जज बने हैं। 1963 की फिल्म बंदनी में उम्र दराज स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका में वो नजर आए थे। 1964 में आई फिल्म चित्रलेखा में ढलती उम्र के धर्मगुरु के रूप में भी वो दिखाई दिए थे। 1970 में आई फिल्म जवाब में वो बने थे एक जमींदार। उनकी कुछ लैंडमार्क फिल्में हैं आशीर्वाद, सत्यकाम, पूरब और पश्चिम, पाकीजा, मिली, छोटी सी बात, खूबसूरत वगैरह।

0: यो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी।
1: 1980 से 1990 के दशक में वो कुछ टीवी शोज में भी काम कर चुके हैं। पहला भारतीय सोप ओपरा हम लोग में वो एक एंकर के रूप में थे। बहादुर शाह जफर में भी वो नजर आए थे। उनका हिंदी फिल्म के स्क्रीन पर आखिरी अपियरेंस 1997 में आई फिल्म आंखों में तुम हो, इस फिल्म में था। अशोक कुमार ने न केवल अनुप कुमार, किशोर कुमार इन भाइयों का करियर बनाया, बल्कि बीआर चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, शक्ति सावंत जैसे निर्देशकों के लिए रास्ता बनाया, उन्हें मौके प्रदान किए। दोस्तों, अशोक कुमार को कई एजाज अवार्ड मिल चुके हैं। इनमें उल्लेखनीय है 1999 में भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए उनकी सराहना के तौर पर उन्हें दिया था पद्म भूषण का सम्मान। और उल्लेखनीय है 1988 में उन्हें मिला फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड। दोस्तों, सबके चहेते दादा मोनी अशोक कुमार अदाकार फिल्मकार के अलावा एक चित्रकार भी थे। होम्योपैथी के वो अच्छे जानकार भी थे। अशोक कुमार ने कई आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वो पहले स्टार थे जो हीरो रहे, अधेड़ उम्र के नायक रहे, उम्र दराज ऋषियों जैसे रोल भी उन्होंने निभाए हैं। ये महान अदाकार 10 दिसंबर 2001 में मुंबई में अपने आदर्श नक्श पीछे छोड़ विराट ब्रह्मांड में विलीन हो गया।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने अदाकार फिल्मकार अशोक कुमार पर। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग प्रदान किया आकांक्षा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब अशोक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ हैं।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हम गुम हैं अपनी ही दुनिया में, बार बार सुनाई देती है किसी की आवाज, जानी पहचानी सी आवाज। हम पलट कर देखते हैं तो पाते हैं कोई नहीं है आसपास, फिर भी एक एहसास है जैसे है वो कहीं आसपास। इसी एहसास ने गुनगुनाया प्यार का मीठा सा राग, इसी एहसास ने लिखी थी नेह की पाती किसी के नाम।

जरा सी खुशी, जरा सी हंसी, जरा सी उदासी, इसी से मिलकर बनती है जिंदगी। ख्वाबों के तिनके जोड़कर बन जाता है जिंदगी का आशियाना। चलो बनाएं ख्वाबों का जहां, आधी आधी खुशी बांट ले, बांट ले गम, बांट ले आधी आधी जिम्मेदारियां, बांट ले आपस में ख्वाहिशों के मोती, कामयाबी के फूल।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। तुम्ही ने भरी जिंदगी में रोशनी, तुम्ही ने सींचा प्रेम के जल से मन की क्यारी को। यही वो मौसम था जब गुलाबी मन पर तुमने पीला रंग छिड़क दिया था, और फिर सरसों के पीले फूल इतराते हुए मुस्कुरा उठे थे। बाग में बैठा मैना का जोड़ा अपनी बोली में कुछ बोला था, और दो चेहरों के गाल गुलाबी हो गए थे।

खिड़की से दूर क्षितिज को देखते हुए जब आज फिर खोली मन की डायरी, तो जगमगा उठी वो तस्वीरें जब मन से बांधे थे किसी के मन के तार, जब चलती हुई ट्रेन पर दौड़कर चढ़ने की कोशिश की थी, एक दूसरे का हाथ थामा था, दिखाई थी तमाम तस्वीरें एक दूसरे को, जब यूं ही सड़कों पर खाली बेमकसद चलते रहते थे। याद आ गए वे पल जब यूं ही बैठे चुपचाप एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे थे।

दिलों की प्रीत जमाने के लिए कहानी बन गई। बहती हुई नदी का किनारा, लहरों का खेल करता समंदर, आसमान की बुलंदियों को छूते पहाड़, दो चाहने वाले के हमदम बन गए। उनके बोलने से कायनात खनक उठी, उनकी हंसी बहता हुआ झरना बन गई। उनसे गुफ्तगू जैसे फूलों का खिलना हो, उन्हें देखना जैसे चांद को निहारना हो।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था।

धीरेंद्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग और आज इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। श्रोताओं, कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती बल्कि सीधे दिल में उतर जाती हैं। किशोर कुमार की आवाज भी ऐसी ही थी जिसमें शरारत थी, शोक ही थी, रोमांस था और जुदाई का दर्द भी। वे गाते थे तो लगता था जैसे हर इंसान की अपनी कहानी को सुर मिल गए हो, है ना? आज उनकी पुण्यतिथि पर हम याद कर रहे हैं उस बेमिसाल फनकार को जिसने अपनी आवाज से हिंदी सिनेमा के संगीत को एक अलग पहचान दी। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।

हो झुम झुम झुम झुम झुमरो पकड़ घूमो बनके घूमरो साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल

झुमरू फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, बोल और संगीत किशोर कुमार का। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये गरबा गीत।

शिवांग माथुर और श्रद्धा श्री की आवाजों में अभी आपने सुना ये गरबा गीत। इसे लिखा ऋतिका ब्रह्म भट्ट ने और संगीत था शिवांग माथुर का।

ये गजल अभी आपने सुनी उर्दू मॉडर्न इस एल्बम से। अशोक खोसला की आवाज थी और इसे लिखा डॉक्टर राही मासूम रजा ने। जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया।

0: कभी तो नजर मिलाओ इस एल्बम का गीत अभी आपने सुना अदनान सामी और आशा भोसले की आवाजों में। रियाज उर रहमान सागर ने इसे लिखा, अदनान सामी का संगीत।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में पंडित भरत व्यास का लिखा ये भजन, जिसे संगीतबद्ध किया है बाबू सिंह ने।

0: मंगेशकर और साथियों की आवाज में आपने सुना चांद का टुकड़ा इस फिल्म का ये गीत। इसे संगीतबद्ध किया महेश किशोर ने। साथियों आपको बता दें कि आज के यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सुनेंगे किशोर कुमार की अलग अलग अदाओं में गायकी के कुछ गीत। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे यानी कि विविध भारती के साथ।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: मेरी चूनर उड़ उड़ जाए इस एल्बम का गीत सुनिए फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में। गीत और संगीत ललित सेन का।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं जय बजरंगबली इस एल्बम का ये भजन, शबाब सबरी की आवाज। मनीष व्यास ने इसे लिखा है, अभिजीत गढ़वे का संगीत।

इस भजन के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत है ललित का और एल्बम का नाम याद पिया की आने लगी।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। स्वीकारें नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार।

तो साथियों, आप समझ ही गए होंगे इस धुन को सुनकर कि आज हम क्या बातचीत करने वाले हैं। साथियों, किशोर कुमार एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दिल में संगीत की लहरें उठने लगती हैं। कभी उनकी आवाज हमें हंसाती है, कभी प्यार के खूबसूरत एहसासों में ले जाती है, तो कभी आंखें नम कर देती है और कभी ऐसा सुकून भी देती है जैसे भागदौड़ की जिंदगी में कुछ पल ठहरने का बहाना मिल गया हो। आज का ये सफर किशोरदा के इन्हीं अलग अलग रंगों के नाम है। तो आइए सुरों के इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं नमक हलाल फिल्म का ये गीत, आवाज किशोर कुमार और साथियों की। इस गीत को लिखा है प्रकाश मेहरा ने और बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में मस्ती भरे गीतों के साथ। साथियों, किशोरदा की आवाज में एक ऐसी शरारत थी जो उदास चेहरे पर भी मुस्कान ले आए। उनके गानों में कभी बेफिक्री, कभी नटखटपन, तो कभी ऐसी मस्ती होती थी कि पैर अपने आप थिरकने लगे। तो चलिए जिंदगी की फिक्रों को कुछ देर किनारे रखकर माहौल को थोड़ा मस्ती भरा बनाते हैं और आइए सुनते हैं डॉन फिल्म का ये गीत, आवाज किशोर कुमार की, अनजान की रचना और धुन बनाई आनंद जी कल्याण जी ने।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जा। ओ खई के पान।

0: हर गम से बेगाना होता है।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
5: और आइए अब आपको सुनवाते हैं आराधना, इस फिल्म का गीत आवाज किशोर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत।

साथियों, प्यार के एहसास को शब्दों में बयां करना आसान नहीं, लेकिन किशोरदा ने अपनी आवाज से इसे बेहद खूबसूरत बना दिया। कभी पहली मोहब्बत की झिझक, कभी किसी का इंतजार, तो कभी दिल की अनकही बातें, उनके रोमांटिक गीत हर एहसास को अपना सा बना देते हैं।

0: दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: हर कहानी का अंत खुशियों से हो ये जरूरी नहीं। किशोरदा ने अपनी आवाज में बिछड़ने की कसक, अधूरी मोहब्बत और तन्हाई के दर्द को कुछ इस तरह पिरोया कि हर गीत दिल की कहानी लगने लगता है। आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ नगमे जो अनगहे जज्बातों को आवाज देते हैं।

अमर प्रेम इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज किशोर कुमार की। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, राहुल देव बर्मन का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं अमानुष फिल्म का गीत, आवाज एक बार फिर किशोर कुमार की। इंदिवर की रचना है ये और श्यामल मित्रा ने इसे संगीतबद्ध किया है।

आंधी फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गुलजार ने इसे शब्दबद्ध किया है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर बस आंखें बंद करने और उनमें खो जाने का मन करता है। किशोरदा की आवाज में एक ऐसा अपनापन और ठहराव था जो मन की हलचल को धीमा कर देता है। तो आइए अब सुनते हैं ये ऐसा ही एक गीत जो दिल को सुकून और मन को राहत देता है। घर फिल्म का ये गीत है, आवाज किशोर कुमार की, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

तो साथियों, आज के इस संगीतमय सफर में हमने किशोर कुमार की आवाज के कई रंग महसूस किए। कहीं मस्ती थी, कहीं मोहब्बत, कहीं दर्द और कहीं दिल को छू लेने वाला सुकून। यही तो खासियत थी किशोरदा की, वे हर एहसास को अपना बना लेते थे और फिर उसे हमारे दिलों तक पहुंचा देते थे। उनकी आवाज आज हमारे बीच भले ही पहले की तरह मौजूद ना हो, लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। किशोरदा को सुरो भरा नमन। और आज के इस कार्यक्रम से अब नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। स्वीकार करें नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, आज का दिन हिंदी सिनेमा की दो अनमोल शख्सियतों की याद दिलाता है। आज अशोक कुमार जी की जयंती है, जिन्होंने अपने सहज अभिनय से भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। वहीं किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि हमें उनकी आवाज के उस जादू की याद दिलाती है जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। इन्हीं यादों के साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जो कभी पटरियों पर दौड़ता है तो कभी जिंदगी के रास्तों पर चलता है। साथियों, इबारत आपने फेसबुक पर पढ़ी ली होगी और हमारे सभी श्रोता साथी फेसबुक पर हमसे कमेंट्स द्वारा जुड़ भी गए होंगे। यदि कोई छूट गया है तो आइए उनके लिए एक बार इबारत फिर पढ़ देते हैं। कहते हैं जिंदगी भी एक रेलगाड़ी के सफर जैसी है, जहां कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं, कुछ रास्ते में मिलते हैं और कुछ किसी स्टेशन पर उतर जाते हैं। कभी सफर सुहाना होता है तो कभी मुश्किलों की सुरंगें सामने आती हैं, लेकिन जैसे हर सुरंग के बाद रोशनी आती है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद उम्मीद की किरण जरूर आती है। हम अक्सर मंजिल की चिंता में सफर का आनंद लेना भूल जाते हैं। याद रखिए, हर मुसाफिर की मंजिल अलग हो सकती है, लेकिन सफर में मिली यादें हमेशा साथ रहती हैं। इसलिए जिंदगी की इस रेलगाड़ी में मंजिल तक पहुंचने की जल्दी मत कीजिए। सफर को भी मुस्कुराकर जीना सीखिए, क्योंकि खूबसूरत यादें अक्सर रास्तों में ही बनती हैं। और आइए इसी के साथ सुनते हैं ये इस कार्यक्रम का आज का पहला गीत, अशोक कुमार की आवाज में। आशीर्वाद फिल्म से ये गीत है, गुलजार के बोल, वसंत देसाई का संगीत।
1: आओ बच्चों खेल दिखाए, छुक छुक करती रेल चलाए, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाए। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी।

आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हारा कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर, सब पैसेंजर रेडी। एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान।

हाट मंगल की हाट गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक, रुक।

धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव वेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल मतलब पट्टम दमली पट्टम दमली पट्टम मतलब पट्टम उंगोल नर्द गोल नर्द गोल उंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव मंदाबाद मंदाबाद मंदाबाद मंदाबाद सोतनूर पोतनूर सोतनूर पोतनूर चुक चुक चुक चुक चुक चुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक

तो आप सभी ने इस गीत में आया हुआ वो शब्द तो पहचान ही लिया होगा। जी हाँ, वो शब्द है रेलगाड़ी। अशोक कुमार का गाया ये गीत था। एक साथी ने लिखा है, आज ट्रेन के सफर की बात है तो जिंदगी हमेशा सफर पर ही रहती है। कभी सुरीला सफर बन जाती है, कभी खट्टा तो कभी मीठा। आज मैं ट्रेन से नहीं गाड़ी से सफर कर रही हूं, इसलिए आज प्रोग्राम नहीं सुन पाऊंगी। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जिस सफर पर हैं वहां पर हमारा जो विविध भारती है न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप दिन रात लगातार कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, तो आप वहां पर सुन सकती हैं। तो कार्यक्रम को मिस मत कीजिए, इसका आनंद लीजिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। शब्द पहचानिएगा, आपको कमेंट करके बताना है कि इस गीत का वो शब्द कौन सा है। कालिया फिल्म का ये गीत है, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, राहुल देव बर्मन का संगीत।

तो आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है, आज अभी ये जो गीत बजा इसका शब्द था साथ। एक साथी ने लिखा है, फिल्म आशीर्वाद का प्रसिद्ध गाना रेलगाड़ी भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक और अनोखा गीत है जिसे दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार यानी कि दादा मुनि ने गाया था। इसे भारतीय सिनेमा का पहला रैप गाना माना जाता है जिसमें बिना किसी भारी संगीत के रेलवे स्टेशनों के नामों और ग्रामीण भारत की छटा को बेहद लयबद्ध अंदाज में पिरोया गया है। इस मासूम और ऊर्जावान गीत को हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने लिखा और वसंत देसाई ने संगीतबद्ध किया, ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी ने लिखा है, किशोरदा आप भी तो जिंदगी के इस सफर के ऐसे मुसाफिर हैं जो अपनी देह से भले ही दूर चले गए मगर अपनी आवाज के रूप में हर दिल में ठहर गए। वक्त की रेलगाड़ी आगे बढ़ती रही, पीढ़ियां बदलती रहीं, कितने ही स्टेशन पीछे छूट गए लेकिन आपके गीतों का कारवां आज भी उसी शिद्दत से हमारे साथ चल रहा है। आपकी आवाज सुनकर लगता है जैसे कोई बिछड़ा हुआ अपना फिर लौट आया हो, जैसे यादों की किसी पुराने स्टेशन पर जिंदगी कुछ पल के लिए ठहर गई हो। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत और पहचानिएगा इस गीत का वो कौन सा शब्द है जो हमारी आज की इबारत में शामिल है। फिल्म का नाम है राम बलराम, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ने इस गीत को गाया है। बोल है आनंद बख्शी के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना, इससे पहले जो गीत बजा उसमें शब्द था रास्ता। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक साथ ही लिखते हैं, सफर बैलगाड़ी का हो या हवाई जहाज का या जिंदगी का, हिचकोले तो लगते ही हैं लेकिन हमेशा तो नहीं, इसलिए सुहाने सफर का आनंद भी लें तो जीवन के झटके भी हंसते हंसते लें। एक साथ ही लिखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जब हम किसी खूबसूरत सफर पर होते हैं तो ऐसी ऐसी मीठी मधुर और मधुर अनुभूति होती है जिन्हें हम कभी भी भूलना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि सफर कभी खत्म ही ना हो।

बिल्कुल सही कहा आपने कि जब सफर पर हमें बहुत अच्छे बातूनी लोग मिल जाते हैं या फिर हम जैसी सोच रखते हैं उस तरह की सोच रखने वाले लोग मिल जाते हैं तो बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर सफर कहाँ गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। लगता है ये सफर थोड़ा और लंबा होना चाहिए था। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला गीत आपको सुनवाते हैं शोले फिल्म से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। और आपको बताना है इस शब्द में छुपा, क्षमा कीजिए, इस गीत में छुपा वो शब्द।

बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने, शब्द था स्टेशन, जो इस गीत में शामिल था और हमारी इबारत में भी। एक साथी ने लिखा है, यादगार सफर का आनंद लिया जब ट्रेन गुजर रही थी सुरंग से, वो भी सबसे लंबी, करीब 14 किलोमीटर लंबाई से गुजरना हुआ। अगस्त 2026 में जब वंदे भारत ट्रेन में श्री माता वैष्णो देवी कटरा

स्टेशन से श्रीनगर स्टेशन की ओर वापसी में मेरी धर्मपत्नी और मैंने सफर किया था। बाबा अमरनाथ जी के पवित्र गुफा के दर्शन लिए रास्ते में चेनाब नदी के ऊपर सबसे ऊंची ब्रिज से भी ट्रेन गुजर रही थी। कई सुरंगों और ब्रिजेस से ट्रेन गुजर रही थी जिनको देखकर हम भी आनंदित हो रहे थे। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं श्रोताओं जो हमारी जहन में बस जाती हैं, हमें याद हो जाता है पल पल कि कैसे गुजरा था और कितना खूबसूरत था। चलिए इस कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: तो इस संदेश से पहले जो गीत आपने सुना उसमें शब्द था रोशनी। साथियों, एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली नेहा जी और सभी गुणी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। किशोर दा हमारे ही शहर खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मुंबई में उनके निधन के बाद उनकी इच्छानुसार उन्हें खंडवा लाया गया था, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। अब ये तो कहना चाहिए कि एक ऐसा अवसर था जो आप उस शहर के थे और इसलिए इसका आप इसमें शामिल हो सके, और बड़ी मुश्किल से कभी ऐसे अवसर मिलते हैं जहां हम किसी ऐसी महान हस्ती की यात्रा में शामिल हो पाते हैं। और किशोर कुमार जी के भी कुछ जो उनके साक्षात्कार हुए, उनकी बातों में हमें कई जगह पता चलता है कि उन्हें अपने शहर खंडवा से बेहद प्रेम था और उनकी हर बात में ये बात झलकती थी कि वे वापस खंडवा आना चाहते थे। आइए अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला कमेंट हमें किया है एक साथी ने, लिखा है, मेरा सबसे लंबा सफर था जब बेटे की बारात लेकर कटक से अल्मोड़ा जाना था। राजधानी एक्सप्रेस से कटक से दिल्ली करीब 24 घंटा, फिर 12 घंटे बस द्वारा दिल्ली से अल्मोड़ा। हम 35 बाराती खूब मौज मस्ती करते गए और वापस उसी रास्ते आए। एक साथी ने लिखा है, नेहा जी, जिंदगी के इस सफर में मेरे बचपन से आज तक जो विश्वसनीय साथी रहा है वो है विविध भारती मुंबई, जिसके प्रोग्राम्स जो मैं रेडियो पर सुनते हुए अपने जीवन के सफर को सुरीला बनाता रहा हूं और आगे भी जितनी सांसें मिली हैं तब तक बनाता रहूंगा। जी हां बिल्कुल, तो आप सुनते रहिए विविध भारती। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत तलाक फिल्म से, आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजें। प्रदीप ने इसे लिखा है, श्रीराम चंद्र का संगीत। शब्द आपको पहचानना है कौन सा है।

आप सभी ने शब्द बिल्कुल सही पहचाना है, ये शब्द था किरण। एक साथी लिख रहे हैं, जिंदगी का सफर एक खूबसूरत नदी की तरह है जो कई मोड़ों और उतार चढ़ावों से होकर गुजरती है। इस रास्ते में कई लोग लहरों की तरह मिलते हैं और कुछ यादें बनकर पीछे छूट जाते हैं। कभी मुश्किलें चट्टान बनकर सामने आती हैं तो कभी खुशियों के झरने सुकून देते हैं। हम अक्सर किनारे यानी कि मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में बहते पानी के आनंद को भूल जाते हैं। मंजिल तो तय है लेकिन असली सुकून हर पल को मुस्कुराकर जीने और इस सफर में यादें बटोरने में है। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत, आवाज एक बार फिर किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है परिचय, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: मुसाफिर शब्द आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और एक साथी ने लिखा है, एक बार रेल से सफर के दौरान हमारे कोच में आग लग गई थी। बाहर से लोग चिल्ला रहे थे कि गेट खोलो। मेरे मामा जी जो मुझे लिवाने आए थे बोले सब अंदर आना चाहते हैं, चुपचाप सो जाओ। इतने में मुझे खिड़की के पास आग की लपटें दिखाई दी। मैंने दौड़कर गेट खोल दिया, सब सुरक्षित बच गए, पर आज भी याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हां, ये बात सुनकर तो हमें भी रोंगटे खड़े हो गए हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ ने उस घटना को टाल दिया कह सकते हैं। तो ये सूझबूझ कभी कभार बहुत जरूरी होती है। एक साथी ने लिखा है, मुझे तो रेलगाड़ी की यात्रा इतनी अच्छी लगती है कि मैं हवाई यात्रा को छोड़कर रेलगाड़ी की यात्रा करना पसंद करती हूं। मेरे ऑफिस से मुझे बीकानेर से मुंबई तक का हवाई यात्रा का अवसर मिलता है, लेकिन मैं रेलगाड़ी से ही जाती हूं, तो सब मेरे कलीग्स और मेरे परिवार वाले मेरी हंसी भी उड़ाते हैं कि हवाई यात्रा छोड़कर आप रेलगाड़ी में जाती हैं। रेलगाड़ी से खिड़की से झांक कर एक एक स्टेशन देखना, धरती से धरती तक का मिलन, धरती से आकाश का क्षितिज पर मिलन, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक साथी ने लिखा है, मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन से जब भोपाल की तरफ चलते हैं तो ट्रेन बहुत सारी सुरंगों और हरे भरे जंगलों के बीच से गुजरती है। वो जंगल की छटा बरसात के समय बहुत ही रोमांचक होती है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज, साथ दिया है मोहम्मद रफी ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। पहचानिए शब्द।

याद शब्द आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना। एक साथ ही लिख रहे हैं, जिंदगी का सफर बहुत खूबसूरत है, इसमें कभी खुशी मिलती है तो कभी गम का सामना करना पड़ता है, कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी मुश्किलें हमारा हौसला परखती हैं, लेकिन यही उतार चढ़ाव जिंदगी को जीने का सही मतलब सिखाते हैं। एक साथ ही लिख रहे हैं, जिंदगी का ये सफर वाकई बहुत ही अजीब है, बंद मुट्ठी आए थे खुले हाथ जाना है, जो धन मान सम्मान कमाया वो छोड़कर एक दिन चले जाना है, न साथ लाए थे न साथ आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, इसलिए हमें जीवन में हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए, हमें हमेशा ये लगना चाहिए कि हमें जो मिला है वो काफी है, यानी कि जितना मिला जैसा मिला वो अच्छा है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है।

में थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, बस सुरीला सफर का भी थोड़ा सा सफर बाकी है, मगर हम सोच रहे हैं काश सुरीला सफर का सफर और बढ़ जाए। गीत बहुत सुंदर बज रहे हैं। तो दोस्तों, रेलगाड़ी की तरह जिंदगी का सफर भी चलता रहता है। कुछ यादें और कुछ लोग हमेशा साथ रह जाते हैं। आज किशोर दा और दादा मुनि को याद करते हुए इसी खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। अब दीजिए आज्ञा नेहा अगरकर देसाई को इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: जीवन सिया बजाई, अरे कश बंशिया बजाई, श्यामा सुध बिस राई तरे रे तरे रे तरे रे रे रे
1: भूल गया यार
0: तरे रे तरे रे तरे रे रे रे ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में

दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा मस्त।

0: दे बाटे के बूट पर। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा।
0: अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना

0: दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। हाँ, दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
0: ऊंचे

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: बजते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार।

0: ममता जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है मंजरी जी? खूब गरबा डांडिया खेल कर आ रही हैं ऐसा लग रहा है, मतलब रात को।
0: जी बिल्कुल, जश्न ही ऐसा है कि त्योहार का समय चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, तो ऐसे में तो शुरू हो गई है सब जगह पे डांडिया खेलना, गरबा खेलना।
1: और जुनून सा होता है कि बहुत सारी महिलाओं को हमने देखा, अरे हमें तो नहीं आता है और हमें तो पैरों में दिक्कत है, तकलीफ है, हम नहीं करेंगे, लेकिन जब वो
0: ये 9 दिन आते हैं,
1: हाँ, सखियों और सखाओं के साथ वो मैदान में उतरती हैं तो बिल्कुल शुरू हो जाते हैं, फिर जुनून छा जाता है, फिर तो समय का भी ख्याल नहीं रहता है। इसका स्वरूप थोड़ा बदल रहा है ना
0: जी,
1: बल्कि जो पहले था गरबा डांडिया का जो स्वरूप, डांस का तरीका था, अब उसमें बहुत सारी मिलावट भी हो गई है। तो हमारे श्रोता इस बारे में क्या सोचते हैं, हम चाहते हैं कि वो बताएं अपनी बातें।
0: बिल्कुल, और मुहावरों की दुनिया में अपना उल्लू सीधा करना, इसके बारे में भी हमारे साथियों ने संदेश भेजे हैं और भी बातें करेंगे वो।
1: और मंजरी जी, माँ की अलमारी में बहुत कुछ छिपा होता है ना। हम याद होगा बचपन में कि जब माँ बड़ा सा बक्सा खोलकर बैठती थी तो हम सब घेर के बैठ जाते थे, भाई बहन पूरे परिवार के सदस्य, और देखते थे कि इसमें क्या है। उनके पुराने पुराने कुछ गहने जेवर और कुछ पुरानी चीजें, कुछ छोटा सा पाउच, कुछ पर्स, और उसमें न जाने क्या क्या रहता था, और पुराने कपड़े निकाल के देखना, फिर धूप दिखाना रख के बड़े से चारपाई
0: पे।
1: तो ये सब बड़ी अजीब सी बातें थी और अब जैसे खत्म हो रही है, लेकिन माँ की अलमारी में एक कुछ और भी छुपा होता था।
0: बिल्कुल, उनकी यादें, बहुत सारे एल्बम होते थे, और जो आपने बोला ना, पोटली होती थी, दुर्जनिया होती थी, और एक काजल लगाने वाली चांदी की होती थी, लंबी सी डंडी होती
1: चांदी
0: थी,
1: सुपारी भी होती थी।
0: चांदी की सुपारी,
1: हाँ,
0: चांदी की सुपारी, बिछिया तो कितनी सारी निकलती थी उसमें, मतलब वो,
1: लेकिन
0: टूटी फूटी भी, साबुत भी,
1: उन्हीं सबके बीच जो छूटा रहता था उनका सपना,
0: बिल्कुल
1: उनका अधूरा सपना, क्योंकि एक जमाना था जब माँ के हिस्से में सिर्फ त्याग और बलिदान था, कि वो त्याग की मूर्ति जो होती थी वो माँ सबसे अच्छी माँ कहलाती थी।
0: सही बात
1: है ना जी, कि कितना कुछ सब पूरे परिवार के लिए करना, लेकिन खुद के लिए।
0: आपने बिल्कुल यादों को एकदम ताजा कर दिया है कि हम उस दौर में चले गए, उनके अलमारी तक पहुंच गए।
1: तो आपके साथ साथ, मतलब हम सब के साथ साथ, हमारे श्रोता भी यादों की अलमारी खोले और माँ के जो अधूरे सपने, माँ की अलमारी में छिपे उनके अधूरे सपने, इस बारे में हमारे श्रोता टिप्पणी करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
0: और सखी विशेष में हम बात करने वाले महिला उद्यमी अंकिता गावा के बारे में, जो सोशल समोसा और फिबी की संस्थापक भी हैं। और आज क्योंकि शरदीय नवरात्र का पर्व है तो हमारे सभी साथियों ने बधाइयां भी भेजी हैं, और आज माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, लोग हवन करते हैं, अच्छे श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, देवी की आराधना करते हैं और भक्ति में डूब जाते हैं।
1: सुनते हैं ये।

0: नौ दुर्गा फिल्म का गाना सखियां और सखा सुन रहे थे और खास बात यह है कि ये चित्रगुप्त के स्वर में था। हम संगीतकार के रूप में चित्रगुप्त को जानते हैं, बहुत कम श्रोता जानते हैं कि उन्होंने गाया भी है, तो ये उन्हीं के स्वर में था। रमेश सी पांडे का गीत था और एस एन त्रिपाठी का संगीत था।
1: क्या बात है। और हम लोग बात करने वाले हैं सखी विशेष में महिला उद्यमी अंकिता गाबा के बारे में, और जिसके आज के समय में महिलाएं न केवल स्टार्टअप की शुरुआत कर रही हैं बल्कि कंपनी भी संभाल रही है ममता जी, और बल्कि हजारों लाखों लोगों को नौकरियां देकर उनका नेतृत्व भी कर रही हैं। और आज एक ऐसी महिला की सफलता और मेहनत की कहानी लेकर हम आए हैं, और जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि इससे ज्यादा स्टार्टअप्स की नींव रखी और उन्हें सफल भी बनाया। अंकिता गाबा जो एक इंटरनेट उद्यमी और सफल बिजनेस वुमेन है,
0: ये एक ऐसा नाम है मंजरी जी जिन्हें इंटरनेट उद्यमी का खिताब भी मिल चुका है। उन्होंने सोशल समोसा
1: और सुपर माउस
0: फिवी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की नींव रखी, और 4 अप्रैल 1985 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी अंकिता गाबा बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल आया करती थी। वे अपने जीवन में कुछ अलग और नया करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने विल्सन कॉलेज मुंबई से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया और बाद में उन्होंने वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए की डिग्री भी हासिल की।
1: बिल्कुल। और पढ़ाई के दौरान ही साल 2007 में अंकिता गाबा ने भारतीय सोशल मीडिया एजेंसी सुपर माउस की नींव रखी, जिसके बाद साल 2010 तक इसके सीईओ के तौर पर काम किया। इसके साथ ही अंकिता ने साल 2008 में इंडस्ट्री में भी करियर की शुरुआत की, और उन्होंने टी सीरीज के साथ ही कई प्रसिद्ध हस्तियों के लिए पीआर मैनेजमेंट का काम भी किया इन्होंने।
0: और 2011 में उन्होंने अन्य संस्थापकों के साथ मिलकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल समोसा की नींव रखी। इस पोर्टल पर सोशल मीडिया से जुड़ी जानकारियां प्राप्त की जाती हैं, और ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया विज्ञापन मार्केटिंग अभियानों और केस स्टडीज से जुड़े आर्टिकल्स यहां पर पब्लिश किए जाते हैं।
1: और साल 2015 में इस पोर्टल को प्राइवेट इन्वेस्टर नाम की कंपनी को बेच दिया गया था। इस समय तक ये कंपनी 3 से 4 करोड़ की लगभग बन चुकी थी, और इसके बाद साल 2015 में गेट एवेंजेलाइज की को फाउंडर बनी, और एक साल बाद उन्होंने 2016 में आईजेनेरियो में पार्टनर एंड बिजनेस हेड के रूप में भी काम की शुरुआत की। यहां लगभग 2 साल तक काम करने के बाद ओरो वेल्थ में मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट बनी, और उसके बाद मनी फ्रेंड की मार्केटिंग हेड और महिला बनी, वेबसाइट की कंटेंट एंड कम्युनिटी हेड के रूप में भी आपने काम किया।
0: और 2023 में अंकिता गाबा ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर फिवी की स्थापना की। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स से जुड़ी खबरें दी जाती हैं। इस पोर्टल को पूरी तरह से सोशल मीडिया से जो प्रभावित होते हैं उन्हें समर्पित किया गया है।
1: जी। और आज अंकिता गाबा डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ कर दम पर एक नहीं बल्कि कई स्टार्टअप की शुरुआत करके उन्होंने उसे सफल बनाया। और अंकिता गाबा के पुरस्कार उपलब्धियों के बात करें तो सोशल समोसा वेबसाइट को वेब समिट 2013 के टॉप 10 स्टार्टअप में जगह मिल चुकी है, और एक्सचेंज 4 मीडिया द्वारा आईडीएमए 2013 के लिए सोशल समोसा को टॉप 5 डिजिटल स्टार्टअप में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही 2013 में उन्हें सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है,
0: और वैश्विक शीर्ष 100 सोशल मीडिया एजेंसियां और सलाहकार के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। और अंकिता गाबा सोशल मीडिया के क्षेत्र में अपने एक्सपीरियंस और नए नए आइडियाज साझा करती हैं, और केवल स्टार्ट

स्टार्टअप्स की ही शुरुआत नहीं की बल्कि कई लोगों को वो नौकरी भी दे चुकी हैं इसके माध्यम से। उनकी सफलता ये सीख देती है कि एक छोटा सा इनोवेटिव आइडिया के दम पर कैसे बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आज अंकिता गाबा कई महिलाओं को प्रेरणा दे रही हैं। और अब सुनवाते हैं एक गाना।

0: सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर। रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: मंजरी जी, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और ये संदेश हमने सुनवाए अपने अपने श्रोताओं को, और हमने अपने श्रोताओं से कहा था कि गरबा और दांडिया का स्वरूप बदल रहा, तो उसमें अपने उद्गार लिखे, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गरबा डांडिया के बदलते रूप में इतना ही कहना है कि घर मोहल्ले के चौराहे से पारंपरिक भक्ति अनुष्ठान से निकलकर अब कमर्शियल ग्लोबल रूप ले चुका है, जिसमें भक्ति भाव कम है और टिकट रेट ज्यादा होता है।
4: बिल्कुल सही बात लिखी है, क्योंकि जब हम जाते हैं देखने तो वहां पर बहुत ज्यादा पैसे उसके टिकट के बढ़ा दिए गए, और साथ साथ वेशभूषाओं पर भी बहुत सारा खर्चा होता है। देखा जाए बाजार में भरे पड़े हैं सामान और लोग खरीद भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो खर्चा भी बहुत तेजी
3: और
4: से होता है।
3: दोस्ती भी यहां पर बहुत परवान चढ़ती है, खास तौर से उसमें कई बार गलत रिश्ते भी पनप जाते हैं।
4: बिल्कुल,
3: लड़के लड़कियों के बीच, कम उम्र के लड़के कम उम्र की लड़कियों को, जहां पर बहुत ज्यादा गलत सही का फर्क नहीं पता होता है, उनके बीच एक रिश्ता एक नाता तय होता है, तो वो रात भर गरबा के बहाने निकल के बाहर जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, वो भी ठीक नहीं है।
4: बिल्कुल, उससे वो गलत ही प्रभाव पड़ता है, बाद में पता चलता है कि दोस्ती हुई और बाद में दोस्ती में दरारें आ रही, तो ये सब चीजें बहुत हो रही हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि पहले के जमाने में गरबा गांव के मैदान में एक ही जगह सब मिलकर करते थे, अब तो हर जगह होने लगा है। पहले कम आवाज होता था, अब बड़े बड़े स्पीकर आ गए और शांति सुकून तो गायब ही हो गए। पहले चनिया चोली और केडियो ड्रेस थे, अब वो ड्रेस तो है पर साथ में अंग प्रदर्शन भी होने लगा है। कुल मिला के पहले जो भक्ति भाव था वो अब मतलब कहना चाहिए अच्छा नहीं लगता, ऐसी चीजें पहनने में दिखावे में हो गई हैं। और मेरी बात करूं तो पहले मैं भी गरबा करने जाता था, पर अब सिर्फ देखता हूं, गरबा करने का मन नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि आज के फैशन के दौर में इतनी चीजें निकल आई हैं, डिजाइनर चीजें आ गई हैं, कपड़े आ गए, तो लड़कियां उसकी तरफ भागी जा रही हैं।
3: पूरा बाजार भरा होता है।
4: बिल्कुल,
3: इस समय बाजार में जाए तो वही लहंगा, चानिया चोली और घाघरा मिलता है, और जैसे होड़ सी मची हुई है कि हम उससे ज्यादा अच्छा पहन लें।
4: बिल्कुल,
3: और रंगों के हिसाब से जो कपड़े पहने जाते हैं उसमें लोगों को और दिक्कतें आती है कि वो एक दिन पहना गया और फिर अगले गरबा में ही काम आता है, तब तक पता चला कि आप शहर छोड़ चुके होते हैं, आपका करियर बन चुका है, वगैरह वगैरह।
4: और बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी भी मिल रही है जो सिल्वर कोटेड होती है, नकली ज्वेलरी जो है, लेकिन उसको पहनने से कई बार इन्फेक्शन का भी हो जाता है, लेकिन फैशन है पहनना है। तो सब पहनते हैं।
3: इसका जो उद्देश्य है मौज मस्ती
4: जी
3: और एक दूसरे से मेल मुलाकात, एक दूसरे से स्नेह प्रेम का रिश्ता वो बना रहे, बस ये उद्देश्य होना चाहिए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि होली और दिवाली के अलावा जो पर्व सिनेमाई संगीत में सबसे अव्वल नंबर पर है वो है गरबा। हालांकि मैंने आज तक गरबा नहीं खेला मगर अपने आसपास के माहौल को देखती हूं तो लगता है कि गरबा के साथ जिंदगी की रंगत कुछ और ही हो गई।

0: गई है। गरबा बस गीतों के सहारे धूम धड़ाका ही रह गया है। जीवन में आने वाले खुशी के छोटे छोटे पल को उत्सव में बदल देने की ये परंपरा बहुत पुरानी है। ये हमें ऐसी दुनिया में खो जाने का मौका देता है जहां खुशियां होती हैं और अपनों के साथ। गरबा नृत्य में हावी होता रिमिक्स कल्चर जीवन शैली में बदलाव की वजह से महज शोर और दिखावा ज्यादा है। अब तो उसमें बाकायदा भांगड़ा, पॉप, सब कुछ
1: सब चीज मिक्स हो गया है बिल्कुल,
0: और बहुत तेज संगीत। अब तो जो प्रतिबंध है कि आपको रात को 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद कर देना है, लोग उसका भी उल्लंघन करते हैं। तो ये नियमों का उल्लंघन कम से कम ना करें
1: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। गरबा और डांडिया का ये बदलता स्वरूप ये साबित करता है कि हमारी संस्कृति आधुनिक समय के साथ खुद को ढालने में सक्षम है। हालांकि आधुनिकता की चकाचौंध में हमें अपनी मूल परंपराओं और जड़ों को नहीं भूलना चाहिए ताकि इस पवित्र उत्सव की असल आत्मा हमेशा जीवित रहे। बिल्कुल सही बात लिखी है, हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हम सुनते हैं एक गीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा।

0: विविध भारती पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। मंजरी जी कहाँ गुम हो गई हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर ढूंढ रही टिप्पणियां। एक अच्छी खबर सुनिए, वो ये कि एक महिला को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हुई है। वो महिला है नवनीतम नवी पिल्ले। ये भारतीय मूल की दक्षिणी अफ्रीकी जज और यूएन मानवाधिकार की प्रमुख रही है। इन्हें मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। मतलब मिला क्या, चुना गया है अभी, और वो तो बाकायदा घोषित हुआ है और जब ये सम्मानित किया जाएगा आगे चलकर
1: जी। और उन्होंने युद्ध अपराध और नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाने के लिए आवाज उठाई, प्रयास किया। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करने की ओर प्रयास किया। इसके लिए आप सम्मानित की गई।
0: और इनके बारे में और भी थोड़ी सी जानकारी दे दें। 1890 के दशक में नवी के ग्रैंड पेरेंट्स बंधुआ मजदूर के रूप में गन्ने के खेतों में काम किया करते थे। मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की थी। दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1941 को डरबन में इनका जन्म हुआ और पिता बस चलाते थे, यानी बस के ड्राइवर थे। उनका बचपन बहुत ही संघर्षमय रहा
1: जी। और वे दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला जज बनी। उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से डॉक्टर ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस की डिग्री प्राप्त करी। वे रवांडा के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ICTR की अध्यक्ष रही। इसके बाद वे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की जज भी रही।
0: और इन्होंने 2008 से 2014 तक UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के रूप में कार्य किया। और इनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें हम विविध भारती परिवार की ओर से बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। अब क्या इरादा है,
1: गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: मंजरी जी, फिर याद है कि माँ की अलमारी में कुछ अधूरे सपने भी छुपे होंगे, कभी टटोलने की ढूंढने की कोशिश की आपने?
1: बिल्कुल, बहुत की, क्योंकि अक्सर जब
0: सिर्फ वो अंगूठी और जेवर लेके पहनने की कोशिश
1: की। नहीं, मेरा तो जब वो खोल के, माँ जब बक्सा खोल के बैठती थी तो बस उनकी जो शादी का जो लहंगे की ओढ़नी थी तो वो बस हम बच्चे निकाल लिया करते थे, तो उसको मैं साड़ी की तरह लपेट के घूंघट काट के डोलती थी कमरे में।
0: माँ की साड़ी पहनने का भी एक अलग सुख।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कद छोटे होने के कारण माँ की साड़ी आती नहीं थी, तो उसको दोहरा करके
1: साड़ी पहनते थे।
0: साड़ी पहननी नहीं आती थी तो लपेट के आईने के सामने देखना और अलग अलग रूप रंग में जैसे जैसे माँ तैयार होती थी,
1: और माँ की माथे की बिंदी निकाल के अपने लगा लेना, ये भी बड़ा शौक होता था।
0: तो लेकिन उनके सपनों के बारे में, तब जब हम छोटे थे तो माँ के सपनों के बारे में सोचने के लिए हम वहाँ पहुंच भी नहीं सकते थे, उनके भीतर उनके मन में क्या चल रहा होता है वो सबके बारे में, पूरे परिवार के बारे में सोचती थी, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता। ये हर घर की कहानी है,
1: ये अब जाके हम लोग सोच पाते कि उस समय उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी थी अपने चीजों को बताने समेटने के लिए।
0: बिल्कुल, और वहां माँ की अलमारी खोलते वहां जो उनकी जिंदगी की बहुत सारी यादें, उनके बहुत सारे अधूरे किस्से छिपे होते थे, वहां कपड़े और पुरानी साड़ियों की तह में उनकी खुशबू बसी होती थी और उनकी जिंदगी के बहुत सारे अधूरे किस्से भी छिपे होते थे जो गाहे बगाहे वो बताया भी करती थी अपने बचपन की यादें कि क्या हुआ था उनके बचपन में, उनके लिए कोई स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने खुद पढ़ाई की, ऐसी तमाम बातें माँ के, हम सबके माँ के, और लगभग सबकी माएं एक जैसी होती थी
1: क्योंकि वो सारी यादें जुड़ जाती हैं। और उन समय उनकी गोटे वाली साड़ी जब हम लोग देखते थे तो माँ, मतलब माँ का यही होता था कि भाई ये शादी में बनवाई थी, पापा से लड़ाई लड़ करके कितना खर्चा किया था इस पर पापा बोले थे, और अक्सर माँ ये किस्सा बताया करती थी। और अच्छे कपड़ों की वो अलमारी अलग से रखती थी जिससे वो खास मौके पर पहनने का सपना देखा करती थी, तो इस तरह की यादें होती हैं कि, और किसी भी पुराने डिब्बे में बचाकर रखी हुई चिट्ठियां, तस्वीरें या छोटी छोटी चीजें वो माँ उसको दिखाकर अपनी चीजें बताया करती थी कि उन्हें क्या अच्छा लगता है।
0: अब देखिए ना, हमारे श्रोता भी इन यादों में बिल्कुल खो गए हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि माँ से जुड़ी यादों में एक बहुत ही खूबसूरत याद कि माँ अंतिम दिनों में खूब स्वेटर बुनती थी और बुनकर वो अक्सर उपहार में दे देती थी। अंतिम समय में उनकी सलाइयों पर वर्धमान की पिंक कलर की ऊन का एक स्वेटर था, उसे अधूरे स्वेटर को मैंने करीब 10 साल तक संभाल के रखा, अंततः मेरा मन हुआ कि मैं इसको पूरा करूं और मैंने उस ऊन का इस्तेमाल करके खूब सुंदर सी जैकेट बनाई। और तो हमें एक बात याद है कि जब स्वेटर की बात की है तो ऊन का गोला बनाने के लिए बैठा करती थी माँ और घर की जो अन्य सदस्य होते थे सबको, और हमें, हम सबको ऊन का गोला बनाने के लिए थमा दिया जाता था कि आप भी बनाओ,

0: और वो उन पूरा उसका एक गुम्फा बन जाता था, संभलता नहीं था।
1: और कई बार तो फिसल जाए अगर गोला बना भी रहे, छोटे छोटे हाथों से फिसल गया तो दूर तक चला गया
0: वो धागा, फिर धागे के पीछे पीछे भागते रहो,
1: फिर मालूम पड़ा उलझा भी देते थे, गांठ पड़ गई, फिर माँ कह रही तुम रहने दो तो। लेकिन
0: और बड़ा मजा आता था। एक खास तरह की कलाकारी भी होती थी उसमें, तरह तरह की, जैसे एक सुपारी का आकार या फिर संतरे का आकार,
1: उसको अंगूठे और छंगुनिया में ऐसे करके तिकल्ला नहीं होता है जैसे, उस तरह से वो लपेटा जाता था, तो वो भी छोटे छोटे हाथों में कितना लपटेगा, तो वो भी बड़ा मजा आता है।
0: श्रोता देख नहीं सकते, नहीं तो हम ये जो अभी आपने
1: एक्शन
0: दिखाया ना, ये दिखा सकते थे। मंजीत जी बाकायदा वो हाथ ऐसे हिला के दिखा रहे हैं।
1: हमारे श्रोता बहुत समझदार है, वो सब जान गए कि तिकल्ला बोला है तो वो समझ गए होंगे। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि माँ की अलमारी में सिर्फ साड़ियां ही नहीं, उसके उनके अधूरे सपने भी तह करके रखे होते थे, जो उन्होंने शायद विवाह के पहले खुद के लिए संजोए हों। एक तह में वो लाल जोड़ा जो उन्होंने अपनी विवाह के बाद कभी खुलकर पहना ही नहीं, दूसरी तह में वो किताब जिसे वो पढ़ना चाहती थी पर चूल्हे चौकी की जिम्मेदारियों में वक्त नहीं मिला, और सबसे नीचे दबी वो डिबिया जिसमें मेले से लाई बिंदिया आज भी वैसी की वैसी पड़ी है। उनके अपने सारे रंग हमारे भविष्य को संवारने में घोल दिए और खुद एक फीकी सी साड़ी में सिमट गई। अलमारी खोलो तो आज भी उसमें से ममता के साथ साथ एक अनकही उदासी की महक आती है कि काश किसी दिन हमने पूछा तो होता माँ तुम्हारा सपना क्या था। बहुत ही मतलब दिल भर आया ऐसी बातों को सुन करके।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पुराने जमाने की माँ के लिए अलमारी यानी सिर्फ कपड़ों की या गहनों की राशि, वो तो है उनके त्याग की निशानी और अधूरे सपनों की कहानी, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। सामाजिक वैचारिक अनास्था के कारण खुद की इच्छाएं दबाकर कुटुंब के लिए वो त्याग की मूर्त बन जाती थी, परंतु उन्हीं के ममता भरी सजग छाया में पली आज की आधुनिक माताएं ऐसी नहीं है। बड़ी समझदारी से परिवार और बच्चों को संजोते हुए वे खुद के सपने और कर्तव्य पूरी करती नजर आ रही है। दरअसल इसमें भी कोई बुराई नहीं है, अगर हम उन परंपराओं से आगे नहीं बढ़ेंगे तो वे पीछे रह जाएंगे। आपको अगर आगे बढ़ना है और लड़कियों को खासतौर से आगे बढ़ाना है, उन्हें भी समानता से उनके हक के बारे में सोचना है, तो फिर उन परंपराओं से तो आगे निकलना होगा।
1: बिल्कुल।
0: अब कहने का ये मतलब नहीं है कि माँ की जो अच्छाइयां थी उसको आप हटा के दूर रख दीजिए।
1: जी, उनको तो रखना ही अपने पास। और हमारे साथी लिखते हैं कि माँ की अलमारी सिर्फ कपड़ों या कागजों का बक्सा नहीं होती थी, वो उनसे उन अनकहे अधूरी इच्छाओं का संग्रहालय होती थी जिन्हें उसने परिवार की खुशियों के पीछे कहीं छुपा दिया होता है। उसके ये अधूरे सपने किसी मलाल की तरह नहीं होती बल्कि उस त्याग की मिसाल होते हैं जो उसने हंसते हंसते खुद पर ओढ़ लिया। उसने अपनी दुनिया को अपने बच्चों और परिवार की खुशियों के इर्द गिर्द बुन लिया और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को उन परतों में हमेशा के लिए छुपा दिया। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उनकी, और घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच जना जाने कितनी बार अपने सपनों को वो चुपचाप तह करके रख दिया करती हैं, और बच्चों की खुशी, पति की जरूरतें और घर की जिम्मेदारियां उनके अपने अरमानों से आगे निकलती रहती हैं। और उनकी अलमारी की हर तह जैसे कहती कि मैंने भी कभी अपने लिए कुछ सोचा था। और कभी अगर ममता जी उस अलमारी को ध्यान से खोलिएगा तो देखें माँ के कितने सपने उसमें मिल जाएंगे, और जिसमें उनके कोई कभी शब्द नहीं उन्होंने दिए, और अगर मिल जाए तो उसे पूरा करने की कोशिश हम सभी को करनी चाहिए, क्योंकि माँ के सपनों को उम्र नहीं बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए होता है। और कई बार होता है कि जब उनकी अलमारी देखो तो उसमें बहुत सारे रुमाल दिख जाते हैं तह रख के, उनकी कढ़ाई के धागे दिख जाएंगे, सुई का डब्बा दिख जाएगा, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें माँ की उस अलमारी में दिख जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और उनके उसके साथ साथ कुछ कागजों के बीच रसीद भी मिल जाती है, जो चीजें उन्होंने उस समय खरीदी होंगी वो भी दबी पड़ी हैं, कुछ पन्ने फट गए उनके रसीदों के, लेकिन फिर भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और इसके साथ साथ अपने बच्चों के छोटे छोटे से कपड़े, झबले, टोपी, मोजा, ये सब भी उनकी अलमारी में खूब दिख जाता है। और जब क्या कहते हैं कि उनकी तस्वीर का जो एक पोटली होती है या एल्बम होता है, उसमें भी ना जाने कितने समय के लोगों के परिवार के सदस्यों की फोटोग्राफ्स मिलती हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है कितना संभाल के उन्होंने उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को रखा हुआ है।
0: और वो प्रिंट करने का जमाना भी था कि प्रिंट करवा के सहेज के रखा भी जाता था, कहीं एल्बम में लगाया जाता था या लिफाफे में करके। अब एक गाना सुन लेते हैं और बातें करते हैं।

0: भाई माँ की अलमारी में जो छुपे उनके अधूरे सपने थे, इसी तरह चांद सितारों के माध्यम से, सूरज के माध्यम से, कुदरत के माध्यम से पूरे होते थे। वो अपने सपनों को इन्हीं तरीके से, कभी चांद की कहानी, कभी कोई कहानी सुनाकर अपने सपने पूरे कर लेते थे। तो सपन कहानियों के माध्यम से उनके सपने मुकम्मल हो जाते थे।
1: और ममता जी कई घरों में उनके पास अलमारियां होती थी, माँ की दीवार वाली अलमारी होती थी, कई बार वैसी लकड़ी की पुरानी जो नक्काशीदार

0: गाने लिखे हुए होते थे। और एक हमारी सखी, इन्होंने लिखा है कि बहुत सुंदर बातचीत चल रही है, वो जो अंगूठे और उंगली में लपेटने की बात कर रही है मंजरी जी, ऐसे लपेटा हमने लोगों को, हम लोगों के भाई पतंग उड़ाने के समय जब मांझा लपेटा करते थे। भाई ये तो हमने भी ये काम किया है,
1: मांझा लपेटना भी तिकल्ला जैसा बनाते थे,
0: पतंग उड़ा रहे हैं और मांझा पकड़ो आप संभालो, और उंगली कट जाती थी।
1: जैसे वो जब पूरा लपेट के निकलता था ना ममता जी, तो उसका शेप जो गुल्ली डंडा खेलते थे ना, वो जो गुल्ली होती थी वैसा बन जाता था। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मेरे माताजी ने एक बार अलमारी में एक पोटली निकाली थी, हम तीनों भाई बहन उसको बड़े अचरज से देखने लगे कि इसमें क्या होगा। उस पोटली में पुराने सिक्के थे और हमारे जन्म से पहले के, और बहुत रेयर अलभ्य थे कुछ सिक्के और कुछ तांबे के, कोई हॉल वाले तो कोई पुराने गोल, मतलब एक गोल छेद वाला सिक्का और पुराने गोल नहीं होते थे, और राजा महाराजा के मुख्य उसमें छापे बने हुए थे, वे सिक्के उनके नहीं हमारे सपने पूरा करने के लिए रखे होंगे, मतलब वो सिक्के।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी सेंट बनाया करते थे, मेरी मम्मी की बड़ी बड़ी लोहे के संदूक में से आज भी उनकी खाली छोटी छोटी शीशियों से उनकी खुशबू संदूक में से आती है जब भी वो संदूक खोले जाते हैं, जबकि वो सेंट नाना जी ने आज से कम 70-75 सालों पहले बनाए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे माता जी ने एक बार अलमारी में से कोई एक पोटली निकाली थी, हम तीनों भाई बहन इसे अचरज से देखने लगे कि इसमें क्या होगा। उस पोटली में पुराने सिक्के थे, और जो आपने बताया कि सिक्के, तो इस तरह की बातें। और एक श्रोता ने लिखा है कि उन दिनों की माँ की अलमारी कहाँ हुआ करती थी भाई, हमने तो माँ की काठ की पेटी या फिर बक्सा देखा था जिसे वही छू सकता था जो बच्चा उनके समीप रहते हुए उनका प्रिय होता था, और मैं उन बच्चों में नहीं आ पाया था। और बिल्कुल ताला बंद होता था उस बक्से में, और चाबी कहीं छुपा के रखी।
1: इसीलिए तो मैंने बोला ना कि सब चीजें सब क्या नहीं होती थी।
0: हाँ, एक श्रोता लिख रहे हैं कि माँ से जुड़ी यादों में एक बहुत ही खूबसूरत याद है, माँ के अंतिम दिनों में खूब स्वेटर बुना करती थी, और हम स्वेटर की बातें कर चुके हैं।
1: बिल्कुल, और जब स्वेटर बिनती थी तो हमने देखा ही था कि किस तरह से वो बिना करते थे। और माँ की बहुत सारी चीजें भी होती थी घर गृहस्थी की, जिन्हें हम सोच सकते हैं कि वो भी कभी कभी उसमें चीजें दिख जाती थी उनके बक्से में रखी हुई संभाल करके।
0: अब हम मुहावरों की बातें कर लेते हैं मंजरी जी, तो बताइए आपको कितने मुहावरे याद हैं? आज जो मुहावरा हमने दिया है वो याद है कि नहीं?
1: बताइए। अपना उल्लू सीधा करना, और हमारे साथी भी लिखते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे को इस बात से बताना चाहूंगा कि अक्सर हम देखते हैं कि तीर्थ स्थलों में, अन्य पूजा स्थलों में, जहां श्रद्धालुओं में भक्ति भावना होनी चाहिए, अत्यंत भीड़ भाड़ में भी कुछ लोग बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भी धक्का देते हुए पहले दर्शन करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, जो कि भक्ति भावना के विपरीत है। और इस तरह की बातें हमारे बहुत साथियों ने लिख करके भेजी हैं। तो हम,
0: अच्छा मंजरी जी, आप तो मुहावरों की बातें बता रही हैं और शुरुआत तो हम कर चुके हैं, लेकिन अभी ये माँ की अलमारी की बात तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, उसमें से कपड़े सपने निकलते ही आ रहे हैं। अब हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है, अभी कमेंट लिखा है, हमें लगता है कि इस विषय पर बातें करना हमारी सखियों को बहुत मन भाया है। लिखा है कि अलमारी में उनकी साड़ियां इतने करीने से मलमल के कपड़े में लपेटी हुई रखी रहती हैं, जैसे कितनी अनमोल धरोहर है उनकी। साड़ियों में तो उनको बहुत ही ज्यादा प्रेम होता है। एक किनारे में उनकी छोटी सी पैकेट बना रहता है, छोटा सा पैकेट बना रहता है, जिसमें उनकी पुरानी तस्वीर, पुराने एल्बम और न जाने क्या क्या सहेजा हुआ रखा रहता है। काफी सारी डायरी, जो उनको लिखने का शौक है, कुछ कुछ लिखती रहती है, वो भी उनकी अलमारी में सजी रहती है। पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, सब कुछ एक पेंसिल बॉक्स में करके रखा हुआ है। कभी उनको पेंसिल चाहिए तो वो भी वर्क पहली भरने के लिए, और कभी गलत हुआ तो रबर भी चाहिए, शार्पनर भी चाहिए, वो सब संभाल के अपने पास रखती हैं। क्या बात है भाई, हमें लगता है कि जो माँ की अलमारी की यादें हैं वो अंतहीन है। अब एक हमारी सखी ने लिखा है कि मम्मी की अलमारी और यादें शब्द नहीं है बयां करने के लिए, अब तो हमारे पास भी जैसे शब्द खत्म होने को है। और डायरी और कॉपी, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि उनके अलमारी में, उनके बक्से में एक डायरी होती थी, और कुछ डायरी में ये भी लिखा होता था कि किसको कितना दिया गया,
1: हाँ, खर्चे का हिसाब,
0: खर्च का हिसाब और हाँ। तोहफे के रूप में जैसे शादी विवाह में शगुन के तौर पर देते हैं, तो फलाने को इतना रुपया दिया गया और उनको इतना रुपया दिया जाना है,
1: जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में किसी मेले में जाती थी तो वो भी डायरी में दिखता था कि यहाँ पे ये पानी बताशे, दही बड़ा, चटनी, आलू।

0: टिक्की खाई और इतने पैसे ले गए थे, इतने पैसे बचे, मतलब ये सब चीजें छोटी छोटी भी वो लिख के रखती थी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम उनकी यादों को साझा करते हैं, ताजा
1: और
0: करते
1: वो
0: हैं।
1: अक्सर मुहावरों और लोकोक्तियों में बात करती थी, है ना?
0: बिल्कुल। जैसे कुछ काम करने का मन नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं तो बस कुछ ना कुछ अपना बोल दिया उन्होंने, अपनी मुहावरे कहा थे। तो
1: और आज का विषय भी मुहावरा है
0: जी।
1: तो मुहावरे में हमने रखा है कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपने आप अपना काम निकाल के आगे
0: जी,
1: बढ़ जाए
0: जी।
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये पुराना और प्रसिद्ध मुहावरा है, इसका अर्थ है अपना काम सिद्ध कर लेना। और ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जिंदगी में जो अपना काम सीधा करके आगे निकल जाते हैं।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया अपना उल्लू सीधा करना, भाई इस नेक कार्य में तो प्रायः सभी लोग लगे हुए हैं, ऐसा करते रहना कोई बुरी बात नहीं बशर्ते उससे किसी का दिल ना दुखे, लिखते हैं हमारे साथी। और एक लिखते हैं कि इस मुहावरे को इस बात से बताना चाहूंगा कि अक्सर हम देखते हैं कि तीर्थ, अच्छा ये चीज तो मैंने पढ़ी है कि दर्शन करने जाते हैं ये वाली बात। और एक लिखते हैं कि उल्लू सीधा करने वाले मुहावरे पर ये गीत फिट बैठता है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, अपना काम निकल गया फायदा हो गया, फिर कौन तू कौन मैं, सावधान ऐसे लोगों से जो दूसरों को उल्लू बनाते हैं। कई बार हो भी जाता है तो बड़ा मन दुखता है कि कैसी लोगों की प्रवृत्ति होती जा रही है जो सिर्फ मतलब के लिए ही साथ में खड़े होते हैं, उनका मतलब निकल गया तो आपको पूछेंगे भी नहीं, पलट आपको देखेंगे भी नहीं, मुसीबत के समय तो आप ये उम्मीद ही मत करिए कि वो आपका साथ देंगे। तो अगर आप एक बार धोखा खा जाएं तो हमेशा के लिए उसको अपना बना लें किस तरह
1: पर
0: का।
1: ऐसा करना नहीं चाहिए कि अपना मतलब सिद्ध करके आगे बढ़ के और सामने वाले की मदद ना करें। और मंजरी जी, आज आपदा जोखिम नवीनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आज के दिन को याद किया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: दरअसल अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को आपदाओं से बचाव के प्रति जागरूक करना, जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, सूखा और भूस्खलन जैसी आपदाएं बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन आपदाओं को हमेशा रोका नहीं जा सकता, लेकिन सावधानी और तैयारी से नुकसान कम किया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसकी सतर्कता की ओर ध्यान दिलाना इसका उद्देश्य है।
0: बिल्कुल। और हमें घर, स्कूल और कार्यालयों में सुरक्षा के उपायों को जानकारी देनी चाहिए, रखनी भी चाहिए। और आपातकालीन जो नंबर होते हैं उनको लिखकर जरूर आप रखें, कभी भी मुसीबत पड़े तो आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। सरकार और आम लोगों को मिलकर आपदा से निपटने की तैयारी करनी चाहिए। जागरूकता और सही तैयारी से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस दिवस का संदेश है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और आपदा के लिए पहले से तैयार रहें।
1: और अब सुनते हैं ये गाना।

0: अभिमान फिल्म का ये गाना था और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोली बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।